रे हरी तन से भजलो रे हरी, और राम नाम है जग में।

मनो से भजलो रे हरी, तनो से भजलो रे हरी, राम नाम है जग में।

उठा सा टुका नारद देखे करम की रेखा सात मन से भजलो रे हरी तन से भजलो रे हरी राम नाम है जग में।

ए अमरो नाथ की अमरो कहानी सब जग में हो गई हो सीता। ए मन से भजलो रे हरी, तन से भजलो रे हरी।

0: करो हरी जगत जगतार भजन करो हरी जगत जगतार भजन करो
1: आड़ी सर से।

0: कल बदलती जलवायु के लिए तैयार हम,
1: कार्यक्रम शुभकल सुनने वाले सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। मैं हूं आपके साथ आपकी रेडियो दोस्त वर्षा,
2: और मैं हूं आपका रेडियो साथी मनीष। साथियों, कार्यक्रम लेकर आए हैं जिसका नाम है शुभकल कार्यक्रम।
1: यह कार्यक्रम रेडियो बुंदेलखंड और लोरियल फाउंडेशन के सहयोग से रेडियो बुंदेलखंड पर प्रसारित किया जा रहा है,
2: और ये श्रृंखला का 11वां कार्यक्रम आप लोगों के बीच हम लोग लेकर आए हैं। साथियों, इस कार्यक्रम का उद्देश्य है कि जैविक विधि द्वारा खेती करने से उत्पादन की लागत को कम होती ही है, इससे साथ ही कृषक भाइयों को आय अधिक प्राप्त होती है, तथा अंतर्राष्ट्रीय बाजार की इस स्पर्धा में जैविक उत्पादन अधिक खरे उतरते हैं, जिसके फलस्वरूप सामान्य उत्पादन की अपेक्षा कृषक भाई अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। किसान साथी कैसे हैं? हमें आशा है कि हमारे किसान साथी अच्छे से होंगे। और साथियों, पिछले कार्यक्रम में हमने जाना था कि क्या कारण है कि लोग जैविक खेती क्यों नहीं करते हैं, वो आंकड़ों पर हमने एक नजर डाली थी। साथ साथ में हमने समुदाय से बात की थी, और विषय विशेषज्ञ द्वारा हमने जाना था कि लोग जैविक खेती करने में क्यों हिचकिचाते हैं। बहुत सारी बातें निकल के आई थी, और आज के हमारे इस कार्यक्रम में आज बात करने जा रहे हैं कि जैविक खेती करने से हमें क्या लाभ है।
1: हमारे इन कार्यक्रमों के बनाने का उद्देश्य भी यही है, कैसे हमारे किसानों की दिशा और दशा में सुधार हो सके। इसके लिए हमारे किसान साथियों जागरूक होने की बहुत आवश्यकता है, खास तौर पर महिला किसान।
2: वर्षा, हमारे किसानों की दिशा और दशा तभी सुधरेगी जब हमारे किसान साथी जागरूक होंगे, और जागरूक तभी होंगे जब उनके पास उस विषय की अच्छी तरह से जानकारी हो, और जानकारी तभी होगी जब रेडियो बुंदेलखंड पर इन कार्यक्रमों को सुनेंगे, क्योंकि ये कार्यक्रम भी उन किसान साथियों के लिए बना रहे हैं, और खास तौर पर उन महिलाओं के लिए जो दिन रात अपने परिवार के साथ खेतों पर मेहनत करती हैं।
1: अरे मनीष भैया, इनको समझाने के लिए हमारी बैरू भौजी ही काफी है, क्योंकि उन्होंने अपने लालाजू को भी समझाया। आइए चलते हैं बैरू भौजी के पास।

0: लालाजू, ओ लालाजू।
1: हाँ भाजी, बता क्या बात है?
0: क्या बात है लालाजू, आप तो बड़ी आराम से बोल रहे।
1: ले भाजी, अब तो नेक आराम से बोलो, सो भाई बात।
0: क्या कह रहे हैं, कठिया के बोलो, सो भाई बात।
1: अरे भौजी, तनक हमने कही कि आज आराम से बतिया लिए, भौजी से बेसी तो लड़त रहता अपन।
0: अरे लालाजू, मैं जाके भी आई थी कि ने तुम मे संगे चलो।
1: तुम्हारे संगे चलो?
0: हाँ।
1: काहे के लाने?
0: मैं हारे चलू ने तो।
1: हारे चलो?
0: हाँ।
1: ऐसो काहे ते हारे कि हम हारे चले थे?
0: अरे लालाजू, मैं कह रही तो समझ लो, जरूरी काम है मुझे।
1: अरे भौजी, अब हम
0: पढ़ रहे बाद में पढ़ ले, जो आखने मुझे जरूरी काम है वो हारे तुमसे मिल रहे हैं वो।
1: ऐसी क्या बात है, बता नहीं बता दे तो।
0: का कह रहे लालाजू, नहीं चल रहा है?
1: अरे जा कह रहा है भौजी, के ऐसी क्या बात है, इतनी बता दे, हारे जावे की क्या जरूरत है?
0: अरे लालाजू, अब तुम तो इतने पढ़े लिखे होंगे, नेक मुझे का पता ही अच्छी सी बता दूं, नेक मैं का डाल लूं ई खेतन में, मुझे तो समझ में नहीं आ रही, मैं जे दवाई ले आत होंगी, लेकिन इनसे का पता मुझे कछु फायदा थोड़ी न पड़ रहा है गो, और मैं सोच रही होंगी कि अगर तुम्हें कोई दवाई आत हो तो तुम बता दो।
1: भौजी देखो, अब तुम हमसे तो ज्यादा जानते ही हो, काय में लगी हमारे ना क्या
0: भी। अरे लालाजू, फिर भी मैंने कही तुम पढ़े लिखे होंगे तो मैं तुमसे पूछ लेती होंगी, तुम्हें कछु नहीं आऊंगा।
1: अरे आओ तो है ना, लेकिन अब मैं खेती बाड़ी में थोड़ी जाना थे एक बात है।
0: अच्छा तो मैं तुम्हारी, चलो मैं तुम्हारी खेती देखी, तुम्हारी कैसी हैगी?
1: हाँ हमारी देखे, हम तो दवाई दीजिए अपनी, ये चल रही है आजकल भी,
0: ये दवाई देते ही।
1: चलो देखे यहाँ तो।
0: चलो चलो, तो पहले तुम्हारी खेती देखे आवे, फिर मैं अपनी देखूँ।
1: हाँ तो देख भौजी, देख जा बीबी आप आसों की अपनी फसल, लेकिन मैं तो किसानी से हार ही गया, लेकिन पढ़ भी जाने तो खेती करने तो जिनमें देखो जी आजकल की दवाई चल रही है अपनी, रासायनिक दवाई यही देती मैं तो जी दुकान से ले लेके।
0: का कह रहे लालाजू, मर भी जाने या तो जा खेती ऊपर से प्राण खा रही?
1: मर भी नहीं, पढ़ भी जाने आओ तो ही।
0: हाँ।
1: पुनर पढ़ भी जाने तो, और खेती भी करनी है संगे संगे, देखो अब किसानी को गांव गाड़ों को काम है तो सब करनी है आओ तो ही।
0: हाँ, वो तो ये नहीं है कि लालाजू मैं जा कह रही, तुम तो का डाल रहा में देखो तुझे तो भटन में कैसे कीड़ा मीरा सो लग रहा है वो, और का को ये नहीं दुखन न्याने से लग रहा है, का डाल रहा तुम इन्हें?
1: अरे भौजी, दवाई तो मैंने मुलकन दी अपनी बाजार से लिया लिया के।
0: लालाजू, मैं तो जा से आई थी देखन, मैंने कही कि तुम्हारी अच्छी हो जो उमदा को लालाजू अच्छी दवाई डाल रहा हूँ, मैं जाई वहाँ ने लालाजू की फसल तो देखे कैसी का हैगी।
1: अरे भौजी, तो ऐसी बातें कर रही कौन, मेरे घर बन नहीं दवाई, अब मैं तो बाजार से लिया था, तुम जाने का करा था जुमून, मैं तुम्हारी देखे हूँ कैसी है, तुम ज्यादा वो बता रही तो।
0: अरे चलो लालाजी, तो तुम्हारी से तो अच्छी मिल जाएगी, मैं तो जबकि देसी दवाइयों को इस्तेमाल कर रहे थे, मैं तो बड़े वहां से आई थी, अरे मेरे लालाजू की अच्छी उम्दा हो जाए, कहा पढ़े लिखे है अच्छी दवाई ले आते हैं।
1: अरे भौजी, अब दुकान पे मिल जाता अपनी ये सब चीजें तो फिर काय को दिक्कत करो, जैसे बढ़िया दवाई मिला सिंगन में, दवाई नहीं मिला दुकान पे मशीन से किंच तू
0: रासायनिक
1: और
0: बाकी छत तो
1: बाई तो लिया,
0: इतनी अच्छी कही वो हर लगे ना फटकर ही रंग चोखो हो जाए।
1: बहुत जितने तो ऐसी बात कर रहे हो जैसे ते अपने घर ही बनाते हो दवाई।
0: हाँ, उसमें तो बनाते ही हूँ, माँ में कहा सके वो
1: कहा घर बना।
0: हाँ, जो जैविक दवाई है वो तो मैं अपने घर बनाऊ तो, और अपनी बैगन में और चाहे जो सी फसल हो मैं अपनी उनमें डालत होंगी।
1: कैसी काय को मस्करी कर रही हो जी?
0: कहा कह रहे लालाजू, काय को मस्करी कर रही
1: और
0: तो मस्करी दिखा रही।
1: और कही तो रही की घर बना दवाई बना, वो हंसी के लेगा।
0: हाँ लालाजू, मैं इनसे उम्दा दवाई बनाते होंगी, रासायनिक दवाई जिनसे मैं जैविक दवाई बहुत अच्छी बना लेती होंगी।
1: अब तो भाजी चला ही नहीं आए थे यार, देखो
2: कैसे चलो तो देख लो मेरी फसल कैसी उम्दा लहलहा रही।
0: और ना ये कीड़ा लगो, कीड़ा के लाने और जाना बहुत हो तो मैं मुझे तो विशेषज्ञ बुला लेते हैं, तो उनसे पूछत की कैसी देसी दवाई कैसे बनाऊ मैं
1: है?
0: जो अपनी चीजें हैं प्राकृतिक ईंधन से कैसे दवाई बनाऊ।
1: अच्छा
0: हाँ,
1: तो अब तो चला ही नहीं आए तो हारे।
0: चलो देखो, अब देखो लालाजू, जो तो लगो मे बैगन और जी अभी मैंने टमाटर की पौधे सुबह लगा दी।
1: वो भौजी तेरी फसल तो सांसों देख भी लाखेगी।
0: कहा कह रहे भौजी, तेरी फसल तो बड़ी उम्दा है
1: और मेरी फसल से तो बहुत ही उम्दा हैगी।
0: हाँ तो लालाजू, मैं तो यही सोच रही थी कि तुम्हारी उम्दा हो जाए, लेकिन मैं तो खुदा बड़ी खुश हो रही कि मेरी अच्छी हैगी, मैं तो घर बना था अपनी सब।
1: लेकिन भौजी जी टपक जाए भी मटका धरे जे खाएगी धरे चार पाँच।
0: कहा कह रहे लालाजू, टपज्जा में लोटा धरे?
1: लोटा नहीं भी मटका धरे, बट तू टपज्जा में।
0: हाओ लालाजू, मैं मटकन से मैं मटका खाद बना थो।
1: मटका खाद?
0: हाओ
1: बाकी बना
0: ले लालाजू, तुम्हें जो ही पता नहीं है, मैं अपनी सब देसी खाद डाल रहा था उनमें, जिसे उनमें उर्वरक जो अपनी खेत की जो उर्वरक शक्ति है और नमी है वह हमेशा बनी रहते और पैदावार भी अच्छी होते।
1: हाँ मैंने पढ़ो तो है ना तो किताबन में मटका खादो जी सब जैविक खादे बने।
2: अच्छा
1: लेकिन तो मैंने जसूची नहीं है कि खुद बना सका।
0: अरे वो तो है ही बना सकते हैं। तो लालाजू अगली बार ध्यान करने कि दवाई घरे ही बनाने और घरे ही खाद बनाने उन्हीं को इस्तेमाल करने।
1: अब तो भौजी मैं तो जरूर सीख भी आऊँ जी दवाई बना।
0: बिल्कुल तो आज जो ट्रेनिंग ले अभी के लाने।

0: साथियों, सुना आपने बैरू भौजी को, जिन्होंने हमें बहुत ही अच्छे तरीके से जैविक खेती के बारे में बताया कि अगर हमारे खेतों में कोई भी समस्या होती है तो उसके निजात पाने के लिए हम रासायनिक दवाओं का इस्तेमाल ना करके घर से बनी हुई जो खाद होती है, जो दवाई होती है, जो हम नेचुरल तरीके से बनाते हैं, उनको हम अपने खेतों में इस्तेमाल कर सकते हैं और एक बेहतर पैदावार पैदा कर सकते हैं।
1: बैरव भौजी ने कितने अच्छी तरीके से जैविक खेती के बारे में बड़े अच्छी तरीके से समझाया और जो भी गिला शिकवा थे वो भी हमें दूर हुए। लेकिन हमें यहाँ पर रुकना नहीं है, क्योंकि यहाँ तक बैरव भौजी तक सवाल सीमित नहीं है, यहाँ पर सवाल आते हैं हमारे किसान साथियों के, क्योंकि किसान साथी जैविक खेती इस बुंदेलखंड क्षेत्र में क्यों नहीं करते हैं। उनके पास आपको ले चलते हैं, उनसे जानते हैं, क्योंकि आजकल हम ये देख रहे हैं कि किसान अपने खेती की लागत इतनी ज्यादा लगाता है और उसके लिए कर्ज करता है। कर्ज होने के बाद साथ साथ में आज हम बैंकों की स्थिति देखते हैं, तब पता चलता है कि हमारे बहुत सारे ऐसे किसान हैं जो डिफॉल्टर हो चुके हैं। क्यों? क्योंकि उनकी लागत भी नहीं निकलती है पूरे साल भर खेती करने के बाद। तो ये सारी पीड़ाओं को हम दूर करने की कोशिश जरूर कर रहे हैं, जैविक की ओर लोगों को ध्यान आकर्षित करा रहे हैं। लेकिन अब सबसे पहले हम अपने किसान साथियों के पास आपको ले चलते हैं और जानते हैं कि जैविक खेती क्या है, लेकिन कुछ विराम के बाद।
0: नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी आरजे दोस्त आराधना और बात करेंगे आज जैविक खेती क्या है। ऐसी खेती जिसमें दीर्घकालीन व स्थिर उपज प्राप्त करने के लिए कारखानों में निर्मित रासायनिक उर्वरकों, कीटनाशियों व खरपतवार नाशियों तथा वृद्धि नियंत्रक का प्रयोग न करते हुए जीवाश्म युक्त खादों का प्रयोग किया जाता है तथा मृदा एवं पर्यावरण प्रदूषण पर नियंत्रण किया जाता है, उसे जैविक खेती कहते हैं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले कार्यक्रम में।
2: वृक्ष लगाकर करो श्रृंगार, धरती माँ की यही पुकार।
3: ब्रजनंदन पाल कैना से।
1: ब्रजनंदन जी, आपने जैविक खेती के बारे में तो सुना होगा, तो जैविक खेती से लाभ क्या है?
3: जैविक खेती से लाभ यही है कि मतलब कुछ इनकम ज्यादा आती है उसमें, अपन को फायदा, जैसे मूंगफली है, मूंगफली उखाड़ी उसको थोड़ा बेचने के कंपनी, तो इसी के बारे में थोड़ी।
1: अच्छा, तो आपको कुल मिला के ज्यादा मतलब इसके बारे में जानकारी नहीं है। एक चीज और जानना चाह रहे हैं कि आपके हिसाब से क्या लगता है कि जैविक खेती करके अपनी खेती की लागत को हम कम कर सकते हैं?
3: नहीं कर सकते।
1: चलिए, और आय को हम बढ़ा सकते हैं?
3: आय देखो, महंगाई तो बढ़ रही है, जमीन के ऊपर है, ऐसी तो थोड़ी ना बढ़ेगी, कुछ अलग तरीके की खेती करें तभी तो आय बढ़ेगी।
1: ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, आप अपना परिचय दीजिए।
3: सुरेंद्र पाल कहना।
1: अच्छा सुरेंद्र पाल जी, आप जैविक खेती के बारे में जानते होंगे, तो जैविक खेती से लाभ क्या है आपके हिसाब से, क्या लगता है लाभ क्या है?
3: हाल की स्थिति में तो जैसे मूंगफली हो गई, तिली हो गई, उड़द हो गए, चना हो, जैसे मूंगफली हो गई, तिली हो गई, सोयाबीन हो गया, उड़दा हो गया, मूंग हो गई,
1: जी जैविक खेती के उत्पादन।
3: हाँ हाँ, तो ये उत्पादन है, तो अगर इससे तो ये है, अगर मान लो 2-4 बीघा जमीन है किसी के पास, तो इस चीज से कोई लाभ नहीं है।
1: अच्छा, जैविक खेती करके हम अपनी खेती की लागत को कम कर सकते हैं, आपके हिसाब से क्या लगता है?
3: अपने हिसाब से ये है कि जैसे वो अपने हाथ में तो है नहीं, अगर बरसात सही तरीके से अगर हो गई तो अपन लाभ ले सकते हैं। अगर बरसात नहीं हुई, किसी के कुएं में पानी नहीं है, कुछ लोग तो ऐसे भी हैं, मान लो हम या आप ही हो गए कि भगवान के भरोसे रहते, अगर अभी पानी खुल गया तो मूंगफली में कुछ नहीं है, अगर बरस गया तो सब।
1: एक वर्ष आखिरी सवाल है कि जैविक खेती करके हम अपनी आय को कैसे बढ़ा सकते हैं आपके हिसाब से, चूंकि आप खेती करते हैं?
3: खेती करके मान लो ऐसे ही बढ़ा सकते हैं कि अगर कुआ अंदर पानी है तो टाइम से बो दिया, टाइम से पानी दे दिया और टाइम से खाद बीज लगा दिए तो अच्छी फसल उपजाऊ होगी, तो अपन उससे लाभ।

0: सकते हैं।
1: चलिए, बहुत अच्छा लगा लाला राम जी आपसे बात करके, धन्यवाद।
0: हमारा नाम है रईस यादव, लिधौरा निवाड़ी विधानसभा से बोल रहे हैं।
1: अच्छा रही जी, हम जानना चाह रहे हैं कि जैविक खेती जो होती है उससे करने से क्या लाभ है?
0: उससे ये लाभ है कि सबसे जल्दी पौधा अपना होता है, जो जो भटा है, टमाटर है, आलू है, जल्दी जल तैयार हो जाते हैं उससे। अच्छा, जो गोबर खाद सा है, गोबर खाद का मतलब जैविक खाद में थोड़ा मतलब बीमारी टाइप का तत्व रहता है, इसमें निर्दोखल रहता है, मतलब गोबर खाद,
1: अच्छा
0: इससे आदमी बीमार कम पड़ते हैं।
1: अच्छा आपको रही जी क्या लगता है कि जैविक खेती करके खेती की लागत को हम कम कर सकते हैं आपके हिसाब से?
0: धीरे धीरे होगा, तो जैसे अपन को थोड़ी मात्रा में कम खाद दो इस साल, फिर पर साल अगले कम दो, और गोबर जो मान है गौ माता का, ये ज्यादा मात्रा में देते जाओ, इसके बाद जो जैविक खाद देना बंद हो जाता है, फसल होने लगती है। फिर
1: अगर जैविक
0: वो भी
1: खेती करके अपनी आय को हम बढ़ा सकते हैं क्या, आपके हिसाब से क्या लगता है?
0: हाँ, जैविक मान लो खाद से बढ़ती है, वाला है
1: आय बढ़ती है, कैसे
0: आय
1: बढ़ती
0: बढ़ती
1: है?
0: है उससे, मतलब ऐसे है कि जैविक खाद अच्छी जैसी मात्रा में हर गुड़ाई जो खाद छिड़कते हो अपन,
1: अच्छा
0: पानी देते रहो, बढ़िया फल फूल, बढ़िया टुकाई चलेगी उसकी।
1: धन्यवाद भाई साहब।
2: ब्रज किशोर कुशवाहा।
1: अच्छा ब्रज किशोर, हम एक चीज जानना चाह रहे हैं, जो जैविक खेती होती है आपके हिसाब से उससे को करने से क्या लाभ है?
2: हमें पता नहीं है सर,
1: जानकारी नहीं है जैविक खेती की?
2: नहीं है जानकारी सर।
1: अच्छा जैविक खेती करके लागत को कम कर सकते हैं अपन लोग?
2: अब जी हमें पता नहीं है सर।
1: चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।
3: वृक्ष लगाकर करो श्रृंगार, धरती माँ की यही पुकार।
4: साथियों, अभी आपने सुना कुछ किसानों की बातचीत को, जिनकी बातों से बिल्कुल पता चल रहा था कि कुछ किसान साथी हमारे ऐसे हैं जिनको जैविक खेती के बारे में पता ही नहीं है कि आखिर जैविक खेती क्या होती है। लेकिन कुछ किसान साथी ऐसे हैं जिनको पता तो है कि जैविक खेती क्या होती है, लेकिन करना नहीं चाहते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि जैविक को करने से हमारी फसल सही नहीं होगी या हमारी मार्केट में वैल्यू कम हो जाएगी। उनके अपने मन में जो भ्रांतियां चल रही थी, आइए इन्हीं सब बातों को लेकर हम आपको सीधा ले चलते हैं विषय विशेषज्ञ के पास, लेकिन एक गीत सुनने के बाद
5: जी।

संदेश सुन लो भैया जो संदेश खुशहाल बनो रे अपनो देश खुशहाल बनो रे।

0: एक बार फिर से पुनः बहुत बहुत स्वागत करते हैं आज के हमारे इस कार्यक्रम में। और साथियों, आप अभी आपने कृषि से जुड़ा इस गीत को सुना, गीत का आनंद लिया। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब आपको सीधा ले चलते हैं हमारे विषय विशेषज्ञ के पास और जानते हैं जैविक खेती के उन सारे किसानों के जो सवाल थे, उन सवालों के जवाबों।
1: पेड़ पौधों से करोगे प्यार तो रहेगा जीवन खुशहाल। वृक्षों को कटने से बचाओ, वृक्ष ही जीवन है, वृक्ष लगाइए, जीवन बचाओ।
0: का सर मानना क्या है कि किसानों को जैविक खेती अगर इस क्षेत्र में देखा जाए, सर मध्य प्रदेश में कुछ हिस्से ऐसे जहाँ पर लोग जैविक खेती करना ही नहीं चाहते, जब हम किसानों से बात करी वो नहीं करना चाहते हैं, तो सर इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे?
2: देखिए, एक बहुत वैसी बात हम आपको बता रहे हैं कि भारत ही नहीं पूरा विश्व आने वाले समय में जो खाद्यान्न संकट से गुजरने वाला है, 2050 तक पूरे विश्व की आबादी लगभग 10 अरब हो जाएगी, उसमें भारत की आबादी लगभग 1 अरब 70 करोड़ के आसपास हो जाएगी। ऐसे में सबसे बड़ी समस्या हमारे सामने होगी कि हमको उत्पादन शक्ति बढ़ाना होगा और ताकि हम सभी लोगों को खाना उपलब्ध करा सकें। और जहां तक इस कृषि पद्धति की बात है तो इसे तो अपनाना ही होगा और इसके लिए उन्हें सहजता से उनके साथ संपर्क करके जो विशेषज्ञ लोग होंगे, कृषि विशेषज्ञ लोग होंगे, और उनसे मिलना होगा और उनको इसके जो फायदे हैं वो बताना होगा। तो जो स्थायी कृषि है, आपका सस्टेनेबल एग्रीकल्चर है, क्योंकि इसका इसके कई नाम से जानते हैं जाना जाता है, जैसे सतत खेती, पोषणीय खेती, प्राकृतिक खेती, परमा कल्चर, तो इसमें ये सेट ही है एक तरह से, आप देखिए ये पद्धति का सेट है, तो जो कि 3-4 शर्तों को पूरा करता है कि पर्यावरण का सम्मान करेगा, ये सम्मान होगा इसमें, प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा हो जाएगी, किसानों का उचित और पर्याप्त आय भी सुनिश्चित होगा इसमें,
0: बिल्कुल।
2: और चूंकि वर्तमान में भू स्तर जो जल का स्तर है वो गिरता जा रहा, ऑर्गेनिक कार्बन की भी मात्रा कम होती जा रही है, और भारत की जो कृषि पद्धति है या खेती हो रही है उसमें हमेशा से नाइट्रोजन और ह्यूमस की जो कमी है वो हमेशा से रही है, तो इसकी पूर्ति करने के लिए लोग रासायनिक खाद का प्रयोग करते हैं, लेकिन उसके विकल्प के तौर पे उन्हें प्राकृतिक खेती, ये अस्थाई कृषि अपनानी होगी और उसके फायदे उनको दिखेंगे। और चूंकि तुरंत उसका फायदा नहीं दिखेगा, लेकिन कुछ समय बाद निरंतर वो 3-4 साल तक अगर उसको प्रैक्टिस में ले आएंगे फिर उसको उनका फायदा दिखने लगेगा।
0: सर आपका मानना क्या है कि जब हम जैविक खेती की बात करें हैं, दूसरी ओर रासायनिक खेती की बात करते हैं, इन दोनों में अंतर क्या होता है आपके हिसाब से?
2: जी देखिए, रासायनिक खेती में हमेशा जो संश्लेषित या कह सकते हैं हमेशा रसायनों का प्रयोग करके जो खाद बनाई जाती है और कीटनाशक बनाए जाते हैं उनका प्रयोग किया जाता है, उनके प्रयोग से आप अंततः देखिए मनुष्य को ही नुकसान हो रहा है। आप बहुत सामान्य तरीके से इसको समझा जा सकता है कि जो यूरिया, डीएपी, एमओपी, ये सारे जो रासायनिक खाद है उनको डाला जा रहा खेत में, हर साल हर फसल के दौरान डाला जा रहा है, तो वो धीरे धीरे उसकी जो अन्य जो नकारात्मक तत्व है उसमें वो मिट्टी में बढ़ते चले जाते हैं, और जब कोई पौधा हम लगाते हैं, खेती करते हैं, तो उस पौधे की जड़ में, उसके तने में, उसके फल में, उसके फूल में, सभी में वो अवशोषित हो जाता है, और उसके बाद जब हम उसको, अगर कोई जानवर भी उसको खाता है और उसके शरीर में जाता है, उसका दूध हम पीते हैं, तो उसमें भी जो नुकसानदायक पदार्थ होते हैं वो हमें मिलते, तो हमारे शरीर में आ जाता है। हम डायरेक्ट जब सीधे तौर पे हम लोग उसका उपभोग करते हैं तो हमारे शरीर में वो नुकसानदायक पदार्थ आ जाते हैं। ऐसे धीरे धीरे इन तत्वों का सांद्रण हमारे शरीर में बढ़ जाता है, जिससे अनेक प्रकार की बीमारियां होने लगती हैं। ऐसे जो जैसे कुछ भारी धातु हैं, पानी, मृदा, वायु, सभी प्रदूषित होते चले जा रहे हैं इन कीटनाशकों और रासायनिक पदार्थों के अंधाधुंध प्रयोग से। इस तरह से जो सांद्रण बढ़ता है, चूंकि वो पता नहीं चलता है, लेकिन ये सतत चलने वाली प्रक्रिया है खाना पीना, तो ऐसे में हमारे शरीर में इसकी सांद्रता बढ़ जाती है, इसको हम बायो मैग्निफिकेशन बोलते हैं, एक वैज्ञानिक टर्म है, तो इसमें पता नहीं चलता है लेकिन वो धीरे धीरे शरीर में एक स्तर तक पहुंच जाता है, और जब एक स्तर से ऊपर हो जाता है तो उससे नकारात्मक प्रभाव उसके दिखने लगते हैं, अनेक प्रकार की बीमारियां होती हैं। जो इस समय आपको समाज में बहुत आसानी से दिख जा रहा है। सभी लोग किसी न किसी समस्या से ग्रसित होते चले जा रहे हैं खान पान की वजह से।
0: जी, अगर सर अगर फायदे की अगर यहाँ पर बात करते हैं तो सर
2: जी
0: इसका जैविक खेती का फायदा क्या है, क्योंकि अभी अभी रासायनिक जो हम लोग खाद डालते हैं उसका हमने नुकसान बताया है, फायदा क्या है जैविक खेती का?
2: जी जी इसके अनेक लाभ हैं। और उसमें सबसे पहले आप ये देखा जाएगा कि मृदा की उर्वरा शक्ति में वृद्धि हो जाएगी,
0: जी
2: उसमें जो पोषक तत्व है उसका संतुलन लंबे समय तक बना रहेगा।
0: जी
2: और जब इनका संतुलन लंबे समय तक बना रहेगा तो जो लाभदायक जीव होगी,
0: जी
2: और ऐसे टिकाऊ खेती में फसल का उत्पादन भी ज्यादा होगा और पशुओं का पालन पोषण भी अच्छे से किया जा सकता है, क्योंकि हानिकारक रसायन और कीटनाशक के प्रयोग से पर्यावरण पर अनेक नकारात्मक प्रभाव पड़ रहे हैं, और जबकि उसके विपरीत जब आप टिकाऊ और ये प्राकृतिक खेती की जाएगी तो उसका कोई ऐसा नुकसान नहीं दिखेगा। और टिकाऊ खेती करने पे देखिए लागत भी बहुत कम आती है
0: जी सर
2: और पर्यावरण में प्रदूषण तो कम होगा ही,
0: जी
2: साथ
0: सर
2: साथ उत्पादन के साथ उच्च गुणवत्ता युक्त खाद्य पदार्थ का भी उत्पादन होगा। और अंत में मैं यही कहूंगा कि
0: जी
2: अस्थायी कृषि लाभदायक होना चाहिए।
0: सर बहुत बहुत धन्यवाद। हमें आशा है सर कि हमारे किसान साथियों के जो सवाल थे उन सवालों
2: जी
0: के उनको अच्छे तरीके से जो आपने का जवाब जो दिया है का सर बहुत बहुत धन्यवाद।
2: जी बहुत बहुत धन्यवाद, सभी सक्रिय श्रोताओं को भी बहुत बहुत धन्यवाद।
3: दोस्तों, मैं हूं आपके साथ आपकी आरजे वर्षा, और आज हम बात करने वाले हैं जैविक खेती से होने वाले लाभ क्या क्या हैं। जी हाँ, भूमि की उपजाऊ क्षमता में वृद्धि हो जाती है, सिंचाई अंतराल में वृद्धि होती है, रासायनिक खाद पर निर्भरता कम होने से लागत में कमी आती है, फसलों की उत्पादकता में वृद्धि होती है, बाजार में जैविक उत्पादों की मांग बढ़ने से किसानों की आय में भी वृद्धि होती है। जी हाँ साथियों, तो जाना कि जैविक खेती करने से कितने सारे लाभ होते हैं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली कड़ी में, तब तक के लिए बाय बाय।
1: वृक्ष लगाकर करो श्रृंगार, धरती माँ की यही पुकार।
0: एक बार फिर से पुनः बहुत बहुत स्वागत करते हैं आज के इस खास कार्यक्रम को। और साथियों, अभी हमने जाना हमारे विषय विशेषज्ञ संजय कुमार जी से हमारे श्रोता साथियों और साथ साथ में किसान साथियों के जो सवाल थे उन सवालों के जवाबों को जाना, और जाना कि हम जैविक खेती से किस तरीके से लाभ ले सकते हैं और कैसे अपनी आय को बढ़ा सकते हैं और साथ साथ में अपनी खेती की लागत को हम कम कर सकते हैं।
3: साथियों के मन में बहुत सारे सवाल ऐसे थे जो चल रहे थे और उनके काफी हद तक उनको जवाब भी मिल चुके होंगे, लेकिन श्रोताओं अगर आपके मन में फिर भी कोई सवाल चल रहे हैं तो हमेशा की तरह हमारा नंबर नोट करिए, क्योंकि हमारा नंबर जो है वो आपके सारे सवालों का जवाब देगा। जी हाँ श्रोताओं, उसके लिए आपको लिखना होगा हमारा नंबर जो है 9219207749। श्रोताओं, आप हमें इस नंबर पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं या आप हमें पत्र के माध्यम से भी अपना सवाल पूछ सकते हैं, जिसके लिए हमारा पता है रेडियो बुंदेलखंड 90.4 ताराग्राम ओरछा तगेला के पास ओरछा। साथियों, अब समय हो चला है कार्यक्रम में सवालों का। जी हाँ, हम आपसे पूछने वाले हैं एक सवाल और जिसका देना होगा आपको सही जवाब। अगर आप देते हैं सबसे पहले और सही जवाब तो आपको मिलेगा रेडियो बुंदेलखंड 90.4 की तरफ से एक खूबसूरत सा उपहार। तो साथियों, आप तैयार हैं ना इनाम जीतने के लिए? चलिए जानते हैं हमारा आज का सवाल। आज का हमारा सवाल है, क्या हमें जैविक खेती को बढ़ावा देना चाहिए? सवाल एक बार फिर से सुन लीजिए, क्या हमें जैविक खेती को बढ़ावा देना चाहिए? ये हमारा आज का सवाल है। और श्रोताओं, पिछले कार्यक्रम का हमारा जो सवाल था, स्थायी खेती से क्या खेती की लागत कम की जा सकती है, ये हमारे कार्यक्रम का सवाल था, और जिसका सही जवाब देने वाले हैं डालचंद कुशवाहा जी, और इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि सबसे पहले और सबसे सटीक शब्दों में सवालों का जवाब इन्होंने दिया है। तो इनको रेडियो बुंदेलखंड की तरफ से खूबसूरत सा उपहार जल्दी जल्द पहुंचा दिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमें इतने ध्यान से सुनने के लिए और हमारे सवालों में जुड़ने के लिए। आज का सवाल यानी कि कार्यक्रम का सवाल एक बार फिर से सुन लीजिएगा। सवाल है, क्या हमें जैविक खेती को बढ़ावा देना चाहिए? तो आज के इस सवाल से उम्मीद रखते हैं कि हमारे जो भी श्रोता साथी इस कार्यक्रम में शामिल होना चाहते हैं और इस सवाल का सही जवाब देंगे, उनको हम अगले कार्यक्रम में उनके नाम के साथ शामिल करेंगे। चलिए श्रोताओं, अब हमारा समय होता है आज के इस कार्यक्रम से जाने का। अगले कार्यक्रम में फिर मुलाकात होगी आपकी और हमारी एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपनी रेडियो दोस्त वर्षा
0: और मनीष को दीजिए जाने की इजाजत।
3: आपकी और हमारी फिर होगी मुलाकात अगले कार्यक्रम में। तब तक के लिए नमस्कार।
4: शुभ कल। बदलती जलवायु के लिए तैयार हूँ।

0: उमंग CIET प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
0: आप सभी श्रोताओं को अजीत का अभिवादन
2: और विमलेश का नमस्कार।
0: श्रोताओं, आप सबको एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं लगातार कार्यक्रम को सुनने के लिए। और आज हम कार्यक्रम का प्रारूप थोड़ा सा बदलेंगे
2: जी।
0: अक्सर हम शुरुआत करते हैं एक सुविचार से, लेकिन आज आरंभ करना चाहते हैं एक लघु कथा से
2: जी।
0: जो कि आप कहते हैं कि हमें लघु कथा बहुत पसंद आती है, तो आइए सुनते हैं आज की लघु कथा।
2: एक बार एक नौजवान शिष्य महान दार्शनिक सुकरात के पास आया और उनसे पूछा,
0: गुरुवर, सफलता का रहस्य क्या है?
2: सुकरात ने उससे कहा,
0: मैं तुम्हें कल उत्तर दूंगा, कल तुम मुझे नदी के किनारे मिलो
2: जी। दूसरे दिन वो युवक सुकरात से नदी के किनारे मिला।
0: सुकरात उसे लेकर नदी में आगे बढ़ने लगे।
2: वे दोनों नदी में तब तक आगे बढ़ते रहे
0: जब तक नदी का पानी उनके गले तक ना आ गया।
2: और नदी के बीच में पहुंचकर अचानक ही सुकरात ने उस युवक का सिर पकड़कर पानी में डुबो दिया।
0: पानी के भीतर सांस लेने में अक्षम होने के कारण, श्रोताओ, वो युवक पानी से बाहर निकलने के लिए बुरी तरह से संघर्ष करता रहा,
2: लेकिन सुकरात की मजबूत पकड़ के सामने उसका ये संघर्ष विफल रहा।
0: मरता क्या ना करता, श्रोताओं, उस युवक ने अपनी पूरी ताकत लगा दी कि किसी प्रकार पानी से बाहर आ जाए।
2: पानी से बाहर निकलते ही वो युवक हांफते हुए तेजी से सांस लेने लगा।
0: उसे ऐसा करते देखकर सुकरात ने पूछा,
2: ये बताओ, जब तुम पानी के भीतर थे तब सबसे ज्यादा क्या चाहते थे?
0: उस लड़के ने कहा, मैं चाहता था सांस लेना।
2: सुकरात ने कहा,
0: यही सफलता का रहस्य है। जब तुम सफलता को उतनी ही बुरी तरह से चाहोगे जितना सांस लेना, तो वो तुम्हें मिल जाएगी।
2: इसके अतिरिक्त सफलता का कोई और रहस्य नहीं है।
0: तो श्रोताओं, आशा है कि ये कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। ये कहानी नहीं, एक सच्ची घटना है
2: जी।
0: तो याद रखिए कि सफलता प्राप्त करने का रहस्य है
2: उसकी पूरी शिद्दत से चाह करना और वैसा परिश्रम भी करना।
0: जी हाँ, और वैसा परिश्रम भी करना
2: जी।
0: आपको बता दें श्रोताओं कि पिछले दिनों में हमने एक प्रश्न आपसे पूछा था, और प्रश्न था कि इन दिनों ओलंपिक खेलों में विजेताओं को स्वर्ण, रजत और कांस्य पदक दिए जाते हैं
2: जी। प्राचीन ओलंपिक में विजेताओं को क्या दिया जाता था?
0: तो श्रोताओं, आपको बता दें कि लगभग किसी का भी उत्तर सही नहीं था। इसका उत्तर है, प्राचीन यूनान में प्रथम आने वाले को जैतून के पत्तों का मुकुट,
2: दूसरे स्थान पर आने वाले को जैतून के पत्तों की माला,
0: और तीसरे स्थान पर आने वाले को जैतून का फल दिया जाता था। आइए श्रोता मित्रों, अब चलते हैं आज के कार्यक्रम की ओर। और जैसा कि हमने कल भी किया था, आपको कार्यक्रम सुनने से पहले हल करनी होगी
2: एक पहेली,
0: और वह भी 30 सेकंड से एक मिनट के अंदर, क्योंकि आज का कार्यक्रम भी इसी पहेली पर आधारित है।
2: पहेली है,
0: भारत के स्वतंत्रता संग्राम में किस स्वतंत्रता सेनानी ने अंग्रेजों से संघर्ष के दौरान अपनी बांह स्वयं अपने हाथों से काट कर किस नदी में फेंक दी थी?
2: आपके लिए क्लू है,
0: बिहार,
2: शाहबाद
0: जी। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए, भारत के स्वतंत्रता संग्राम में किस स्वतंत्रता सेनानी ने अंग्रेजों से संघर्ष के दौरान अपनी बांह स्वयं अपने हाथों से काटकर किस नदी में फेंक दी थी?
2: आइए श्रोताओं, अब सुनते हैं प्रौढ़ शिक्षा को प्रोत्साहित करते हुए ये लघु गीत।
0: जी हाँ, ये लघु गीत सुनिए, और जब ये लघु गीत बज रहा है तो जल्दी से हमें फोन मिलाकर आज के प्रश्न का उत्तर दीजिए।
2: उत्तर देने के लिए हमारा IVRS नंबर है
0: 8800044055 9।

0: जीते गए।
1: तो आइए अब सुनते हैं ये कार्यक्रम।
2: जी हाँ श्रोताओ, आपको कार्यक्रम का नाम हम नहीं बताएंगे क्योंकि कार्यक्रम सुनते सुनते आपको आज के प्रश्न का उत्तर देना है।
3: हम किसानन का महाजनन से बदला लेकर इससे अच्छा मौका फिर नहीं मिली। हमका सिपाहियन के साथ मिलकर लड़क चाहिए, महाजनन के बही खातों को जरा डालो।
4: अठारह भारतीय इतिहास का वो समय है जब ईस्ट इंडिया कंपनी के शोषण और दमन के खिलाफ हिंदुस्तान के राजाओं, जमींदारों, किसानों, काश्तकारों और जनता ने विद्रोह कर दिया था। बैरकपुर में 34वीं इन्फेंट्री के सिपाही मंगल पांडे लड़ते लड़ते फांसी पर चढ़ गए थे। ये देखकर अंग्रेजों के खिलाफ पूरा देश धधक रहा था और विद्रोह की लहर फैल गई थी। भारत माता के कई सपूत आगे आए, जैसे जगदीशपुर के कुंवर सिंह ने अंग्रेजों को देश से बाहर खदेड़ने के लिए जान की बाजी लगा दी। मेरठ में 10 मई को विद्रोह का बिगुल बजा और 3 जुलाई को पटना में हुई पीर अली की फांसी की सजा ने आग में घी डालने का काम किया। जगदीशपुर, दानापुर और आरा पर पीर अली की फांसी का गहरा असर पड़ा। जनता बगावत करने लगी। कहा जाता है कुंवर सिंह और जगदीशपुर के लोगों ने पीर अली की याद में एक मजार बनवाई, जिससे अंग्रेज और खफा हो गए। पटना के कमिश्नर ने कुंवर सिंह को मना किया, पर कुंवर सिंह कहां रुकने वाले थे।
5: अगर तुम लोगों ने फौज को इकट्ठा किया तो हम तुम्हारा काम तमाम कर देगा, अंडरस्टैंड।
4: उनकी रगों में तो देशभक्ति का जज्बा उफान ले रहा था।
6: मस्ती की थी छिड़ी रागनी, आजादी का गाना था, भारत के कोने कोने में होता यही तराना था। उधर खड़ी थी लक्ष्मीबाई और पेशवा नाना था, इधर बिहारी वीर बांकुड़ा खड़ा हुआ मस्ताना था। 80 वर्षों की हड्डी में जागा जोश पुराना था, सब कहते हैं कुंवर सिंह भी बड़ा वीर मर्दाना था। ईस्वी में कुंवर सिंह का जन्म साहब जादा सिंह के घर हुआ। लाड़ प्यार से पालन पोषण हुआ। पिता के निधन के बाद कुंवर सिंह ने सन 1826 ईस्वी में जगदीशपुर की जमींदारी की बागडोर संभाली। कुंवर सिंह के बारे में कहा जाता है कि वे एक बड़े नेक दिल इंसान थे। जो किसान समय पर लगान नहीं दे पाते थे या मुसीबत में पड़ जाते थे, वे उनकी दिल खोलकर मदद करते थे। इसी कारण कई बार वे लगान की पूरी राशि जमा नहीं करा पाते थे। उनके ऊपर धीरे धीरे कंपनी की बकाया राशि का कर्ज बढ़ता गया। अंग्रेज उनसे खफा थे, पर आम जनता बहुत खुश थी।
7: सुना तुमने?
8: क्या?
7: पूरे देश में लोगों ने कंपनी के खिलाफ विद्रोह कर दिया है। अब हमारे कुंवर सिंह क्या करेंगे?
8: मेरा तो मन कहता है कि कुंवर सिंह लड़ेंगे, वो समझौता करने वालों में से नहीं है।
7: ठीक कहते हो भाई। अभी देखा नहीं, जब पीर अली की मजार पर गए थे तब उनका मन कितना भारी हो गया था। अमर सिंह तो एकदम गुस्से में थे।
8: हाँ, मुझे भी लगता है कुंवर सिंह जरूर लड़ेंगे, कोई साथ दे या ना दे।
4: कुंवर सिंह चार भाई थे, वो सबसे बड़े थे। दूसरे भाई का नाम दयाल सिंह और तीसरे का नाम राजपति सिंह। अमर सिंह उनके सबसे छोटे भाई थे। वे हमेशा उनके साथ रहते थे। जब दानापुर की 40वीं देशी पलटन के सिपाहियों ने विद्रोह किया तो जगदीशपुर के लोग एकजुट हो गए। दानापुर के विद्रोही सिपाही नेता हरकिशन सिंह की चारों ओर चर्चा होने लगी।
7: बड़ बहादुर वा हरकिशन वा, अरे कैसे दानापुर में अंग्रेजन के छक्का छुड़ा दे ले। अरे का हो अब हमार कुंवर सिंह का करी।
0: अरे सुने में आयल बा कुंवर सिंह के सब खबर हो गईल बा, कभो कुछ हो सके ना। हाँ
9: चाहिए कि जिसके बारे में
7: हुजूर अभी अभी खबर मिली है कि दानापुर की देशी पलटन ने विद्रोह कर दिया है। अंग्रेजों से सिपाही लड़ते हुए आरा की ओर बढ़ रहे हैं। हमें क्या आदेश है?
9: क्या कहते हो अमर सिंह? ये बड़ी मुश्किल की घड़ी है। सिपाहियों का मनोबल बढ़ाना जरूरी है। हमारे जाबाज अंग्रेजों के अत्याचारों से मुक्ति पाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। आपकी क्या राय है?
8: भैया सभी अंग्रेजों से मुक्ति चाहते हैं और समय आ गया है अंग्रेजों से दो दो हाथ हो जाएं। काफी समय से कैप्टन डनवर हमारे किसानों पर अत्याचार कर रहा है। अंग्रेज सैनिक हमारी खड़ी फसलों को रौंद देते हैं।
9: ठीक कहते हो अमर सिंह। रहीम खान
7: जी हुजूर,
9: सिपाहियों को संदेश भेजो कि हमसे आरा कोठी में मिले।
7: जी हुजूर।
9: तो ठीक है, आरा चलने की तैयारी करो।
6: छब्बीस जुलाई 1857 आरा में कुंवर सिंह की कोठी। चारों ओर सैनिकों की चहलकदमी। दानापुर से आए सैनिकों के सामने कुंवर सिंह खड़े हैं।
9: सैनिक भाइयों और बहादुर साथियों, अब समय आ गया है कि हम कंपनी की गुलामी की जंजीरें काटकर फेंक दें। आप सब ने विद्रोह करके हिम्मत और साहस का परिचय दिया है। हरकिशन सिंह और रंजीत राम दोनों बहादुर सिपाही हैं। इनका युद्ध करने का कौशल और क्षमता सबसे उत्तम है। ये दोनों सैनिकों का नेतृत्व करेंगे। आगे बढ़िए, सबसे पहले हमें अंग्रेजों को आरा से बाहर निकालना है, फिर पूरे देश से। मैंने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, नाना साहब और बेगम हजरत महल को खबर भिजवाई है। शीघ्र ही हम सारे देश में एकजुट होकर लड़ेंगे।
10: अमर सिंह जिंदाबाद, अमर सिंह जिंदाबाद, हरकिशन सिंह जिंदाबाद, कुंवर सिंह जिंदाबाद, रंजीत राम जिंदाबाद।
6: सैनिकों के नारों से आरा कोठी का प्रांगण गुंजायमान हो उठा। सैनिकों की चहल पहल बढ़ गई। तभी सैनिकों की तरफ से हरकिशन सिंह आगे बढ़े और कुंवर सिंह की बगल में आ खड़े हुए। अदब से उन्हें सलामी देते हुए वो सैनिकों की तरफ मुखातिब हुए।
11: साथियों, आप सब ने दानापुर में अंग्रेजी फौजों और अफसरों के द्वारा किया गया शोषण और दमन देखा है। उनके यहाँ रहते हुए हम स्वाधीन नहीं है। हमारे किसान भाई कर्ज के बोझ से दब गए हैं। अब जंग शुरू होती है। कुंवर सिंह, कुंवर सिंह, भारत माता की।
6: कहा जाता है कि कुंवर सिंह और हरकिशन सिंह के भाषण का सिपाहियों पर गहरा प्रभाव पड़ा। 27 जुलाई को कुंवर सिंह के नेतृत्व में देशी सिपाहियों ने अंग्रेजी फौजों की आरा में घेराबंदी की। लड़ाई जमकर हुई। कई अंग्रेज सैनिक लड़ाई में मारे गए। कुंवर सिंह ने कैप्टन डनवर की फौज को पराजित किया। इतिहास में इसे कुंवर सिंह द्वारा आरा फतेह के नाम से जाना जाता है।
4: अंग्रेजी फौजों ने दोबारा तैयारी की और कुछ ही दिनों बाद मेजर आयर के कमांड में बीबीगंज के स्थान पर एक और युद्ध हुआ। कुंवर सिंह को अपने सिपाहियों के साथ जगदीशपुर लौटना पड़ा। 12 अगस्त को एक घमासान युद्ध हुआ। कुंवर सिंह की सेना पराजित हुई। चारों ओर सन्नाटा छा गया, लेकिन लोगों ने हिम्मत नहीं हारी। कुंवर सिंह और उनके सिपाहियों को जगदीशपुर छोड़ना पड़ा। फिर फौज संगठित की। देश को आजाद कराने के लिए नौजवान स्वयं फौज में आगे आए। लोगों का जोश देखकर मिर्जापुर, रीवा, बांदा और कानपुर आदि स्थानों पर अंग्रेजों के साथ लड़ते हुए कुंवर सिंह की सेना लखनऊ पहुंची।
12: कुंवर सिंह जिंदाबाद! कुंवर सिंह
13: जिंदाबाद!
12: भारत माता की
13: जय!
12: भारत माता की
13: जय!
4: लखनऊ में बेगम हजरत महल ने कुंवर सिंह और उनके सहयोगियों का जोरदार स्वागत किया।
14: अल्लाह की मेहरबानी से आज हमारे बीच शाहबाद के बाबू कुंवर सिंह मौजूद हैं। इन्होंने अंग्रेजी फौज को कई जगह बड़ी शिकस्त दी है। अंग्रेज हुक्मरान इनसे घबराते हैं। हमने कुछ फैसले लिए हैं। हम चाहते हैं कि हम लोग मिलकर अंग्रेजों का मुकाबला करें। खुदा जानता है कि आजमगढ़ से अंग्रेजों को हटाना कितना मुश्किल काम था। हम आजमगढ़ की मिल्कियत बाबू कुंवर सिंह के सुपुर्द करते हैं। हम चाहते हैं कि बाबू कुंवर सिंह आजमगढ़ के बाकी इलाकों से अंग्रेजों को निकालकर बाहर करें।
9: बेगम साहिबा, आपके इस सम्मान से हम आपके एहसानमंद हैं। आपने एक नई जमीन दी है। अल्लाह को मंजूर होगा तो हम आजमगढ़ से भी

0: विरासत का मालिकाना हक देकर बेगम हजरत महल ने उन्हें राज सम्मान प्रदान किया था। कहते हैं कि वहीं से लोग
1: यह गर्भावस्था की अवधि के दौरान मां और भ्रूण दोनों को गंभीर संक्रमण से बचाता है, और दूसरा यह IgG और IgA एंटीबॉडीज के प्लेसेंटल ट्रांसफर द्वारा जन्म के तुरंत बाद नवजात शिशु को संक्रमण से बचाता है। इम्यूनोग्लोबिन ए यानी IgA यह श्वसन पथ और पाचन तंत्र के स्तर के साथ साथ लार, आंसू और स्तन के दूध में पाया जाता है। इम्यूनोग्लोबिन जी यानी IgG यह सबसे आम एंटीबॉडी है। यह रक्त और शरीर के अन्य तरल पदार्थों में होता है। यह बैक्टीरिया और वायरल संक्रमण से बचाता है। गर्भावस्था के दौरान कौन से टीके लगवाना वर्जित है? जीवित क्षीण वायरस टीकों यानी लाइफ अटेन्यूएटेड वायरस वैक्सीन से गर्भावस्था के परिणामों पर संभावित प्रतिकूल प्रक्रिया हो सकती है, इसलिए इनसे बचना चाहिए। वर्तमान में उपलब्ध लाइफ के उदाहरण क्षीण टीके वायरल संक्रमणों के खिलाफ खसरा, कठमाला, रुबेला, चेचक, पीला बुखार, इन्फ्लुएंजा और मौखिक पोलियो वैक्सीन शामिल है। जीवित क्षीण जीवाणुरोधी टीकों में तपेदिक, BCG और मौखिक टाइफाइड टीका शामिल है। गर्भवती महिलाओं में वैक्सीन का भरोसा कैसे बढ़ाएं? महिलाएं अपनी व्यापक घरेलू जिम्मेदारियों के कारण अक्सर उपलब्ध स्वास्थ्य सेवाओं का कम उपयोग करती हैं और अक्सर अपनी भलाई की उपेक्षा करती हैं। गर्भावस्था के दौरान टीकाकरण के लाभों के बारे में सामुदायिक जागरूकता को बढ़ाने के लिए प्रमुख निर्धारक है। टीकाकरण के महत्व के बारे में सफल वकालत में स्वास्थ्य सेवा प्रदाता की प्रमुख भूमिका है। गर्भवती महिलाओं के मन में सकारात्मक प्रभाव के लिए प्राथमिक देखभाल चिकित्सा की भूमिका भी महत्वपूर्ण है। गर्भवती महिलाओं में मातृ एवं नवजात टेटनिस से सुरक्षा के लिए टेटनिस टॉक्साइड वैक्सीन या TDAP की कितनी खुराक लेनी चाहिए? भारत में गर्भवती महिलाओं के लिए आमतौर पर 3 टीकाकरण की सिफारिश की जाती है। इन टीकों में टेटनिस टॉक्साइड, TDAP और इन्फ्लुएंजा वैक्सीन शामिल है। टेटनिस एक घातक जीवाणु संक्रमण है जिससे माँ और नवजात शिशु दोनों को खतरा होता है। क्लॉस्ट्रिडियम टेटनी के कारण यह घावों के माध्यम से शरीर में प्रवेश करता है और इलाज न किए जाने पर घातक जोखिम पैदा कर सकता है। नवजात टेटनेस ठीक न हुए नाभि स्तंभ के संक्रमण के कारण होता है। वैक्सीनेशन ही इसकी रोकथाम का एकमात्र तरीका है। टेटनेस टॉक्साइड के टीके गर्भावस्था के दौरान भी सुरक्षित हैं। भारत के टीकाकरण कार्यक्रम में गर्भावस्था के दौरान 2 खुराक की सलाह दी जाती है, जिसमें 3 साल के भीतर अगली गर्भधारण के लिए बूस्टर खुराक होती है। TT टीकाकरण मातृ एवं नवजात सुरक्षा प्रदान करता है, जिससे समय से पहले होने वाले बच्चे की जन्म की संभावना को कम किया जा सकता है। गर्भावस्था का पता चलने पर TT1 यथाशीघ्र दिया जाना चाहिए, TT2 TT1 के 4 सप्ताह के बाद दिया जाना चाहिए। यदि मां ने पिछली गर्भावस्था में 3 साल के भीतर TT2 की खुराक ली है तो भारत के राष्ट्रीय दिशा निर्देशों के अनुसार TT की 1 बूस्टर खुराक की सलाह दी जाती है। आइए जानते हैं कि स्तनपान अवधि के दौरान कौन सी टीकों की सिफारिश की जानी चाहिए। एमपॉक्स, चेचक और पीले बुखार के टीकों को छोड़कर अन्य सभी टीके जैसे निष्क्रिय, जिनमें की एंथ्रेक्स, हेपेटाइटिस ए, HPV, इन्फ्लुएंजा, JE, IPV और रेबीज आते हैं। इसी के साथ लाइव अटेन्यूएटेड यानी जीवित क्षीण वायरस, जिनमें इन्फ्लुएंजा, MMR, चिकन पॉक्स और थायराइड आता है, ये सभी लिए जा सकते हैं। लाइव अटेन्यूएटेड यानी जीवित क्षीण, जिनमें आते हैं इन्फ्लुएंजा, MMR, चिकन पॉक्स, टाइफाइड। रिकॉम्बिनेंट यानी पुनः संयोजक,

जिनमें आते हैं हेपेटाइटिस बी और मेनिंगोकॉकल, कॉन्जुगेट यानी संयुग्म जिनमें आते हैं एचआईवी, पीसीवी, मेनिंगोकॉकल, पॉलीसैकेराइड जिनमें आते हैं पीवीसी और टाइफॉइड। ये सारे वैक्सीन स्तनपान की अवधि के दौरान सुरक्षित रूप से उपयोग किए जा सकते हैं। हालांकि बाल टीकाकरण दरों में काफी प्रगति हुई है, लेकिन गर्भवती महिलाएं अभी भी बड़े पैमाने पर वंचित हैं। टीकों पर विश्वास पैदा करने के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं, सामान्य चिकित्सकों, प्रसूति रोग विशेषज्ञों और स्त्री रोग विशेषज्ञों द्वारा बेहतर संचार रणनीतियों की तत्काल आवश्यकता है। विश्वास निर्माण का यह प्रयास न केवल बच्चों और माँ की भलाई के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि टीकाकरण के समग्र रूप में समाज को मिलाने वाले व्यापक स्वास्थ्य लाभों के लिए भी महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।

नमस्कार साथियों, रेडियो बुंदेलखंड 90.4 सुनने वाले सभी किसान पंच भैया बहन को आपके अपने रेडियो साथी मनीष कार्यक्रम खेत खलियान में बहुत ही बहुत स्वागत करते हैं। और हमारे किसान साथी उनको बता दे, वो चाहते हैं कि आज के हमारे जो कार्यक्रम खेत खलियान कार्यक्रम में आज बतकाव करवे जा रहे हैं कि हमारे किसान साथी कैसे हैं। तो ऐसे में किसान साथी टमाटर की नर्सरी कौन तरीके से कर सकते हैं, अब ऐसे खेत की तैयारी कर लेवे और कौन तरीके से हमारे किसान साथी कौन सा बीज लगा सकते हैं, वह विषय पर बतकाव करेंगे। आपको बता दे, वो चाहते हैं कि खेत कल्याण कार्यक्रम में हम खेती किसानी से जुड़ी बतकाव को लेकर आते हैं और हमारे किसान साथियों को वो छोटी सी छोटी जानकारी उपलब्ध कराते हैं जो हमारे किसान साथियों की आय को दुगनी करवे के लाने बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रहती हैगी। खासतौर पर देखो जा रहा है कि अगर बुंदेलखंड की बात करें तो बुंदेलखंड में अब खंड खंड वर्षा होती हैगी और ऐसे में किसान साथी हमारे बहुत सारे किसान साथी जो खेती पर आश्रित रहते हैंगे, तो ऐसे में हमारे किसान साथी का कर रहेंगे। तो खेती के संगे संगे चूंकि अब गर्मी का मौसम चल रहा है और गर्मी के मौसम में जा वक्त बहुत ज्यादा धूप पड़ रही हैगी और हमारे किसान साथी फ्री बैठे हुई हैं, तो अब किसान साथियों को अगली फसल की तैयारी कर लें चजित और अपनी आय तबई दुगनी हुए जब छोटी छोटी बातों को हम ध्यान करेंगे। जैसे कि खेत खाली हैंगे अपन नर्सरी भी कर सकते हैंगे और संगे संगे हम अपन फलदार वृक्ष भी अपन लगा सकते हैं अपने और नर्सरी भी लगा सकते हैं, फूलन की नर्सरी भी लगा सकते हैं। तमाम प्रकार के ऐसे विकल्प है खेती किसानी में जो हमारे किसान साथी करके अपनी आय को बढ़ा सकते हैंगे। तो आज हमारे संगे विषय विशेषज्ञ के तौर पर डॉक्टर सिंह जुड़ेंगे और वो बतकाव करेंगे और बताएंगे कि जब गर्मी के मौसम में हमारे किसान साथी कैसे अपनी टमाटर की नर्सरी लगा सकते हैं, कौन सा बीज और का का ध्यान रखना चाहिए, किस तरीके से मट्टी को बनाना चाहिए, कौन सी खाद डालना चाहिए, कितनी मात्रा में डालना चाहिए, पूरी जानकारी जो कार्यक्रम के माध्यम से सुनेंगे अपन। लेकिन जैसे पहले अपन कैसे मौसम आधारित अपन खेती करते हैंगे और मौसम का कुछ ठिकाना ही नहीं रहते कि कब बरसात हो जाए, कब जहां धूप न करे, ऐसे में हमारे किसान साथी आप का करवे तो मौसम आधारित खेती करवे कार्यक्रम को आगे बढ़ात भय अपन एक 900 लोकगीत सुन ले रहे हैं और जाके बाद हम अपने विषय विशेषज्ञ के पास आपको लुवा चले और उनसे जाना है कि हमारे किसान साथी कौन तरीके से टमाटर की नर्सरी को खेती कर सकते हैं, कौन वैरायटी अपने खेतन में लगा सकते हैं। तो आओ सुनते हैं जो 900 लोकगीत को।

की अगर होती तो आपके इस आंगन को शोभायमान बढ़ाती, बच्चा आपके आंगन में किलकारियां देता और अपने भाई को राखी बांधती और कहती, राखी बांधती अपने भाई की कलाई को सुशोभित करती और कहने लगी,

0: रेडियो बुंदेलखंड 90.4 सुनने वाले सभी किसान पंच भैया बहनों को एक बार फिर से पुनः बहुत बहुत स्वागत करते हैं कार्यक्रम खेत खलियान में। और अबे अपन ने जो नौ सौ लोकगीत को सुनो, लोकगीत को आनंद लाओ, कार्यक्रम को आगे बढ़ा तो भाई अपने विषय विशेषज्ञ के पास आपको लुआ चला थेंगे और उनसे जानत है कि टमाटर की नर्सरी हमारे किसान साथी कौन तरीके से लगा सकते हैं, का सावधानी उनको बरतने चाहिए, आओ सुनत हैं जा चर्चा को। डॉक्टर साहब आपसे जानना चाहते हैं कि हमारे किसान साथी कौन तरीके से, अब चूंकि खाली खेत पड़े हैं तो टमाटर की बहुत ज्यादा महंगाई भी हैगी, टमाटर की नर्सरी कैसे लगा सकते हैं, कौन कौन बातन को उनको ध्यान में रखें चाहिए।
1: टमाटर हमारे भारतवर्ष के उत्तरी मैदानों में काफी खेती की जाती है और लगभग पूरे वर्ष भर इसकी मांग बाजार में बनी रहती है। तो अब आप देखें, अगर हमारे किसान भाई जो कि फरवरी मार्च की खेती कर रखे हैं, अब वो फसल धीरे धीरे समाप्ति की ओर जा रही है, तो अब मैदानी क्षेत्रों में जो टमाटर है अब इतनी गर्मी के कारण पकता है तो बिल्कुल लाल भी नहीं होता है, आप देखेंगे हल्का लाल रंग का बन जाता है, बस उसी पे तुड़ाई करनी पड़ती है, क्योंकि टेम्परेचर जब 40 से डिग्री ऊपर होने लगता है तो उसमें पिगमेंट ही नहीं बनता है लाल रंग का लाइकोपिन, इस वजह से वो टमाटर लाल नहीं होता है। तो ये गर्मी का प्रकोप है, उसकी वजह से लाल नहीं बनता है। तो इस वजह से अब ये धीरे धीरे वैसे भी वो फसल समाप्ति की ओर है, तो अब हमारे किसान भाई ये देखें, अब अगली फसल की तैयारी उनको करने का समय आ रहा है कि अब नेक्स्ट टमाटर की जो खेती उनको करनी है तो उसके लिए आपको अभी से तैयारी सोचनी है, हमें कौन सी वैरायटी लगानी है, किस किस्म का चुनाव करना है और किस तरह से उसके नर्सरी की तैयारी करनी है, तो इस बातों का ध्यान रखना जरूरी है। और अगर आप अभी से चुनाव करके उन किस्मों का चयन करके अपने पास उसके बीज उपलब्धता कर लेंगे तभी तो आप नर्सरी बनाएंगे, फिर आपकी फसल अच्छी होगी। तो आप देखें ये जो हमारा आने वाला समय है उसमें

एक बीमारी बहुत तेज आती है टमाटर के अंदर में हमारे उत्तर भारत के मैदानों में, जिससे काफी क्षति पहुंचती है। उसको हम लोग पर्ण कुंचन रोग बोलते हैं टमाटर में, अंग्रेजी में लीफ कर्ल वायरस बोलते हैं। इसका प्रकोप बहुत अधिक होता है इस सीजन की खेती में, जो कि फरवरी मार्च वाले में कम होता है। तो और या तो फिर जो आपका समय है, आप अक्टूबर में जो बुआई करते हैं उसमें थोड़ा सा कम हो जाता है, लेकिन ये जून जुलाई वाला मौसम, जुलाई अगस्त में जो ट्रांसप्लांटिंग या रोपाई आप करते हैं, इसमें अधिक से अधिक आपका ये पर्ण कुंचन रोग आने की संभावना होती है। तो आपको इस समय ये ध्यान रखना है कि जो किस्म का चुनाव आप करेंगे, वैसे तो टमाटर की खेती में बहुत सारी किस्मों का आपके लिए उपलब्ध है, लेकिन आपको ये विशेष ध्यान इसीलिए मैं आगाह कर रहा हूँ कि जो पर्ण कुंचन रोग से रोधी किस्में हैं उनका ही आप चुनाव करें तो इस सीजन के लिए बहुत अच्छा होगा। और अक्टूबर के मौसम के लिए तो बहुत सारी वैरायटीज हैं, उसको आप खेती कर सकते हैं। तो आप जब अभी बुआई की बात समय जो हम कर रहे हैं कि आप जून, मध्य जून से लेकर के पूरा जुलाई में आप इसकी नर्सरी की टमाटर की डालेंगे, तो उसके लिए जो उपयुक्त किस्में हैं कि आप देखें, पंजाब से हमारे जो कुछ किस्में निकाली गई हैं जो कि काफी बहुत ही अच्छी हैं और उनकी उपज भी अच्छी मिलती है और उनका साइज भी 80 से 90 ग्राम तक का होता है हर टमाटर का, और लाल रंग के होते हैं और इसमें सीमित बढ़वार वाली फसल है, तो जिससे आपको बहुत ज्यादा ये सहारे की आवश्यकता नहीं पड़ती है चढ़ाने की, तो आप खुले खेतों में उसकी खेती कर सकते हैं, जिसको हम लोग डिटर्मिनेट ग्रोथ हैबिट वाला बोलते हैं। तो उसमें पूसा बरखा एक, पूसा बरखा दो और पूसा बरखा चार, ये जो तीन किस्में हैं हमारे पंजाब कृषि विश्वविद्यालय ने निकाली है, जो बिल्कुल ही लीफ कर्ल वायरस रेजिस्टेंट किस्में हैं, ये हमारे किसान भाइयों के लिए बहुत ही उपयुक्त हैं। और इसी क्रम में हमारे जो भारतीय कृषि अनुसंधान सब्जी अनुसंधान संस्थान वाराणसी में है, वहां से भी दो तीन अच्छी किस्में निकाली गई हैं जो इस सीजन के लिए बहुत ही अच्छी हैं। इसमें है काशी यमन, काशी विशेष, काशी अमृत और एक हाइब्रिड किस्म भी उन्होंने बनाई है, अभी नई नई निकाली है, काशी अभिमान। तो ये जो चार किस्में हैं जो काशी से निकाली गई हैं और तीन किस्में आपको पंजाब से निकाली गई हैं, ये इस बरसात के मौसम में जो आपकी फसल आएगी उसके लिए बहुत ही उपयुक्त किस्म है। उसका कारण सिर्फ यही है कि इस सीजन में पर्ण कुंचन रोग का प्रकोप बहुत अधिक होता है, तो जो दूसरी किस्में लगाएंगे आप उसमें लगाएंगे, लेकिन उसके लिए मैनेजमेंट आपको बहुत करना पड़ेगा, बहुत सारी दवाइयों का प्रयोग उपयोग करना पड़ेगा, तब जाके आप उस टमाटर से कुछ खेती से आप लाभ ले पाएंगे। तो हमारे किसान भाई आप देखें, अगर आप एक हेक्टेयर टमाटर की खेती लगाना चाहते हैं तो उसमें आपको 400 से 500 ग्राम बीज पर्याप्त होता है, लेकिन हाइब्रिड किस्म अगर है तो उसका 200 से 250 ग्राम बीज ही पर्याप्त होता है। तो इस बात का आप ध्यान रखें और उसी हिसाब से आप इस बीज की मात्रा को अपने पास सुलभ कर लें और किस्मों का चयन कर लें। आप देखें जो खुले खेत हैं, आपको टमाटर की खेती करनी है तो कम से कम आपको 10 क्यारी की आवश्यकता पड़ेगी, 3 मीटर लंबी, 1 मीटर चौड़ी और 15 सेंटीमीटर ऊंची। इस तरीके से आप 10 क्यारी बनाएंगे और हर क्यारी में लगभग 40 ग्राम के आसपास बीज की आप बुआई करेंगे तो आपके अच्छे पौधे तैयार होंगे। तो इस बात को आप ध्यान रखें। तो इसलिए सबसे पहले आपको भूमि शोधन करने की जरूरत है, और भूमि शोधन दो प्रकार से होती है। एक तो ये है कि जो सौर हमारा इतना गर्मी का मौसम है, इसमें खाली आप अगर नमी है तो उसमें डाल दें, अगर लेकिन उसमें एक चीज और डाल दें तो ज्यादा अच्छा हो जाएगा। जैसा मैंने फॉर्मलिन आती है आपको, फॉर्मल्डिहाइड नाम से भी आती है बाजार में, तो आप उस दवा को ले लें और 25 ml दवा 1 लीटर पानी में इस हिसाब से घोल के आप पूरे क्यारियों के ऊपर अच्छे से छिड़काव कर दें, जिससे कि उसमें नमी बन जाए। और नमी हो जाने के बाद जो सफेद पॉलीथीन की सीट आती है, चादर आती है, वो 15 से 50 माइक्रोन वाली, उसको लेकर के आप उसको चारों तरफ से उसको ढक दें और साइड से इतनी मिट्टी से दबा दें साइड को कि उसके अंदर हवा पास न कर सके, बिल्कुल टाइट बंद कर दें। तो जो धूप पड़ेगी अंदर और नमी जो नीचे है उसके अंदर वाष्प पैदा होगा, और वाष्प होने से जो अंदर की जमीन के नीचे फफूंद या कीड़े मकोड़े हैं वो स्वतः ही नष्ट हो जाएंगे। तो इससे काफी हद तक आपकी बीमारी दूर हो जाएगी। तो आप जब इस तरीके से कर रहे हैं उसके बाद आप उस पॉलीथीन को हटाएं। पॉलीथीन हटाने के बाद 1 हफ्ते तक पॉलीथीन को ढके रखिएगा, उसके बाद हटाएं। हटाने के बाद उससे थोड़ा सा फावड़े से लेकर के मिट्टी को खोल दें, हल्का सा गुड़ाई कर दें, तो जिससे उसके अंदर जो गैस भरी हुई है दवा की वो धीरे धीरे 4-5 दिनों में निकल जाएगी। उसके बाद फिर आप खेत की तैयारी करें,
और उसमें हर

क्यारी में 15 से 20 किलो सड़ी गोबर की खाद आपके पास है या केचुए की खाद भी उपलब्ध है, तो जो भी है आप उसमें क्यारी में मिलाएं और क्यारी में डालने के बाद उसमें हर क्यारी में 200 ग्राम सिंगल सुपर फास्फेट भी उस क्यारी में मिलाएं, छिटक दें मिट्टी में, और संभव है तो 10 ग्राम प्रति क्यारी फोरेट ये भी आप उसमें मिला सकते हैं, जिससे कि कोई जमीन में जो कीड़े होते हैं, कटुआ कीट होते हैं और कोई बोरर के कीट होते हैं, तो वो भी मर जाते हैं। तो इस तरीके से आपका खेत इसमें डाल करके बिल्कुल खेत को एकदम अच्छी से गुड़ाई करके घास खरपतवार निकाल करके बिल्कुल तैयार रखें और भुरभुरा हो बिल्कुल खेत, यह ध्यान रखना है। तो जब खेत बिल्कुल आपका तैयार हो गया और बीज शोधन, अगर आपने बाजार से बीज खरीदी है तो शोधित करके ही बीज आती है, अगर आपको शुद्ध बीज मिल रहा है बिना शोधित के, जिसका कि हल्के पीले कलर का बीज आपको दिखाई दे रहा है जो लगता है कि ये बिना ट्रीटेड है, तो आप चाहें तो उसमें कैप्टान 2 से 3 ग्राम 1 किलो बीज, जिसे आपने आधा किलो के आसपास ली है, तो एक चुटकी दवा सिंपल 1 से 2 ग्राम उसमें मिला करके बिल्कुल ऐसे ऐसे मिक्स करने के बाद तो वो बीज शोधन हो जाएगा उससे। फिर आप 5 सेंटीमीटर की कतारों में लाइनें निकालें हर क्यारी में और गहराई रखें 1.5 से 2 सेंटीमीटर की, तो उसमें फिर इस बीज को बुआई करें। बीज बहुत घना ना बोएं इस बात का ध्यान रखें, और जब बुआई कर लेते हैं आप तो उसके ऊपर फिर सड़ी हुई गोबर की खाद का जो मिक्सर है उसके ऊपर से ऐसे फैला करके उसको बराबर समतल कर दें, बिल्कुल समतल रखें ऊपर, जिससे पानी दें तो ऊंचा नीचा ना हो, कहीं पानी ज्यादा ना हो, और बुआई करने के बाद सूखी हुई घास अगर आपके पास है या पराली है तो उसके ऊपर फैला दें अच्छे से। ये दो काम करती है, नीचे नमी को संरक्षण रखती है और ऊपर से तेज वर्षा वगैरह हो गई तो वो अधिक पानी से बीज इधर उधर न बह जाए उसको भी बचाती है। तो इस चीजों का ध्यान रखेंगे तो आपका बहुत ही अच्छा बीज का जमाव होगा। एक बात और ध्यान रखें, गर्मी का दिन है, हो सके तो सुबह या सायं ही पानी दें, दिन में और पानी ना दें। कभी कभी क्या होता है हमारे किसान भाई कि अगर आपने सब कुछ सुरक्षात्मक ढंग भी अपनाया हुआ है और लेकिन फिर भी मौसम के ऊपर आपका कंट्रोल नहीं है, तो हमारे नर्सरी के अंदर कमर तोड़ वाली बीमारी जो डैम्पिंग ऑफ हम कहते हैं, तो वो आर्द्र गलन भी बोलते हैं, तो इस तरीके की बीमारी जो आ जाती है इससे पौधे जमाव के बाद नीचे गिरने लगते हैं, उनकी कमर टूट जाती है, बहुत पतली होती है। तो उसके लिए आप जब आप सिंचाई करते हैं सुबह या शाम करना है खाली सिंचाई, तो उस पानी में 20 ग्राम डायथेनियम 45 10 लीटर में पानी के हिसाब से घोल बना करके आप उसको जब सिंचाई करते हैं उसी में छिड़काव किया करें। कभी कभी क्या होता है कि अगर आप जो आपने सड़ी हुई गोबर की खाद डाली हुई है अगर उसमें नाइट्रोजन की मात्रा कम लगती है और नर्सरी के पौधे हमारे जो पीले दिखाई देने लगते हैं, तो उसमें आप 0.3% यूरिया का घोल छिड़काव कर सकते हैं, जैसे कि 3 ग्राम यूरिया 1 लीटर पानी में घोल बना करके एक हल्की सी छिड़काव कर दें, तो जो पौधे हैं जो हमारी नर्सरी की पौधे

0: आप पानी दीजिएगा, और फिर पानी निकालने के बाद हर पौध को आप कम से कम डाइथेनियम 45 में या फिर इमिडाक्लोप्रिड भी कभी कभी डालना पड़ता है, कभी आपको चूसक कीट के भी प्रकोप दिखाई दे जाते हैं नर्सरी के अंदर भी, तो आप इमिडाक्लोप्रिड नाम की दवा है ये, 3 ml दवा 10 लीटर पानी में घोल बनाकर इसका छिड़काव करेंगे तो इससे किसी भी तरीके की चूसक वाले या अन्य कीट का प्रकोप नर्सरी में नहीं होगा और स्वस्थ पौध की उत्पादन होगी, जिससे अधिक से अधिक पौधे आपके मेन खेत में जब ट्रांसप्लांट करेंगे तो उनका एस्टेब्लिशमेंट अच्छा होगा और फिर अधिक से अधिक लाभ मिलने की संभावना भी बढ़ जाएगी।
1: रेडियो बुंदेलखंड 90.4 सुनने वाले सभी किसान पंच भैया बहनों को एक बार फिर से पुनः बहुत बहुत स्वागत करते हैं कार्यक्रम खेत कल्याण में। और साथियों अब अपन ने डॉक्टर साहब से कितनी महत्वपूर्ण जानकारी को सुनो है गो, और अपन ने जानो के कौन तरीके से हमारे किसान साथी नर्सरी कर सकते हैं, टमाटर की नर्सरी लगा सकते हैं, और संगे संगे कौन कौन सी वेरायटी हो सकते हैं। उनने पंजाब की कछु वेरायटी बताई है, कछु वाराणसी की वेरायटी बताई है जो बहुत अच्छे आपको उत्पादन देंगी, तो ऐसे ही वेरायटी अपन हो समझने हैं सोचने हैं तब ही अपने खेतन में लगाने हैं। अब तैयारी कर वो बहुत ज्यादा आवश्यकता है, और संगे संगे अपने खेत जो खाली पड़े हैंगे उनकी जुताई भी हमारे किसान साथी कर सकते हैंगे। हमें आशा है कि हमारे किसान साथी इन छोटी छोटी बातों को विशेष तौर पर ध्यान रखें चाहिए उनको, कैसे आने वाला समय जो है बहुत महंगाई को हो जाएगा, कैसे अबे अपन देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा अपन हो लगत लग जाएगी, और मुनाफा अगर देखो जाए यानी उत्पादन देखी जाए तो बहुत कम हैंगे। अब कृषि विभाग की ओर से बहुत सारी स्कीम्स चलाई जा रही, योजना चलाई जा रही हैंगी, तो उनको भी अपन हो लाभ लेने, संगे संगे बीजन को चेंज जो अपन करते हैंगे तो कृषि विभाग की ओर से जो कृषि विस्तार अधिकारी रहेंगे उनके पास जाके अपन को संपर्क करने, उनसे पूछने हैं कौन तरीके कौन सा बीज लगाना चाहिए, कौन तरीके से अपन को तैयारी करनी चाहिए। और संगे संगे एक महत्वपूर्ण बात और बताना चाहते हैं कार्यक्रम के माध्यम से अपन हो कि हमारे किसान साथी अभी चूंकि खाली खेत पड़े हैं तो अपनी मिट्टी को परीक्षण अवश्य करा ले, कैसे कौन से तत्व की कमी हैगी जो पता चल जाए, अगर जो पता चल जाए तो अपन देख सकते हैंगे समझ सकते हैंगे और अपन जाके भरपाई भी अपन कर सकते हैं कि कौन से तत्व की कमी है, अब जाके तत्व को पूर्ति करने के लाने कौन सी दवा अपन को डालना चाहिए, कौन सी का कौन सी अपन हो बीज लगाना चाहिए, तो ये सारी जानकारी अपन हो उपलब्ध हो जाते हैं। अपने पास फैसिलिटी हैगी, अगर अधिक जानकारी आपको पाने हैं तो केबी की चले जाओ कृषि विज्ञान केंद्र, उतर जाके बहुत अच्छी अच्छी वेरायटी अपन को उपलब्ध हो जाते हैं, उनसे ही पूछो वैज्ञानिक रहते हैं उनसे भी सलाह लो, तभी अपना आने वाले समय में अपन अपनी आय को दुगनी कर सकते हैं। तो छोटी छोटी बातें हैं जो हमारे किसान साथियों के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रहते। आप साथी रहो, हम समय होते जा कार्यक्रम खेत कल्याण कार्यक्रम से जावे को, तो कार्यक्रम आपको कैसो लगो हमें जरूर बताओ। तो आपके रेडियो साथी मनीष लेते हैं जा कार्यक्रम खेत कल्याण से जावे की इजाजत, आपकी हमारी फिर हुई अगले कार्यक्रम में मुलाकात, तब तक के लाने नमस्कार, राम राम।

0: नमस्कार दोस्तों, रेडियो बुंदेलखंड 90.4 पे आप इवीरा अपने रेडियो साथी माता दीन के संग में। और दोस्तों, हम लेके आ गए आप सब जन के लाने जो कार्यक्रम विधा बुंदेली। और साथियों, विधा बुंदेली कार्यक्रम में आज सुने अपन विधा देवी गीतन को, और देवी गीतन को आनंद ले हैं। सो दोस्तों, आप ऐसे बने रहो रेडियो बुंदेलखंड 90.4 पे अपने रेडियो साथी माता दीन भैया के संग में। सो आओ दोस्तों, देर न करत हुए कार्यक्रम को तो आगे बढ़ाऊ थे और कार्यक्रम में सुनत हैं इन प्यार प्यारे से देवी गीतन को। सो आओ सुनत हैं सबसे पहले जो गीत जी गा रहे हैं दिनेश सोनी जी।
1: दर्शन

मन से तरसन लगी नजरिया, मैया खोल दो मैया खोल दो ये द्वार की चिबरिया, मैया खोल दो।

होला पलक झलक दई श्री जय मिट गई ललक हमारी, होला पलक झलक दई श्री जय मिट गई ललक हमारी। पान बतासा ध्वजा नारियल, पान बतासा ध्वजा नारियल से भर गई चौतरिया, मैया खोल दो मैया खोल दो जे द्वारे की किबरिया, मैया खोल दो द्वारे की किबरिया। दर्शन के लाने बरसन से, दर्शन के लाने बरसन से तरसन लगी नजरिया, मैया खोल दो मैया खोल दो जे द्वारे की किबरिया।

देखो दोस्तों, जो कितना प्यारो गीत अपन सब जन ने सुनो है, गीत को आनंद लव है। ये गीत को गा रहे थे दिनेश सोनी जी। आ दोस्तों, अब कार्यक्रम में आगे सुनते हैं अगले साथियों के गायब है गीत को। सो आप ऐसे ही बने रहो रेडियो बुंदेलखंड 90.4 पे अपने रेडियो साथी माता दिन के संग में।

बिल्कुल दोस्तों, माँ के चरणों में अर्जी कुकू लगाएं। देखो कितना अच्छा जो गीत अपन सब जनन ने सुनो, गीत को आनंद लो है। ये गीत को गा रही थी राजा बद्रेली जी। अब दोस्तों आओ सुनते हैं अगले साथी इनके गाय भाई गीत को।

बिल्कुल दोस्तों, कायर उठो केसर उठो फूलन को लंगरवा कायर उठो। देखो कितना बढ़िया जो गीत अपन सब जन ने सुनो, गीत को आनंद लो। ये गीत को गा रहे थे भैया कृष्णकांत कुशवाहा जी। अब दोस्तों आओ एक क्रम में फिर से सुनाते हैं अगले साथी इनके गाय भाई गीत को।

हो जा दयाल कृपाल महामाई आपकी बीर। देखो दोस्तों कितना बढ़िया जो गीत अपन सब जनन ने सुनो, देवी गीत को आनंद लो है। ये गीत को गा रहे थे भैया गोविंदास कुशवाहा जी। सो आओ दोस्तों गोविंदास भैया जी के गीत के बाद फिर से सुनते हैं अगले साथी इनके गायब है गीत को।

बिल्कुल दोस्तों, मैया भक्त खड़े पुकारे दूर में हो माँ। देखो दोस्तों, कितनों प्यारो जो भजन अपन सब जन ने सुनो, भजन को आनंद लो है। और दोस्तों ई भजन को जो गा रहे थे वे गा रहे थे किशोरी लाल कुशवाहा जी। अब दोस्तों ये गीत के बाद फिर से सुनते हैं अगले साथी इनके गायब है गीत को।

देखो दोस्तों, जो कितना बढ़िया गीत अपन सब जनन ने सुनो है, गीत को आनंद लो है। ये गीत को गा रहे थे भैया मनीराम मंचला जी। और अब मनीराम भैया मंचला जी के गीत के बाद हम आप सब जन को बता देवे कि आज के ही कार्यक्रम से अपने दोस्त माता दिन भैया को जाबे को समय हो गया है। सो दोस्तों, हमें दो ही कार्यक्रम से जाबे की अनुमति, अपनी तपनी फिर हुई मुलाकात है कार्यक्रम में ए बेरा पे। जब तक के लाने नमस्कार।

देखें आप, हो हाथ में ले तो बीमारी फैले अनेकन अनेक। अगर हाथ गंदे होंगे बीमारी फैलेगी, पानी में जाएगी गंदगी जाएगी। सुने आप, हो हाथ में ले तो बीमारी फैले अनेकन अनेक, तन मन की हानि हो भारी हैरान।

आखिर में कहे नाथ काशी सुनो हिंदवासी मई हो या जून। अगर किसी को देना है उपहार में तो ऐसी बात दे दो जिसमें समझ में आए।

की अगर होती तो आपके इस आंगन को शोभायमान बढ़ाती, बच्चा आपके आंगन में किलकारियां देता और अपने भाई को राखी बांधती और कहती, राखी बांधती अपने भाई की कलाई को सुशोभित करती और कहने लगी,

0: अपना दिल दे दिया, वरना किसी को अपना दिल दिया नहीं करते।
1: तो कहना है आपसे मैडम कि हर शख्स यार नहीं होता, हर शख्स यार नहीं होता, हर दोस्त वफादार नहीं होता। ये तो दो दिलों के मिलने की बात है, वरना सात फेरों में भी प्यार नहीं होता।
0: लेकिन आजकल ऐसे होने लगो, बताए कैसे? यारो मोहब्बत मत करना, यारो मोहब्बत मत करना, क्योंकि मोहब्बत में हर चीज पराई होती है। यारो मोहब्बत मत करना, प्यार से प्यार मत करो, जब तक प्यार तुमसे प्यार ना करे, और जब प्यार तुमसे प्यार करे तो जनाब तुम प्यार से इतना प्यार करो, इतना प्यार करो कि प्यार किसी और प्यार से प्यार ना करे।
1: जवा सत्य कहना है, हमने इतना प्यार करो मालूम कितना
0: कितना
1: कल

पूछना, फिर उसने भगवान हनुमान ने आई थी, तो भगवान ने क्या उसके आंचल से जहर लगे थे, जहर पिलाने के लिए कि मर जाए भगवान। तो क्या बोले।

भगत दनन से भगत दनन से लगन लगी थी मिलवे सेल तुम्हारी भगत दनन से लगन लगी थी मिलवे सेल तुम्हारी।

पलंग पूस पंखा की हेरे हैं बात, पलंग पूस पंखा की हेरे हैं बात, जोरे कभू जिन खोना पर भी टूटी खा तो, जोरे कभू जिन

0: बदलती जलवायु के लिए तैयार हम।
1: नमस्कार साथियों, रेडियो बुंदेलखंड 90.4 सुनने वाले सभी श्रोता साथियों का आपके अपने रेडियो दोस्त मनीष कार्यक्रम शुभकल में हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। श्रोता साथियों, हम आपको बता देना चाहते हैं कि शुभकल कार्यक्रम विगत कई वर्षों से हम आपके लिए प्रस्तुत करते हैं, नए नए कार्यक्रम इस कार्यक्रम के माध्यम से लेकर आते हैं। साथ में हम प्रयास करते हैं कि हमारे श्रोता साथियों को वो छोटी सी छोटी जानकारी आप लोगों तक उपलब्ध कराई जाए, पहुंचाई जाए कार्यक्रम के माध्यम से, जो आपको लगता है कि हमारे जीवन में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण भी है और हम देख भी रहे हैं। हम कार्यक्रम को जब बनाते हैं तो सारे बिंदुओं को हम कोशिश करते हैं कि कवर करें। हमें लगता है कि अब चूंकि हम इस कार्यक्रम को बनाते बनाते अब हमें ऐसे विषय ढूंढना होगा, ऐसे विषय के लिए चयन करना होगा जो आपके लिए एकदम नए हो। हम कार्यक्रम के माध्यम से कई दिनों से हम प्रयास कर रहे हैं कि शुभकल कार्यक्रम में अजीब का से जुड़ी बातचीत करते हैं, हम शुभकल कार्यक्रम में पर्यावरण से जुड़ी बातचीत करते हैं। आपको क्या लगता है श्रोता साथियों कि अब शुभकल कार्यक्रम में बदलाव की जरूरत है, अब उस शुभकल कार्यक्रम में कुछ ऐसा जाना चाहिए जो दिल को छूने वाला हो और आप लोगों के लिए बेहद महत्वपूर्ण हो? तो इसके लिए साथियों आपके सुझाव का हमें बेसब्री से इंतजार रहेगा, क्योंकि जब आप हमें बहुमूल सुझाव देंगे उस पर हम काम करेंगे, उस पर हम कार्यक्रम को बनाएंगे, फिर उस कार्यक्रम को आप लोगों तक हम पहुंचाएंगे, ये हमारी जिम्मेदारी साथियों रहती है। तो हम कोशिश करेंगे और हम प्रयास करेंगे कि आने वाले अब समय में हम इस कार्यक्रम का बदलाव करेंगे और इस कार्यक्रम में बेहद जानकारी जो आपको हम उपलब्ध कराते हैं उससे और अच्छी जानकारी आपको उपलब्ध कराएं। आज के हमारे इस कार्यक्रम में चूंकि बहुत दिनों से चल रहा है कुछ नया करने के लिए, हम वही पर्यावरण पर बातचीत करते हैं, जलवायु पर बातचीत करते हैं, आजीविका पर बातचीत करते हैं, लेकिन साथियों आज हमारे दिमाग में एक सवाल आया कि हमारे श्रोता साथी, चूंकि हमारे साथी खेती किसानी करते हैं, खेती किसानी में चूंकि अगर पर्यावरण को जोड़ा जाए तो एक अलग पहलू हो जाता है। यदि खेती किसानी में हम दूसरी अन्य चीजों को जोड़ा जाए जैसे आजीविका को जोड़ा जाए तो वो अलग बिंदु हो जाता है। तो आज के हमारे इस कार्यक्रम में चूंकि हमने पहले शुभकल कार्यक्रम जब स्टार्ट किया था, शुरुआत इसकी की थी, तब हमने एक कैंपेन किया था कौन बनेगा शुभकल लीडर, तो उसमें हमने जो 5 गतिविधियां इस कार्यक्रम के माध्यम से ली थी वो थी किचन गार्डन, अमृत मिट्टी बनाना, केचुआ खाद बनाना, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, एग्रो फॉरेस्ट्री यानी कृषि वानिकी। तो ये सारे विषय जो 5 विषय थे उस विषय पर हम पुनः जाना चाहेंगे, क्योंकि अब वो समय है कि हम अपने श्रोता साथियों को वो जानकारी उपलब्ध कराएं। तो आज के हमारे इस कार्यक्रम में साथियों आज हम बात करेंगे अमृत मिट्टी बनाने की। अमृत मिट्टी बनाने पर हमारे बैरू भौजी का जो किरदार है, जो आपको बहुत लुहावना लगता था, बहुत बेशक पसंद था हमारे श्रोता साथियों को, तो आज उनका कैरेक्टर भी हम इस कार्यक्रम में लेकर आएंगे। साथ में हमारे जो विषय विशेषज्ञ हैं इससे जुड़े, उनसे हम अमृत मिट्टी बनाने सीखेंगे, जानेंगे, क्योंकि बहुत ही सरल है अमृत मिट्टी बनाना, और लेकिन इस जलवायु को देखते हुए, इस खेती को देखते हुए अगर हम बात करते हैं जैविक खेती की, तो उस जैविक खेती में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है अमृत मिट्टी, क्योंकि नया है ये खाद बनाना। हमने मटका खाद सुना होगा, केंचुआ खाद सुना होगा, गोबर की खाद सुना होगा, तो इसका कॉम्बिनेशन जिसे कहा जाता है कि हम एक जगह ऐसी जो फालतू चीजें जैसे पत्ता का इस्तेमाल हम करते हैं, फेंक देते हैं उसको, या तो जला देते हैं, गौमूत्र इसमें लगता है, गोबर लगता है इसमें, तो तमाम प्रकार की जो चीजें हैं उस अमृत मिट्टी बनाने में लगती है। तो आज के इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में साथियों अमृत मिट्टी बनाना आपको बताएंगे, बैरू भौजी का करेक्टर आपको सुनवाएंगे, लेकिन साथियों बातचीत हमारी काफी हो चुकी है, एक गीत के साथ आपको मनोरंजन कराते हैं, तो आइए सुनते हैं इस प्यारे से लोकगीत।

पानी पहला प्रदूषण बीमारी ध्यान से समझो नर और नारी सबके हित में बात मुचारी दर्द को साचो झूठो।

एक बार फिर से पुनः बहुत बहुत स्वागत करते हैं कार्यक्रम सुपकल में। और साथियों, अभी आपने नारायण दास दर्द और उनके साथियों की आवाज में इस प्यारे से लोकगीत को सुना, पर्यावरण से जुड़ा लोकगीत है। आप कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाते हैं और बैरू भौजी का किरदार जो हमारी निभाती हैं, उनसे हम अमृत मिट्टी बनाना, चूंकि उनने भी बताया है, तो आइए इस नाटकीय रूप को हम सुनते हैं।

0: लाला जी, वो आज तो बगल में रेडियो रखे और जो, लेकिन का कर रहे हो तुम?
1: अरे भौजी, कर तो तुम रही, तुम बताओ का कर रही? आज तो बड़ी गजब ढा रही तुम तो।
0: अरे लाला जू, का जा रहे थे ना, मैंने कहीं बाजार हुआ हूँ, लेकिन तुम का कर रहे?
1: अरे भौजी मोई ना सुनो, अब वो कितना के आधी अधूरी जानकारी ले लो तो कहता हूँ की नीयत ना घर के ना घाट के।
0: का कह रहे लाला जू, आधी माधी कर लेते तो वही कर रहे, का कर रहे?
1: अरे भौजी ध्यान से सुन, जा कह रहा है कि अगर अपन को आधी जानकारी हो गई कछु भी चीज की, कछु भी काम की, तो ना घर के रहे ना घाट के रहे।
0: तो बात का कह रहा लाला जू, घर को पता, घर को ना घाट को?
1: अरे बा काना दूसरी, हम जा दूसरी कह रहा है कि अब जो काम कर रहा है, जो हम वो बना रहे, जो हमने एक दिन सुनी थी का अमृत मिट्टी।
0: अमृत मिट्टी के बारे में सुनो तो?
1: हाँ, तो अब हमने बात सुनी तो है नहीं, अब लेकिन ध्यान से नहीं सुन पाई, सो अब लगे हैंगे जी सब बनावे हम।
0: तुमने ध्यान से काहे नहीं सुनी भाई, पूरी काहे नहीं सुनी लाला जू?
1: अब बस भौजी तनक एक संग दूसरा काम कर जा रहे थे, वो एक जने हमें बता रहे थे भी बड़ी बता, तो इन्हों नहीं तरह से रहे थे, लेकिन हमने ध्यान से नहीं सुन पाई, वह हमारी गलती हो गई अब।
0: अरे लाला जू, मैं जानत होंगी तुम्हें, तुम मन के तुम और लगो हो जी, अब तुम्हें काहे को मत सुनाई दे है ढंग से, अब तुम सुन रहे थे तो उन्हें बज्जे सुन लेते होते, उनमें मन ना लगाते।
1: अरे भौजी तुम केवे को मतलब का है, कुन में उतर के तुम मोड़ गया देख रहे हो तो?
0: मैं तो जय कह रही, तुम जो ही कर रहे हो और बामे ध्यान कम दे रहे हो, अगर को जानकारी सुनना है तो ढंग से सुन लो।
1: अब भौजी नहीं सुन भाई अब, लेकिन मैंने कही चलो जैसी सुनी तो बनाई ली।
0: हाओ ये राम भाई, तुम्हें तो खूब आते गो, अब बना लो।
1: अब भाई तो कर रहे भौजी, सब तेवर बीच में आ गई।
0: अच्छा तो अभी तक का करो तुमने?
1: अब जी सब सामान तो सट्टा बटोर लो, खट्टो तो कर ही लो।
0: लाला जी तुम, तो तुम्हें देख के हंसी आ रही।
1: अब का भौजी जब काम करे तो भड़ना जी, ऐसे तुम्हें कौन सी हंसी आ रही?
0: ऐसे काम को देख भड़ गए जैसे मन जाने का पूरी अमृत मिट्टी तुम्हें बना रहे हूँ।
1: अरे भौजी जब अपन पूरी तरह से, जब पूरी तरह मट्टी में मिल के काम करें तो अच्छी तरह से बने, हमने सुना कि कोनो चीज में अच्छी तरह से घुल मिल के काम करो तो अच्छा हो जाता।
0: का कह रहे लाला जू, दूध में मिला मिला के पियो तो अच्छा हो जात?
1: हाँ, कोनो काम अगर अपन अच्छा घुल मिल के करें भाई मिलो से, तो हमने के इतना भिड़ जाओ तो कौन सी दिक्कत है?
0: अच्छा अच्छा अच्छा, क्या कह रहे है क्यूँ मैं भिड़ जाओ तो मजे क्या, मैं और मुँह पोत दो मैं तुम तो ने और अच्छे लगो सुगाटा जैसी।
1: तो फिर भौजी दिखाए कैसे सुगाटा से तुम्हें बन जे?
0: कहा कह रहे लाला जू, चाटा खल जे, मैं देखा तो मैं ये देख हो गयी तुम्हारी हमें।
1: अरे भौजी तेन तो कह रहे की सुगाटा से बन जे, तो मैंने कही सुगाटा से बन जे से, तो दिखाए कैसे चाटा को मार रहा तुम्हें?
0: अच्छा तो मैंने देख तेज भूल करे तुम तो वही की वही घुसरू कर ले।
1: अब तो सुनाते है इतनी तेज कहते है, मैं कौन बिहारी हूँ?
0: कहा कह रहे लाला जू,
1: कछु नहीं जब की रहे आज की कह रहे थे कि बता दो करूँ काम है, समझ में नहीं आ रही।
0: अरे लाला जू तुम चलो मैं ही बता दे थोंगी, मुझे तो मालूम है, मैंने खुद सुनो तो।
1: अब लेकिन तू तो भौजी जाने तो सज के तो ठाड़ी है।
0: कहा कह रहे लाला जू, तू तो जाने है?
1: हाँ उतने तो ठाड़ी सजी,
0: तो अब सजी ठाड़ी, लेकिन अब मैं तुम्हें बताए दे रही होंगी पहले, अब तुम अब लगे तो होंगे काम कर भी, तो मैंने की अब तुम्हें बताए दे थो।
1: अरे मैं सब जाना आई हूँ जी, मुई ने सज बज के बातें मारे झूठी झूठी।
0: कहा कह रहे लाला जी, झूठी कह रहे?
1: अरे भाजी कछु नहीं, अब बता देते हैं तो।
0: हाँ तो मैं बताए दे थोंगी, अब मुझे जाने होते, अब मैं टेम हो रहा हूँ। तो देखो अमृत मिट्टी तुम देखो जो बना तो लही है, लेकिन की के लाने तीन चीजें, जैसे एक तो अपन अमृत मिट्टी जो बना रहे, लेकिन ई के पहले अपन को अमृत जल बनाने पर रखे।
1: अच्छा अमृत जल बनाने?
0: हाँ यानी कि अमृत पानी बनाने, वो कैसे बना थे?
1: हाँ
0: वो जो गैया को गोबर हो बाय ले लो,
2: ठीक है,
0: और का ले लो गोबर ले लो है, और एक जो सड़ो गड़ो फल हो तो अपनो, चाहे केला हो चाहे वो अपन जो मतलब नहीं खा रहे सीधी बात।
1: अच्छा
0: है, वो ले लो सुबह एक डिब्बा में घोल के और रख दो, कै दिना के लाने? तीन दिना के लाने, ठीक है लाला जू? आ रही समझ में?
1: बिल्कुल बिल्कुल, नौनी तरह से आ जा रही।
0: कहा कह रहा लाला जू, ने कम तरीका से आ रही?
1: अरे बात तो पूरी तरीका से आ रही।
0: हाँ हाँ भाई, तो मैं कह रही सुबह एक डिब्बा में अपन रख दे तीन दिना के लाने, लेकिन अपनी जो अपन ऐसे महरी टारत एक चमचा कहूँ ऐसो घुमा दे, कहूँ ऐसो घुमा दे उल्टो सीधो मतलब, तो बस चमचा को ऐसे घुमाने।
1: कबो जी कब हड़िया को मुँह नीचे करने के ऊपर करने?
0: अरे लाला जू बस चमचा से अपन महरी, बस जब अपन बेसन बस जारत के वहाँ में गुठला ना पड़ जाए, सुबह चमचा को ऐसो घुमा और फिर ऐसो घुमा।
1: अच्छा ईलंग और उलंग?
0: हाँ सुबह एक ही मिल जाए तीन दिना में, के बाद ला ला वो तुम्हें जो करने के परते बनाने वो बनेगा अपनो जल जल बनेगा अब वो बनाने पर अमृत मिट्टी ऊ के लाने तुम्हें जो करने पड़े ये एक खेत में जितने तुम्हें बनाने उतने में तुम पहले मट्टी बिछाओ जैसे इतनी सी परत पे मतलब मट्टी बिछा लो पट्टिया मान लो फिर बनाने तो अपन पट्टिया जितनी मट्टी बिछा ले ऊ के ऊपर गोबर बिछा दे फिर ऊ के ऊपर पानी लाकर अमृत पानी लगातार छत जाने ठीक है लाला जी
1: अच्छा
0: हाओ और फिर ऊ के ऊपर अपन फिर से मट्टी बिछा दे
1: फिर से मट्टी बिछा
0: हाओ मट्टी बिछावे के बाद फिर अगर कूड़ा कचरा है अपनी गंजे भैसन को तो ऊपर बिछा दो बाकी आ रही
1: हाँ आ रही है
0: फिर ऊ के ऊपर फिर मट्टी बिछा दू है और फिर जो अपन ने बीज लेने पर 10 प्रकार की
1: बीज लेने
0: हाओ चाहे गेहूँ बाजरा मटर सब ले लो और ऊ में भी बे दू और पानी लगातार छत जाओ ठीक है फिर लगातार 10 दिन बाद अपनी जो गेहूँ उगे भी वो लाला जी ये और करने वो जो अपन ने बीज बोए वहाँ ऊपर अपन को वो बिछा ले का
2: पत्ता मत्ता
0: डाल ले ठीक है डालने के बाद ऊ में अपन को लाला जी तुम तो सुन नहीं रहे मेरी बात
1: मुड़ी तो मत कर जा रहा हूँ मैं इतनी
0: मुड़ी से नहीं मैं तो हूँ का दियो
1: अच्छा हूँ का देने आए अब मैं तो ये सब देखा जा रहा हूँ और करत भी जा रहा
0: हूँ तो ठीक है सो ऊ के बाद तुम वो अपनी जो हो जाए मैं पेड़े बड़ी सी मतलब उगी आए नहीं अपने सुबह काट के आधी वही में मिला दू गाय में वही में जो अपन ने लगाई है
1: अच्छा
0: हाओ फिर 10 दिन बाद हो जाए तो फिर से मिला दो और जब 100 दिन बाद फिर से हो जाए तो भाई पूरी छोटी छोटी करके काट लो और ऊको फिर से वही में मिला दो
1: तो फिर बन गई मट्टी
0: फिर ऊको वहाँ फिर ऊको खरुआ लेके मिक्स कर लो
1: अच्छा
0: हाओ मिक्स करने के बाद फिर जितने अपन गेहूं कछू लगा रहे कर जाओ पिंचर जाओ डाल दो तो वो एक अपनो रासायनिक खाद को उपयोग करे जो आपको तत्व मतलब बाह में मिल रहा है जैसे साथी इनकी कहावत रहे बाह में रासायनिक बाह में खाद में ज्यादा वो मिल जाते हैं तो ई में भी उतनो ही तत्व मिले और 2-3 चीजें और फायदा भी है ई में
1: तो अब तो बिल्कुल मैंने ध्यान से सुनने की बात है अब तो मैं बिल्कुल बना ही ले हूं।
0: हाँ तो ई में 2-3 चीजें जो फायदा की है एक तो ई से अपनो स्वास्थ्य सही रहे को है लाला जू
1: आओ।
0: और दूसरो अपनो पर्यावरण अच्छो रहे गो लाला जू हो देखो मैंने अगर टोको तो और तुम तो नोरा जैसी मुड़ी नहीं मटका उसके मुड़ी लगे मटका भी मियो कछु मैं तो अपनो मोह है जो मियो तुम मोह प्राला वो बतात
1: अरे भाजी तो करने मुँह तो पूरी समझ में आ गई कैसे बनाया जाता
0: हाँ हाँ तुम तो वही ले आज 2000 की बोरी आ रही रासायनिक खाद की वही ले आज काय को जो बना हो तुम्हें तो तुम होंगे पक्के तुम तो नाव कर रहे दिन सुन के तुम होंगे पक्के आलसी
1: अरे भौजी अब तो बिल्कुल पूरी ध्यान में आ गई कि कैसे बनाने जरूर बना ले अब तो
0: हाँ तो लाला जी मैं चली
1: बिल्कुल अब तो भौजी जरूर मिट्टी बनाऊं और जरूर अपने पर्यावरण को बचाऊं
3: वृक्ष लगाकर करो श्रृंगार धरती माँ की यही पुकार
4: एक बार फिर से पुनः बहुत बहुत स्वागत करते हैं कार्यक्रम शुभ कल में और साथियों अभी आपने बैरू भौजी को नाट के रूप में सुना और इनसे अमृत मिट्टी बनाना कुछ तो हमारे बैरू भौजी ने बता ही दिया है अब हम आपको एक्सपर्ट के पास ले चलते हैं और उनकी सलाह हम लेते हैं अमृत मिट्टी बनाने के लिए तो आइए उनसे बातचीत करने से पहले हम एक और आपको लोकगीत सुनवा देते हैं क्योंकि मनोरंजन भी होता रहेगा और कार्यक्रम सुनवाते रहेंगे तो आनंद ही कुछ अलग आएगा तो आइए सुनते हैं इस प्यारे से लोकगीत को रमेश और उनके साथियों की आवाज में
5: आप

0: अभी आपने इस प्यारे से लोकगीत को सुना और लोकगीत का आनंद लिया। आइए अब आपको आलोक जी के पास ले चलते हैं, अमृत मिट्टी बनाना वो बता रहे हैं, तो जानकारी ध्यान से सुनिएगा, बाद में हम आपसे कुछ पूछना चाहेंगे तो तैयार रहिएगा। तो आइए सुनते हैं इस प्यारे से चर्चा को।
1: जैसा कि है अमृत मिट्टी, अमृत मतलब कि जो भी जीवनदायी चीज होता है, यह एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें मिट्टी को एक जीवन, अलग तरह का जीवन दिया जाता है जिसमें उसकी गुणवत्ता में वृद्धि होती है। अमृत मिट्टी का जो कॉन्सेप्ट है वो वहां से आया कि अगर मान लीजिए अब मानव नहीं रहता है, जब जंगल रहते हैं तो जंगल के पौधे बिना बारिश और बिना अतिरिक्त खाद के कैसे हरियाली रहते हैं, तो उसी कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखकर अमृत मिट्टी को हम लोगों ने बनाने का कोशिश किया है। अमृत मिट्टी अगर हम बात करें तो अमृत मिट्टी के लिए बहुत सारे अलग बहुत तरीके नहीं है और बाहरी तत्व की इसमें कोई जरूरत नहीं होती है। जैसे कि आप जान सकते हैं केचुआ खाद के लिए केचुआ लाना पड़ेगा या दूसरी चीजें बुलाना पड़ेगा, लेकिन अमृत मिट्टी एक ऐसा है कि आपका अगर गांव में जो भी चीज संसाधन है, जैसे गाय है या आपकी खेती का से निकलने वाला जो भी खरपतवार है, तो इसी से तैयार होता है। देखिए ये तो अमृत मिट्टी को हम दोनों तरीके से यूज कर सकते हैं, खाद के रूप में भी प्रयोग कर सकते हैं और इसको भूमि की उर्वरा शक्ति जो बढ़ाने के लिए भी इसका उपयोग कर सकते हैं। आपके पास जैसा भी संसाधन है इसके हिसाब से आप इसको उपयोग कर सकते हैं। इसके लिए कोई विशेष जगह तैयार करने की जरूरत नहीं होती है, आपके पास जो भी भूमि उपलब्ध हो और जिस भूमि में आप दूसरा उपयोग नहीं करना चाह रहे हो या नहीं करते हो तो उस भूमि का उपयोग कर सकते हैं। ये इस अमृत मिट्टी को बनाने में करीब करीब 90 से 100 दिन लगते हैं, लेकिन इसकी उर्वरा शक्ति इतनी तेज और इसकी जो जल धारण शक्ति काफी अधिक बढ़ जाती है, तो कम पानी में भी आपकी खेती बहुत अच्छी होती है। अमृत मिट्टी बनाने के लिए जो सामानों की जरूरत होती है या जो भी संसाधन की जरूरत होती है वो आपके आसपास या आपके खेत खलियान से ही निकल के आता है। जैसा अगर कह सकते हैं गाय का गोबर, गाय का मूत्र, खेती बाड़ी से जो खरपतवार जो निकल के आता है वो, ये बस ये दो तीन चीजें हैं और जो भी बीज आप लगाते हैं वो बस यही चीजें हैं जो आप अमृत मिट्टी में आसानी से इसका उपयोग करके अमृत मिट्टी बना सकते हैं। इस अमृत मिट्टी की खासियत यह है कि आप कहीं पर भी किसी भी प्रकार की मिट्टी का उपचार कर सकते हैं, कोई मिट्टी को आप अमृत मिट्टी में परिवर्तित कर सकते हैं और या अमृत मिट्टी कहीं बनाकर किसी भी मिट्टी में डाल सकते हैं। अच्छा। ये तो मैं जैसा आपको बताया कि ये आपके ऊपर सारा निर्भर करता है कि आप छोटे से जगह पर आप इसका उपयोग करना चाहते हैं या बनाना चाहते हैं या बड़े भाग में आप बनाना चाहते हैं। जैसा मैंने अभी जस्ट बताया कि बुंदेलखंड के बारे में अगर थोड़ा सा अगर मैं बात करूं, बुंदेलखंड में जनरली आप देखोगे वो काफी सूखा ग्रस्त जगह है और यहाँ पर जलधारण क्षमता बहुत कम है। जलधारण क्षमता कम होने की वजह से क्या होता है कि हमको बार बार पानी की किसी भी फसल में बार बार पानी देने की आवश्यकता पड़ती है। तो अगर हम अमृत मिट्टी के इस प्रोसेस को अगर बुंदेलखंड में लाएं, जैसा मैंने अभी बताया और अपने किसान भाइयों को भी बताया कि अमृत मिट्टी एक ऐसा मिट्टी उपचार है या खाद आप कर भी सकते हैं जिसमें गुणवत्ता जो भूमि या मिट्टी की गुणवत्ता है उर्वरा शक्ति काफी बढ़ जाती है और जल धारण क्षमता भी बढ़ती है जिससे आपको सिंचाई देर से कम देनी पड़ती है। अब जैसा अभी मैं बता रहा हूँ कि जो अमृत मिट्टी है वो आपके ये पूरी तरह आप पर निर्भर है कि आप कितनी भूमि में इसका प्रयोग करना चाहते हैं, आपके पास संसाधन कितने उपलब्ध हैं, आपकी अगर खेती हो रही है या कोई जमीन है वो कितना खाली पड़ा हुआ है जिसका प्रयोग नहीं करते हैं, तो उस पर सारा चीज निर्भर करता है। अगर आप मान लीजिए खेत का प्रयोग कर रहे हैं खेती के लिए, तो आप ऐसे भाग का प्रयोग करें जहाँ पर खेती नहीं करते हैं और फिर उस मिट्टी का उपयोग आप खाद के रूप में अपनी भूमि में कर सकते हैं। या अगर आपका खेत खाली है, कोई लगता है कि बंजर है या जहाँ पर हम खेती नहीं कर पा रहे हैं, तो वहां पर भी हम इसका प्रयोग करके अमृत मिट्टी बना सकते हैं और उसके बाद फिर उसी खेत में आप दूसरी फसल ले सकते हैं।
2: और
1: ये तो और भी अच्छी बात है कि किचन गार्डन क्योंकि घर के नजदीक ही होता है,
2: जी
1: तो एक अमृत मिट्टी

0: बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और आलोक प्रभात जी ने कितनी अच्छी बातचीत बताई है, हमारे वार्ताकार थी हमारी प्राची जी, और बहुत अच्छी उन्होंने सलाह दी है कि अगर आपकी खेती में गुणवत्ता लानी है, खेती को अच्छा बनाना है, तो अमृत मिट्टी डालकर हम इसको अच्छा बना सकते हैं और उनकी पैदावार को भी बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, ये अमृत मिट्टी बनाना चूंकि बहुत ही सरल है, जो कि उन्होंने बताया है, आप भी अपने घर पे अमृत मिट्टी बनाकर अपने खेतों में छिड़काव कर सकते हैं। जैसे बार बार हम कार्यक्रम के माध्यम से बताते चले आ रहे हैं कि हमें अब रासायनिक दवाएं जो हम खेतों में डालते हैं, रासायनिक खाद डालते हैं, उन पर हमें रोक लगानी चाहिए, दूसरों को समझाना चाहिए इस बारे में, क्योंकि जो बीमारियां पनप रही हैं, ऐसी रिपोर्ट बता रही है कि अधिकतर बीमारी जो रासायनिक खाद से उगाई गई सब्जियों से हो रही हैं। तमाम प्रकार की बीमारी जो अभी तक हमने सुनी भी नहीं थी, इस प्रकार की बीमारी अब हमें सुनने को मिल रही है। तो हमें इन बीमारियों से यदि बचना है, तो जैविक पद्धति की ओर फिर से हमें मुड़ना होगा, जैविक पद्धति से हमें अपनी खेती को करना होगा। बहुत सारे ऐसे उपाय हैं, सरकार भी इसके लिए प्रयास कर रही है कि जैविक खेती हमारे किसान साथी इसको अब करें और अपनी खेती में बदलाव कर अपनी आमदनी को भी बढ़ा सकते हैं। और जो हम अपने खेती के साथ, जो धरती के साथ, जो मिट्टी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, उससे भी हम बच सकते हैं। साथियों, हमें आशा है कि इस कार्यक्रम को सुनकर हमारे श्रोता साथियों के मन में बहुत सारे ढेर सारे ऐसे सवाल होंगे जो हमसे पूछना चाहते होंगे और साथ साथ में बताना भी चाहते हैं। तो आप हमें यदि फोन करके बता सकते हैं, हमारा फोन नंबर है 9425147126, या फिर श्रोताओं आप हमें चिट्ठी के माध्यम से भी बता सकते हैं। जो पुराने हम चिट्ठी हमारे श्रोता भेजते थे, हमें बहुत अच्छा लगता था, हम कार्यक्रम में उसको पढ़ते थे, जोड़ते थे, जो सुझाव रहते थे उस पर हम अमल करते थे, तब एक नया कार्यक्रम हम बनाते थे। बहुत खुशी रहती थी कि हमारे श्रोता साथियों का इतने ज्यादा स्नेह रहता है, प्यार रहता है। जैसे कि हम अभी पठा में गए थे और हमारे जो विजय जी हैं, काफी नियमित श्रोता हैं, और उनसे मिलकर हमें काफी अच्छा लगता है कि ऐसे हमारे नियमित श्रोता जो हमारे हर कार्यक्रम को सुनकर अपने बहुमूल्य समय निकालकर फीडबैक जरूर देते हैं, सुझाव देते हैं, चाहे वो बातें हमारी तुम्हारी कार्यक्रम हो, आज की बात हो, किसी भी कार्यक्रम के बारे में यदि उनसे जानना चाहें तो जान सकते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है। तो हम उनको, ऐसे हमारे श्रोता साथी जैसे वीकेश जी भी हैं, ऐसे हमारे श्रोता साथियों को हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं, बहुत बहुत कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं कि हमारे श्रोता हमारे कार्यक्रम में जुड़कर फीडबैक हमें देते हैं और उस फीडबैक के माध्यम पर हम कार्यक्रम बनाते हैं। हम चाहेंगे कि अब हमारे जो अगले कार्यक्रम बनेंगे उसमें आप अपने सुझाव जरूर दीजिएगा कि इस विषय पर हमें कार्यक्रम सुबह कल में सुनना है, तो हम आपको रिकॉर्डिंग करेंगे और इस कार्यक्रम को बनाकर आप लोगों तक प्रस्तुत करेंगे। अब साथियों, अब हमारा समय होता है आज के इस कार्यक्रम सुबह कल से जाने का। आपकी हमारी फिर होगी अगले कार्यक्रम में मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। सुनते रहिए रेडियो बुंदेलखंड 90.4, अपना रेडियो अपनी बात।
1: शुभ कल, बदलती जलवायु के लिए तैयार हम। शुभ कल, बदलती जलवायु के लिए तैयार हम।
0: किसी ने बड़ा खूब लिखा है कि कोई चलता पदचिन्हों पर, कोई पदचिन्ह बनाता है और पदचिन्ह बनाने वाला ही इस जग में पूजा जाता है। सभी श्रोता साथियों का आपके अपने रेडियो साथी मनीष
2: और आपके अपने रेडियो दोस्त वर्षा बहुत बहुत स्वागत करते हैं आज के इस खास कार्यक्रम हम होंगे कामयाब में। और साथियों, हम होंगे कामयाब में, हम बात करेंगे आज सफल कहानी को लेकर नंदिनी दीक्षित जी से। जी हाँ श्रोताओं, तो अब देर नहीं करते हैं क्योंकि ऐसी ही एक कहानी हमारे बीच में आज फिर से मौजूद है जिन्होंने पर्यावरण संरक्षण को लेकर बहुत अच्छा कार्य किया है। तो हम देर नहीं करते हैं, आप सभी को ले चलते हैं नंदिनी दीक्षित जी के पास।
0: और नंदिनी दीक्षित जी से हम जानते हैं कि किस तरीके से वो कामयाब होती चली गई और आज इस मुकाम तक पहुंच गई हैं। आज उनसे प्रेरणा लेकर बहुत सारे लोगों ने पर्यावरण संरक्षण को लेकर काम करना शुरू कर दिया है। तो आइए आपको सीधा ले चलते हैं नंदिनी दीक्षित जी के पास, उनकी कहानी को हम जानते हैं कि किस तरीके से पर्यावरण संरक्षण को लेकर उन्होंने कार्य किया है। तो आइए सुनते हैं नंदिनी जी को, जिनसे बात कर रहे हैं शशांक दुबे जी, एजुकेशन ऑफिसर हैं। तो आइए इनकी वार्ता को हम सुनते हैं।
2: साथियों नंदिनी दीक्षित जी से हम आगे

0: बातचीत जरूर करेंगे, उनकी कहानी को सुनेंगे कि किस तरह से उन्होंने पर्यावरण संरक्षण को लेकर काम किया हुआ है अपने क्षेत्र में, और काफी काम वो अभी भी कर रही हैं। जहां पर वो पढ़ाई कर रही हैं वहां पर भी वो पर्यावरण को लेकर कार्य कर रही हैं लगातार। तो उनसे हम बातचीत आगे करेंगे, लेकिन उससे पहले यहां पर हम एक छोटा सा लोकगीत सुन लेते हैं पर्यावरण से जुड़ा हुआ, उसके बाद लौट के आते हैं कार्यक्रम हम होंगे कामयाब में।
1: पेड़ पौधों से करोगे प्यार तो रहेगा जीवन खुशहाल, वृक्षों को कटने से बचाओ, वृक्ष ही जीवन है, वृक्ष लगाइए जीवन बचाओ।

0: वृक्ष लगाकर करो श्रृंगार, धरती माँ की यही पुकार।
1: श्रोताओं, कार्यक्रम हम होंगे कामयाब में अबे अपन ने सुनो ये प्यारे से लोकगीत खो जीखो गा रहे थे बालक दास कुशवाहा और उनके साथी। और अब हम देर नहीं कर रहेंगे, आपको ले चला थेंगे सीधे नंदिनी दीक्षित जी के पास, जिसे बातचीत कर रहेंगे शशांक जी, और उनसे जानेंगे कि कैसे वे प्रेरित भई थी, कौन तरह से उनने पर्यावरण को समझो और फिर उसके बाद वे काम करने लगी पर्यावरण को लेके। तो आओ उन्हीं से सुना थेंगे उनकी कहानी उन्हीं की जुबानी।
2: नमस्ते नंदिनी जी।
3: नमस्ते
2: नंदिनी जी, हमारे साथ जो आज लिसनर्स जुड़े हुए हैं इस रेडियो चैनल के माध्यम से, क्या आप उनको अपना नाम और उस जगह के बारे में कुछ बातें बता सकते हैं जहाँ आप बड़े हुए हैं?
3: मेरा नाम है नंदिनी दीक्षित और मैं छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले के बचेली नगर की निवासी हूँ। और मैं बेसिकली अभी गुरु घासीदास विश्वविद्यालय में बीटेक की फर्स्ट ईयर स्टूडेंट हूँ। और मैं बेसिकली तो मैं यूपी से बिलोंग करती हूँ, कानपुर से हूँ मैं, बट हम यहाँ शिफ्ट कर गए थे दंतेवाड़ा बचेली में, एंड बचेली इज अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस, तो नेचर से काफी कनेक्टेड है वो जगह।
2: शुक्रिया नंदिनी जी। नंदिनी जी, आपने पर्यावरण संरक्षण के प्रति जो कार्य करे हैं उसकी शुरुआत किस जगह से करी थी और क्या क्या कार्य आपने संरक्षण के प्रति करे हैं?
3: तो एक्चुअली मेरे डैड पर्यावरण संरक्षण के लिए कार्य कर रहे थे, तो वो एक उन्होंने 26 जुलाई 2019 को एक वन वर्ल्ड की शुरुआत की थी। उस वन का नाम अमोद अरण्य है और इसको हमने कारगिल दिवस पर कारगिल योद्धाओं को श्रद्धांजलि देने के रूप में की थी। हम बैरन लैंड पे प्लांट्स लगा रहे थे और उन्हीं से मैं इंस्पायर होके मैं खुद एक कैंपेन चलाती हूँ, एक पेड़ शहीदों के नाम, जिसके तहत मैं हर महीने की 19 से 25 तारीख को शहीदों के नाम पे पौधारोपण करती हूँ। तो इसी के साथ हम स्टूडेंट्स के लिए भी कैंपेन चलाते हैं। हम स्टूडेंट्स को बेसिकली हम नेचर से कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, बिकॉज वो यूथ है और यूथ हमारे फ्यूचर जनरेशन को किस तरीके से अच्छे से, हमारे फ्यूचर जनरेशन है वो, तो वो अच्छे से पर्यावरण को समझे और उसके लिए कार्य करें, तो उनके लिए हम कैंपेन्स चलाते हैं। हम डोर टू डोर अवेयरनेस कैंपेन्स भी चलाते हैं और इसी के साथ हम जैसे प्लास्टिक के लिए भी कैंपेन चलाते हैं, इको ब्रिक्स बनाने। और यहाँ पे जैसे बचेली में हमारे कैंपेन से काफी घर ऐसे हैं जो अपना घर का प्लास्टिक घर में ही रखते हैं, तो बेसिकली अपने फादर से मैंने इंस्पायर होके ये चीजों की शुरुआत की थी एंड होपफुली ये कंटिन्यू कर रहे हैं हम और आगे भी करते रहेंगे।
2: तो जो आप युवाओं के लिए उनको प्रेरित करते हैं कि वो पर्यावरण का संरक्षण करें, पर्यावरण की हर चीज को बारीकी से समझें, इसमें आपने किस तरह की चुनौतियों का सामना किया है?
3: तो सबसे बड़ी चुनौती जो मैंने फेस की है वो, क्योंकि मैं एक सिंगल गर्ल चाइल्ड हूँ, तो मेरे पेरेंट्स तो बहुत सपोर्टिव है, दे ऑलवेज सपोर्ट मी, जो मुझे करना है वो, मुझे कभी ऐसा कुछ नहीं, वो हमेशा मुझे प्रेरित करते कि नहीं आपको ये करना आप कीजिए, बट लोगों से वो रिस्पॉन्स नहीं आता था। पीपल वे लाइक कि आप मतलब एक आपकी बेटी, आप ऐसा इस लाइन में क्यों डाल रहे हैं, इस लाइन में क्यों डाल रहे हैं, तो ये चीज तो थी। साथ में रिस्पॉन्स बहुत कम आता था, लोग उतना मतलब लाइक इतना इस चीजों पर्यावरण और ये सब चीजें इतनी सीरियसली लेते नहीं थे। तो अभी भी मैं ये नहीं बोलूंगी कि मैं पूरा ओवरकम कर गई हूँ इन सब चीजों से, बट काफी हद तक हमने लोगों को प्रेरित किया है और उनको पर्यावरण से जोड़ने की कोशिश की है।
2: जी बहुत बहुत शुक्रिया नंदिनी जी। आज जो हमारे साथ लिसनर्स जो जुड़े हुए हैं इस रेडियो चैनल के माध्यम से, जो युवा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, के अनुसार उनके लिए ऐसा क्या मैसेज है जो उनको ध्यान से सुनना चाहिए और भविष्य में वो कार्य करने चाहिए, ऐसे कौन से कार्य आप उनको बता सकते हैं?
3: जी, तो देखिए मेरा पर्सनली ये मानना है कि छोटे छोटे स्टेप्स बहुत मैटर करते हैं, जैसे बूंद बूंद से घड़ा बन भरता है, तो ऐसे छोटे स्टेप्स बहुत मैटर करते हैं और इंडिविजुअल एक्शंस तो बहुत जरूरी है। हमें खुद से समाज तक जाना है और खुद को पहले खुद को बदलना है, खुद को एक एग्जाम्पल सेट करना है समाज के सामने। तो आप किसी भी सिचुएशन में, आप कहीं भी हो, आप पर्यावरण संरक्षण के लिए छोटे छोटे कार्य भी करते हैं तो वो बहुत मैटर करता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे अभी मैं बाहर हूँ, मैं यूनिवर्सिटी में, मैं अपने पीजी में हूँ, बट स्टिल मैं इको ब्रिक्स यहाँ पे भी मैं बनाती हूँ। तो लोगों से मैं यही कहना चाहती हूँ कि आप कहीं भी हो, पर्यावरण संरक्षण के लिए छोटे छोटे कार्य करिए। आप जैसे इको ब्रिक्स मैं बनाती हूँ, आप इको ब्रिक्स बना सकते हैं, और फिर लाइक बहुत सारी चीजें हम जैसे हमें प्लांट्स पे ज्यादा डिपेंड रहना चाहिए, मेरा से पर्सनली मानना, प्लांट्स पे डिपेंड रहिए, आप अपना थैला खुद लेके जाइए बाहर, ऐसे बहुत सारी चीजें लाइक लाइट ऑफ लाइट ऑन, ये हमको बचपन से सिखाया जाता है, तो ये सब कुछ चीजें हैं। आप यहाँ से शुरुआत करिए और फिर आगे तो फिर बढ़ेगा ही, तो मेरा सबसे यही है कि आप छोटे छोटे स्टेप्स लीजिए और घर से अपने शुरुआत कीजिए, एक पेड़ लगाइए अपने घर पे और उसके अच्छे से केयर कीजिए, तो आप उससे कनेक्ट होंगे। तो जब आप नेचर से कनेक्ट होंगे तो आप खुद आइडियाज निकालेंगे कि और ऐसा क्या कर सकते हैं हम मदर नेचर को प्रोटेक्ट करने के लिए। और सबसे इम्पोर्टेंट थिंग जो है कि कई चीजें ऐसी होती हैं जो पर्यावरण को हार्म कर रही होती है पर हमें उनके बारे में ज्यादा पता नहीं होता है, तो हमें उन चीजों के बारे में रिसर्च करना है, हमें पढ़ना है और सजग रहना है, और सभी चीजों के प्रति हमें संवेदनशील रहना है। हमें हमें पेड़ में हमें जान महसूस करनी है, हमें संवेदनशील इतना होना है कि हम सब चीज में जान महसूस करें। तो ऐसा छोटे छोटे ऐसी चीजें हमें करते रहनी चाहिए।
2: शुक्रिया नंदिनी जी। आपके अनुसार पर्यावरण से रिलेटेड शिक्षा, पर्यावरण से की जो जागरूकता है हमारे अंदर, वो कैसे और अच्छे तरीके से छोटे बच्चों में और युवाओं में जनरेट करी जा सकती है?
3: आई थिंक ये चीजें प्रैक्टिकल के थ्रू ज्यादा की जा सकती है। हमें ये नहीं सोचना है कि मैं पेड़ लगाऊंगा, हमें ये कि मैं पेड़ लगा चुका हूँ और उसकी मैं केयर कर रहा हूँ, हमें इस जगह शिफ्ट करना है। हमें बच्चों से प्रैक्टिकल कराना है कि बच्चों से एक पौधा लगवाइए, उनको बोलिए आप इस पौधे की केयर कीजिए, क्योंकि लाइक पौधा ऐसा चीज है, प्लांट एंड ट्रीज आर द थिंग्स लाइक, वो बहुत ही वैल्यूएबल है। हमें मतलब उनको अच्छे से बच्चों को ये चीज सिखानी है, तो हमें प्रैक्टिकल पे ज्यादा फोकस करना चाहिए, क्योंकि उसी से आई थिंक ज्यादा लोगों के अंदर और जागरूकता आएगी। आप जैसे बच्चे जा रहे हैं फैन ऑन करके चले गए, तो आप उनको सिखाइए नहीं आप फैन बंद कीजिए, सेव इलेक्ट्रिसिटी, ये सब चीजें रहती है, छोटी छोटी चीजें जो हमें किड्स को स्पेशली सिखानी चाहिए। और बचपन से जैसे हम इन्हें प्रैक्टिकल कराएंगे इस चीजों का, तो आई थिंक उनके अंदर ज्यादा इस चीजों की वैल्यू आएगी। जब बड़े होंगे वो और पढ़ेंगे इस बारे में आगे क्लासेस में, तो वो चीजें जब बचपन से भी वो कर रहे होंगे तो उनको एक्चुअल मीनिंग तब पता चलेगा कि ओके हमारे पेरेंट्स हमें छोटे से क्यों बोलते थे कि वी शुड सेव इलेक्ट्रिसिटी, सो व्हेन दे विल रीड अबाउट इट तो तब वो ज्यादा इफेक्टिव रहेगा। इसलिए हमें बचपन से ही बच्चों को नेचर से कनेक्ट करके रखना चाहिए। लाइक माय पेरेंट्स हैव ऑलवेज कनेक्टेड मी विद नेचर, वो हमेशा से मुझे बचपन से मुझे सिखाते थे कि नहीं बेटा पानी बचाइए, आप नल बंद कीजिए, हमेशा आप घर से निकल रहे हैं बाहर के लाइट एंड ऑल एवरीथिंग ऑफ करके चलिए, प्लांट है बेटा, वो मुझसे पानी बचपन में डलवाते थे कि नहीं आप प्लांट्स पे पानी डालिए, आप कनेक्ट कीजिए नेचर से। आई थिंक चिल्ड्रंस को प्रैक्टिकल के थ्रू नेचर से कनेक्ट करने की कोशिश करनी चाहिए, और चिल्ड्रंस को ही नहीं सबको प्रैक्टिकल करके नेचर से कनेक्ट होना चाहिए।
2: बहुत ही कीमती जानकारी और बहुत ही अच्छी बात बताई है आपने हम सबके लिए। इसके अलावा जो मेरा एक और सवाल है आपसे वो ये है कि जो स्कूल्स और जो कॉलेजेस हैं इनका क्या कर्तव्य होना चाहिए पर्यावरण की जागरूकता फैलाने में और इसमें युवाओं को मोटिवेट करने में?
3: जी देखिए, स्कूल एंड कॉलेजेस तो बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि पूरे यूथ और स्टूडेंट्स एंड टीचर्स सब एक साथ होते हैं, तो प्रोबेबली वो ऐसी प्लेस है कि जैसे अगर टीचर आपको जो बताता है स्टूडेंट्स को, तो स्टूडेंट्स ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स उसको ग्रैप करते हैं और ज्यादा से ज्यादा वो सीखते हैं। तो यूनिवर्सिटीज एंड स्कूल्स का तो बहुत ही मेजर रोल है, उनको भी लाइक टाइम टू टाइम बच्चों को उनके प्रैक्टिकल्स कराना चाहिए। स्कूल कैंपसेस बड़े होते हैं, वहां पे प्लांट्स लगा के उनको बोलना चाहिए कि आप अपने पौधे का केयर कीजिए, क्योंकि बच्चा डेली स्कूल आता है, अब वो अपना एक प्लांट लगाएगा, वो उसको डेली वाटर कर सकता है, तो वो डेली का एक प्रैक्टिकल, वो तो बहुत ही अच्छा प्लेस है जहाँ बच्चे और अच्छे से सीख सकते हैं। एंड लाइक वो तो इतना कॉम्पिटिशन कराए ताकि लोग और पर्यावरण के बारे में जाने, जैसे बहुत सारे कॉम्पिटिशन हम करा सकते हैं स्कूल्स एंड यूनिवर्सिटीज, अगर फिर प्लेस होते हैं जिसके थ्रू वीडियोज एंड प्लेस के थ्रू भी लोगों को हम पर्यावरण के से कनेक्ट कर सकते हैं। तो स्कूल्स एंड कॉलेजेस तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, उन्हें प्रोबेबली स्टूडेंट्स से प्रैक्टिकल्स कराना चाहिए, और अपने कैंपस को भी इतना अच्छा ग्रीन एंड ऑल रखना चाहिए कि लोगों को देख के इतना सुकून मिले, तो वो चीजें और ज्यादा कनेक्ट करते हैं जब आप देखते हैं और प्रैक्टिकल करते हैं, तो एज आई सेड तो वो चीजें ज्यादा वर्क करेंगी। तो यूनिवर्सिटी एंड स्कूल को तो कॉम्पिटिशन कराने चाहिए, एंड वो खुद इस चीज में सजग रहेंगे तो आगे और अच्छा कर पाएंगे।
2: शुक्रिया नंदिनी जी।
0: वृक्ष लगाकर करो श्रृंगार, धरती माँ की यही पुकार।
1: अपने रेडियो अपनी बातें साथी हरो भैया हरो, अपन अबे सुन रहे हते नंदिनी दीक्षित जी को जिनने पर्यावरण को लेके बहुत अच्छो काम करो है गो। अब हमारे साथी जो है तनक सोच में भी हुए के पर्यावरण से जुड़ी हुई बातचीत तो अपन सुबकल कार्यक्रम में करत रहेंगे, लेकिन आज हम होंगे कामयाब में भी सुबकल। तो भैया ऐसा नहीं है, देखो शुक्ल को हमने कही थी कि अपन को ध्यान रखने है गो और हर एक चीज में अपन को शुक्ल देखने है गो। सो नंदिनी दीक्षित जी जो हैंगी वे एक सफल महिला हैंगी, यानी कि उनने जो काम की वो नींव रखी हती उमे भी सफल भई हैंगी, यानी पर्यावरण से जुड़ो जो कार्य भी कर रही हती उमे भी सफल भई हैंगी। यही से अपन को लगो के हम होंगे कामयाब में आज के दिन अपन जो सफल कहानी लेके आतेंगे तो कायना वा पर्यावरण से जुड़ी भी कहानी आप सबको सुनो आवे।
4: वर्षा हमें भी लगा था कि नंदिनी दीक्षित जैसी ऐसी हमारी जो सफल महिलाएं जिन्होंने पर्यावरण संरक्षण के लाने बहुत ही नोनो काम करो है गो। और हमें एक बात और कहने वाले हैंगे कि पर्यावरण के लाने तुमने भी बहुत अच्छा काम करो, तो हम आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद देवो चाहते हैंगे। और अपने कुछ अनुभव पर्यावरण से जुड़े जरूर साझा करो, कैसे हम वो और आप सफल कहानी के माध्यम से तो जानते ही हैंगे। वर्षा के बारे में सब लोग ने जानत हैंगे कि वर्षा रेडियो बुंदेलखंड में काम करत हैंगे, लेकिन पर्यावरण के लाने विशेष तौर पर अब एक महीना में इन्हों पुरस्कृत करो गो तो, और विशेष तौर पर इन्हों बुलाओ गो तो कि आप बुंदेलखंड के क्षेत्र में आपने जो सोगाहौन में मिलके पर्यावरण के लाने जो मुहिम छेड़ी हैगी और पर्यावरण के लाने तरह तरह के कार्यक्रम बनाए हैं, खासतौर पर रेडियो से बनाए जो कार्यक्रम और नैरोकास्टिंग के माध्यम से लोगों को जागरूक करो, तो कछु अपने श्रोता साथियों को पर्यावरण बचावे के लाने कछु संदेश, पर्यावरण संरक्षित के लाने का संदेश आप भी दो।
1: सबसे पहले तो मनीष भैया हम आपको बता देवे कि जो काम की जन तारीफ आप पुल बांधवे जा रहे हैंगे वो काम खो बरसा ने अकेले नहीं करो है गो, हमारी पूरी टीम जैसे कि मनीष भैया हैंगे, माता दीन भैया हैंगे, अपने जगरूप भैया भी हते, उनने भी प्राची रामपाल अबे तक के जितने भी रेडियो के साथी काम करत हते सबने मिलके काम करो है गो। सो ये तारीफ के हकदार अपनो पूरो रेडियो बुंदेलखंड को स्टाफ है गो। सो अनुभव के लाने अगर मनीष भैया आपने बात छेड़ी हैगी तो आपको बता देवे कि शुक्ल कार्यक्रम अपन और 2013 से लगातार अपने साथियों के बीच में चला रहेंगे और समय के अनुसार जो समय की मांग होते ही उन सब चीजन को अपने साथियों के बीच में अपन प्रसारण करेंगे। जैसे अगर हमारे कोनू किसान साथी पूछत हेंगे अपन से कि अगर पर्यावरण को सही रखने है को तो उके लाने अपन और कौन सी बीजन को चयन करवे, कौन सी खाद को उपयोग करवे, तो बस इन्हीं के बारे में अपन और ने जागरूकता बढ़ाई हैगी। काम करवे की तो अपन बात नहीं कह सकत, लेकिन अपन ने जागरूकता बढ़ाई हैगी इन गांवन में, सो जी की वजह से लोग समझ गए हैंगे और आप खुद से काम करवो उनने शुरू कर दो है गो। तो सफलता जो मिली हैगी वह रेडियो बुंदेलखंड को मिली हैगी
4: बिल्कुल, और संगे संगे आप भी उसके पात्र हकदार होगी। कैसे यूएन क्लाइमेट चेंज यंग लीडर में आपको सिलेक्शन भी हुआ तो, और आपको बता दें वो चाहे जाके बाद सिलसिला रुको नहीं है और एक के बाद एक उपलब्धियां हासिल करके आज हम और आप देख रहे हैं कि पूरे पेपरों में क्लाइमेट चेंज को लेकर अपनी बुंदेलखंड क्षेत्र से श्री बरसा का चयन किया गया था। और बड़े गौरवान्वित की बात है कि इस तरीके की कुछ उपलब्धियां रेडियो बुंदेलखंड को प्राप्त भई हैंगी, तो हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैंगे आप लोगों को स्नेह जो मिले है गो। और खास तौर पर रेडियो बुंदेलखंड की इतनी चर्चा खास तौर पर पूरी देश में सुनाई जा रही हैगी कि रेडियो बुंदेलखंड द्वारा कितनों अच्छा काम करो जा रहा है गो, तो बहुत बहुत धन्यवाद। अगर साथियों आपको वर्षा की पूरी कहानी आपको सुनने हैगी तो आप फोन कर सकते हैंगे, और अगर सबसे ज्यादा जो उनके मतलब फोन आ गए हैं कि वर्षा की पूरी कहानी अभी तक को सफर आपको सुनने हैं तो कॉल कर सकते हैं, नंबर वही है वो हमारा 94-25-14-17-26।
1: बहुत बढ़िया मनीष भज्जा, आपने तो ऐने ही नोनी बात बता दी हैगी और वर्षा की कहानी इतने अपन सफल कहानी सुन रहे थे और सफल कहानी में अपन ने आज वर्षा की कहानी पे ज्यादा फोकस कर लो है गो। सो इन सब चीजन पे आपको ध्यान नहीं देने है, बस केवल मनीष भैया को उद्देश्य जो है तो वो जो है तो के रेडियो बुंदेलखंड को एक सफलता आज मिल गई हैगी, बड़ा अच्छा लग रहा है और इन सबको श्रेय जो है वो अपनी टीम को तो जाता ही है लेकिन संग में अपने श्रोता साथियों को भी जाते हैं, क्योंकि जो भी चीजें अपन इतने से ब्रॉडकास्ट कर रहे अगर अपने साथी भैया सुन के उमें बदलाव नहीं करेंगे तो अपन और सफल नहीं हो पाएंगे। तो हम साथियों से भी यही अपेक्षा कर थेंगे कि भैया आगे भी आपको साथ हमारे संगे ऐसे ही बनो रहे ताकि रेडियो बुंदेलखंड हमेशा ऊंचाइयन तक पहुंचत रहे। और देखो आप ज्यादा बतकाव नहीं करने है गो काहे कि अपनो समय कार्यक्रम को इतना समाप्त हुए जा रहा है गो। सो अपनी रेडियो दोस्त वर्षा
4: और मनीष को देव जावे की इजाजत,
1: फिर उज्जे आपसे मुलाकात अगले कार्यक्रम में, तब तक के लाने नमस्कार।
0: पेड़ पौधों से करोगे प्यार तो रहेगा जीवन खुशहाल, वृक्षों को कटने से बचाओ, वृक्ष ही जीवन है, वृक्ष लगाइए जीवन बचाओ।

0: शुभ कर्म बदलती जलवायु के लिए तैयार हम।
1: सास बहू की साजिश
2: या ससुर जी का दुलार,
1: ननद जी से हो नोकझोंक
2: या देवर का प्यार, इन सभी बातों को समेट कर लाया
1: आपका अपना कार्यक्रम
2: बातें छोटे पर्दे।
3: श्रोताओं नमस्कार, रेडियो बुंदेलखंड 90.4 सुनने वाले सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। दोस्तों मैं हूं आपके साथ आपकी रेडियो दोस्त वर्षा,
4: और मैं हूं आपका रेडियो साथी मनीष।
3: और श्रोताओं हम आपके लिए लेकर हाजिर हैं आपका अपना कार्यक्रम बातें छोटे पर्दे की।
4: और साथियों बातें छोटे पर्दे की कार्यक्रम में हम महारानी रानी लक्ष्मीबाई की कहानी पढ़ रहे थे और सुन भी रहे थे, और सुनकर हमारे श्रोता साथी भी सोचने लगे हैं कि रानी लक्ष्मीबाई का इतिहास इतना बड़ा है। तो आपको बता देना चाहते हैं, आगे चलते हैं और इस कहानी में हम जानते हैं कि जब महारानी ने देखा कि सिंधिया सरकार की तोपों के मारे अकस्मात पेशवा के फौज हैरान है, तब उन्होंने बड़े आवेश के साथ अपने वहीं के 200 घुड़सवारों को लेकर क्रोध से तड़पती हुई नागिन की तरह सिंधिया के तोपखाने पर हमला किया। उधर तात्या टोपे ने भी अपनी सेना के भिन्न भिन्न भाग करके उन्हें तोपों की मार से बचाया। महारानी लक्ष्मीबाई अपने वीर और रणापटु सवारों के साथ ज्यों ही सिंधिया के तोपखाने पर टूट पड़ी, त्यों ही गोलंदाज लोग तोप छोड़कर भाग गए। सिंधिया की ओर की दूसरी सेनाएं भी तात्या टोपे और उनकी सेनाओं को देखकर भाग गई। केवल महाराज जयाजी राव सूरता के आवेश में आकर अपनी घाटी

0: वाली पलटन को आगे लाकर विरोधियों से युद्ध करने लगे। एक ओर रणगंगा से अच्छी तरह जमा हुआ एक तरुणा राजकुमार और उसकी खासी 1200 सिलेदार पलटन और दूसरी ओर दुर्बंध कमे से फंसी हुई एक अबला और घोड़े से उसके रणसूर सवारों का अपूर्व सामना हुआ। जयाजी महाराज के अंतःकरण में अंग्रेजी सरकार के प्रति बड़ी आदर बुद्धि और प्रेम था, अतएव उनकी क्रोधान खूब प्रचलित हो उठी थी। इससे उनकी वीर श्री अति सुंदर रण खिल रहा था और इधर महारानी लक्ष्मीबाई के मृदु हृदय से अंग्रेजी सरकार के जुल्मी बर्ताव के कारण भयंकर क्रोध अग्नि धधक उठी थी। इस कारण उनके आवेश का विलक्षणा प्रखर स्वरूप हो गया था। कुछ देर तक दोनों ओर से खूब तलवार पर तलवार बजी। सिंधिया सरकार के भड़कीली पोशाक वाले सिलेदार सिपाही क्षण भर में हैरान हो गए। महारानी के कस पर चढ़े हुए जवा मर्द सवार अपने शस्त्रों को स्वाहा करने लगे।
1: यह देखकर सिंधिया महाराज पीछे की ओर मुड़े और अपनी प्राण रक्षा के लिए दीवान दिनकर राव और दूसरे एक तो अपने विश्वासी सरदारों को साथ लेकर धौलपुर के मार्ग से आगरे के किले आकर उन्होंने अंग्रेजों की शरण ली। वास्तव में सिंधिया सरकार ने उस समय अपनी राजभक्ति का बहुत अच्छा परिचय दिया और अपनी मित्रता पालन करने के लिए उन्होंने अपने प्राणों को भी कुछ परवाह ना करके प्राचीन संबंधियों से युद्ध किया। यह बात जिस प्रकार उनके लिए उस समय गौरव की हुई थी, उसी प्रकार झांसी की महारानी लक्ष्मीबाई ने अपने पराक्रम से स्वराज स्थापन करने की अभिलाषा से जो कीर्ति संपादन की, वह भी सदैव अटल रहेगी। यह कोई सामान्य बात नहीं है कि महाराज जयाजी राव सिंधिया को, जिनके शौर्य की बड़े बड़े यूरोपियन लोगों ने तारीफ की है, जिनकी लड़ाई की तैयारी की देखकर शत्रु की छाती दहल उठती और जिनके रथी महारथी सूर सरदारों को देखकर विजयश्री स्वयंवश हो जाती, महारानी के समान एक अबला ने किसी प्रकार की विशेष सहायता न होने पर भी केवल अपनी तलवार से जोर पर संग्राम से भगा दिया। एक संस्कृत कवि के कथन अनुसार इस नियम की सत्यता अच्छी तरह सिद्ध होती है कि क्रिया सिद्धि सत्वे भवन्ति महता नोपर के, अर्थात महापुरुषों की कार्य सिद्धि उनके सच्चे पराक्रम पर निर्भर है, ना कि केवल साधनों पर। महाराज जयाजी राव सिंधिया के महारानी लक्ष्मीबाई से पराजित होकर ग्वालियर से आगरा भाग आने पर महाराज महलों में बड़ा हाहाकार मचा हुआ था। सरकार की सवारी हाहाकार आगरे चले जाने की खबर सुनते ही सब राजा स्त्रियां आत्म संरक्षण के लिए नरवर गांव में चली गई। वहां सिंधिया सरकार के एक दो विश्वास पात्र सरदार और पुराने रिसाले के जो कुछ स्वामी भक्त थे, उन्होंने उनकी बड़ी रक्षा की। इधर विद्रोही लोगों ने बड़े आनंद से शहर में प्रवेश किया। ग्वालियर दरबार के जो सरदार और राजनीतिक भीतरी तौर से राव साहब पेशवा और तात्या टोपे आदि का अभिष्ट चिंतन करते थे, उनको इस विजय का हाल सुनाकर बड़ा आनंद हुआ। उन्होंने इन लोगों का आगमन सुनकर अपनी आदर वृद्धि प्रकट करने में कोई आगा पीछा नहीं सोचा। ग्वालियर की फौज ने अब राव साहब को ही अपना मुख्य स्वामी समझकर उनके स्वागत के लिए तोपों की सलामी दी और किसी प्रकार का प्रबंध ना कर उन्हें लश्कर राजधानी में आने दिया। पेशवा बड़े ठाट से अपने लवाजमा के साथ सिंधिया के राजमहल में पधारे और वहीं उन्होंने अपना डेरा डाला। महारानी लक्ष्मीबाई लश्कर के पास नवलखा नामक बाग में उतरी। पेशवा के साथ के और दूसरे सरदार तथा मित्र शहर के भिन्न भिन्न महलों में उतरे। मतलब यह कि राव साहब पेशवा को बिना विशेष परिश्रम के थोड़े ही समय में सिंधिया सरकार की राजधानी मिल गई और वहां उनकी स्वतंत्रता दर्शक विजय पताका फहराने लगी। शहर पर अधिकार होते ही तात्या टोपे ने ग्वालियर के किले की तरफ कुछ सेना भेजी। किले के अधिकारी तात्या साहब

0: पहले ही से मिले हुए थे, इसलिए किले पर अधिकारी करने में उन्हें कुछ प्रयास नहीं पड़ा। तात्या टोपे की सेना पहुंचते ही किलेवानों ने दरवाजे खोलकर सारा किला उनके स्वाधीन कर दिया। ग्वालियर के समान जंगी और पहाड़ी किला तथा आगणित युद्ध सामग्री पाकर तात्या को अत्यंत हर्ष हुआ। उनको इस बात का गर्व भी हुआ कि ऐसे अजय किले के अप्रतिम सभ्यार्थ के आगे अब हमारी बराबरी कौन कर सकता है। किला और शहर ले लेने पर विद्रोहियों ने ग्वालियर में बड़ा उपद्रव मचाया। पहले तो उन्होंने रेजिडेंसी पर धावा करके उसे जला दिया और वहां का सारा माल असवाब लूट लिया। इसके बाद सिंधिया सरकार के पुराने राजमहल और उनके अंग्रेज हितेशी सरदारों के महलों पर उन्होंने धावा किया और उन्हें नष्ट करना आरंभ किया। उन्होंने राजमहल का विध्वंस करके दीवान दिनकर राव, सरदार बलवंत राव और माहुरकर आदि प्रधान दरबारी लोगों की हवेलियां मिट्टी में मिला दी। इतना ही नहीं, किंतु उन्होंने अपनी धन त्रष्टा तृप्त करने के लिए शहर लूटना भी आरंभ कर दिया। परंतु सौभाग्य से जब राव साहब पेशवा ने इस बात का सख्त हुक्म दिया कि शहर वालों को कोई ना लूटे और ना कोई उन्हें किसी प्रकार की तकलीफ दे, तब कहीं जाकर यह लूट मार बंद हुई। ग्वालियर विजय करके विद्रोहियों और खासकर राव साहब पेशवा ने सोचा कि अब सिंधिया शाही गई और पेशवाई आई। सब दरबारियों को अनुकूल देखकर राव साहब ने ग्वालियर के सब सरदारों और जागीदारों को इकट्ठा किया। फौज के अफसर भी जमा हुए। सिंधिया महाराज ने जिन चार सरदारों को बलवाई समझकर कैद कर रखा था, उन्हें पेशवा ने छुड़ा दिया और वस्त्र वगैरह प्रदान किए। इन सब की सलाह से आसपास के अनुकूल राजाओं को निमंत्रण पत्र भेजे गए। इस प्रकार सब तैयारी करके पेशवा ने खुद अपने को सिंहासन रूढ़ करने का शुभ मुहूर्त निश्चय किया। 3 तारीख को फूलबाग में बड़ा जंगी दरबार हुआ। पेशवा के अनुकूल सब सरदार, राजनीतिज्ञ, सिलेदार आदि अपने अपने योग्य स्थान में सुशोभित हुए। तात्या टोपे और उनके नीचे के सब फौजी सरदार अपनी अपनी पोशाक पहनकर सभा में हाजिर हुए। खुद राव साहब भी पेशवाई राजसी पोशाक पहनकर मस्तक में सिर पेच और कलगी लगाकर कानों में मोतियों के चौकड़े और गले में हार पहनकर पूर्ण वैभव के साथ चौबदार और बंदीगणों की मंगल ध्वनि सुनते हुए दरबार में पधारे। इसके बाद यथाविधि ताजीम और दरबारी लोगों के मुजरे होकर पेशवा सिंह सनारूढ़ हुए। उन्होंने इस खुशी में अपने सरदारों का अभिनंदन किया और बहुमूल्य वस्त्र अलंकार प्रदान किया। उनका उचित सम्मान किया गया। राम राव गोविंद नामक एक सज्जन को प्रधानमंत्री के वस्त्र दिए और तात्या टोपे को सेनापति नियत किया गया।
1: इसके बाद 8 प्रधान नियत करके उन्हें योग्यता अनुसार अधिकार दिए गए। फौजी लोगों को 20 लाख रुपया बांटा गया। चारों ओर आनंद ही आनंद देख पड़ने लगा। राव साहब ने सिंधिया सरकार के अचानक मिले हुए धन का खूब उपयोग किया। नित्य ब्राह्मण भोजन होने लगे। सैकड़ों भिक्षु को उत्तम उत्तम भोजन मिलने लगे। पाकशालाओं में बाजारों आदमी ब्राह्मण भोजन ही के लिए नौकर रखे गए। इस प्रकार राजमहल में नित्य नित्य नए नए उत्सव होने लगे। राव साहब पेशवा तात्या टोपे आदि सुख में निर्गम होकर अपने कर्तव्यों को बिल्कुल भूल गए। यह हाल देखकर महानाई लक्ष्मीबाई को बहुत खेद हुआ। उन्होंने राव साहब से बारंबार यही कहा कि आप इस समय ये सब सुख साज बंद कीजिए। यह समय उत्साह और आनंद करने का नहीं है, युद्ध के लिए तैयार होने का है। परंतु राव साहब पेशवा ने महारानी लक्ष्मीबाई की बातों पर कुछ ध्यान ना दिया। इस पर महारानी लक्ष्मीबाई ने जरा जोर देकर कहा, आप इस समय विजय के आनंद में मग्न हैं, पर यह बात अच्छी नहीं है। सिंधिया का सब खजाना और सेना आपके अधीन है। इसका यदि अच्छा उपयोग नहीं किया जाएगा तो आपकी सब आशाएं धूल में मिल जाएंगी। अंग्रेज लोग बड़े चालाक और उद्योगी हैं। इस बात का कुछ ठीक नहीं है कि वे कब हम लोगों पर चढ़ाई कर दें। यदि आप ऐसे ही अचेत पड़े रहें तो हमारा नाश होने में तनक भी देर नहीं लगी। अब यह ऐस आराम छोड़िए और सेना की तैयारी में लगिए। फौजी लोगों की तनख्वाह बढ़ाकर उन्हें उत्साहित करना चाहिए। यह समय व्यर्थ नष्ट करने का नहीं है। बड़ी कठिनाई से कार्य साधन के लिए अनुकूल समय मिला है। अतएव अब आपको सावधानी के साथ युद्ध की तैयारी में लग जाना चाहिए। परंतु बेसमझी के कारण पेशवा के मन पर महारानी के इस उपदेश का कुछ असर ना हुआ। वे बराबर उसी आनंद में मग्न रहे। ब्राह्मण भोजन भी वैसा ही चलता रहा। तात्या टोपी भी अपनी बलवान सेना के घमंड में मस्त रहे। उन्होंने तो यहाँ तक भी समझ लिया कि अब हमारी सेना का मुकाबला अंग्रेज लोग कर ही नहीं सकते।
0: इधर कालपी युद्ध के बाद सरहुजू रोज साहब विश्राम लेने के लिए बंबई जाने वाले थे। उन्होंने भिन्न भिन्न अंग्रेज वीरों के अधीन भिन्न भिन्न पलटने करके चारों ओर विद्रोहियों के नाश कर देने का प्रबंध कर दिया था। कर्नल रॉबर्टसन सेना सहित ग्वालियर की ओर भेजे गए थे। 1 जून को रॉबर्टसन साहब की ओर से विद्रोहियों के ग्वालियर पहुंचने की खबर सरहुजू रोज साहब को मिली। इस खबर से उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने बहुत सी गोरी और काली फौज, घुड़सवार और तोपखाना आदि मेजर स्टुअर्ट के अधीन करके रॉबर्टसन साहब की मदद के लिए भेज दिया। यह फौज ग्वालियर पहुंचने भी ना पाई थी कि 4 जून को रोज साहब को यह दुखदायक समाचार मिला कि विद्रोही ने ग्वालियर जीत लिया और वहां के महाराज आगरे भाग गए। यह सुनते ही रोज साहब बहुत चिंतित हुए और घबराए कि उनकी सब आशाओं पर पानी फिर गया। झांसी और कालपी के जीतने से उन्हें जो आनंद हुआ था उसे वे क्षण भर के लिए भी भूल गए। कहा तो वे विश्राम लेने के लिए बंबई जा रहे थे और कहा उन्हें इस बड़ी भारी चिंता ने आ घेरा, पर वे बड़े दृढ़ और साहसी वीर थे। वे धैर्य के साथ फिर विद्रोहियों की पराजित करने के लिए तैयार हुए। इसमें संदेह नहीं कि इस समय यदि सरहुजू रोज के समान वीर, पराक्रमी और चतुर योद्धा विरोधियों के सामना करने के लिए तैयार ना होता तो ग्वालियर में राव साहब पेशवा द्वारा पुनर्जीवित किया हुआ पेशवाई का वृक्ष जोरदार हो जाता और उसकी जड़ें दक्षिण तक जम जाती। सरहुजू रोज ने बहुत जल्दी गवर्नर जनरल लॉर्ड कैंगिंग को तार द्वारा इस बात की सूचना दी कि मैं स्वयं ग्वालियर पर धावा करके वहां का किला और शहर अपने अधिकार में कर लेने के लिए तैयार हूं। लॉर्ड कैनिंग ने रोज साहब का उत्साह देखकर ग्वालियर पर चढ़ाई करने की आज्ञा दी और उन्हीं को इस युद्ध का सेनापति नियुक्त किया गया। सरहुजी रोज ने ज्यों ही फिर अपना कर्तव्य पालन स्वीकार किया, त्यों ही जनरल नेपियर जो उनकी जगह पर आए थे द्वितीय सेनापति बन गए और बड़े उत्साह के साथ उन्हें मदद देने की प्रतिज्ञा की। इससे मालूम होता है कि अंग्रेज लोग राष्ट्र कार्य के लिए आपस में कितने प्रेम से बर्ताव करते हैं। 5 तारीख को सरहुजू रोज और ब्रिगेडियर जनरल नेपियर ने अपनी अपनी सेना के कई भाग करके उसे भिन्न भिन्न अफसरों के सुपुर्द किया और ग्वालियर पर चढ़ाई करने के लिए उपयुक्त मार्ग निश्चय किया। मेजर आर को उन्होंने हैदराबाद कंटिजेंट फौज देकर दक्षिण की ओर के बलवाइयों को दबाने के लिए ग्वालियर और सीपरी के बीच पनिहार के पास भेजा। ब्रिगेडियर इस्मत को राजपूताना फील्ड फोर्स की नवीन सेना का अफसर नियुक्त करके ग्वालियर के पूर्व 5 मील पर कोटे की सराय की और भेजा। कर्नल रिडेल के साथ में बहुत सा तोपखाना देकर उन्हें आगरा और ग्वालियर के रास्ते पर भेजा। स्वयं रोज साहब और जनरल नेपियर ने बहुत सी सेना लेकर कई ओर से मुरार की छावनी पर धावा करने का विचार किया। 6 जून को सरहुजू रोज साहब ने कालपी से ग्वालियर की ओर प्रस्थान किया। इस समय इनके साथ मध्य भारत के पॉलिटिकल एजेंट सर रॉबर्ट हैमिल्टन और ग्वालियर के रेजिडेंट मैकफर्नर्स भी थे। इन दोनों से रोज साहब को ग्वालियर का भीतरी हाल और मार्के की जगहों की जानकारी अच्छी तरह से हो गई थी और समय समय पर सलाह लेने का भी अच्छा मौका मिल गया था। अंग्रेजी सेना बड़े वेग से जा रही थी। 11 जून को इंदूर की गांव में स्टुअर्ट साहब की पहली ब्रिगेड से उनकी भेंट हुई। दोनों सेनाएं पहुज नदी पार करके उस पहाड़ी प्रदेश में खूब तेजी और परिश्रम के साथ जा रही थी। रास्ता बहुत विकट होने के कारण यदि सेना के लोगों को दुर्दशा हो गई थी तो उन्होंने अपना साहस नहीं छोड़ा और सेनापति की आज्ञा अनुसार वे बराबर मार्ग तय करते गए। अंग्रेजी सेना का यह उत्साह और साहस देखकर रोज साहब का मन और भी बढ़ गया।
1: 16 जून को प्रातः काल सरकारी सेना बहादुरपुर नामक गांव में, जहां सिंधिया महाराज की हार हुई थी, जा पहुंची। वहां से उन्हें ग्वालियर के प्राचीन प्रचंड और पहाड़ी किले का भीम रूप देख पड़ने लगा। रोज साहब ने सूक्ष्म रीति से विद्रोहियों के बलवाइयों का निरीक्षण किया। वहां से उन्होंने विभिन्न वृक्षों से घिरे हुए मुरार की छावनी के उच्च प्रदेश को जब देखा, तब उन्हें मालूम हुआ कि वह सारा प्रदेश विद्रोहियों के लिए लिया है और छावनी के अग्रभाग में घुड़सवार सेना का रिसाला, दाहिनी ओर तोपखाना और बाईं ओर पैदल फौज आदि रखकर खूब धमासान तैयार कर रखी है। यह हाल देखकर अंग्रेज वीरों ने भी अपनी सेना के कई भाग करके तोपों के हथियार बंद दृढ़ मोर्चे तैयार किए। अंग्रेज फौज के ठहरने के लिए अभी कोई अच्छा मुकाम ना मिला था, इसलिए सरहरूज साहब ने सोचा कि सबसे पहले अपनी रणसूर 96वीं पलटन को आगे करके मुरार की छावनी पर हमला करना चाहिए।
0: बिल्कुल, और मनीष भैया, हमें लगता है कि अब यहाँ पर हमने काफी सारी बातें कर ली हैं अपने 7वें अध्याय में, और हम 7वें अध्याय में चल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर अगर ज्यादा हम बोलते रहेंगे तो हमारे श्रोताओं को जो है बोरिंग सा लगने लगेगा। तो हम यहाँ पर एक बढ़िया सा लोकगीत सुनते हैं, क्योंकि हमारे कार्यक्रम का समय भी उतना ही निर्धारित भी होता है। तो आइए श्रोताओं, हम यहाँ पर एक पहले गीत सुन लेते हैं।

0: गीत के बाद श्रोताओं आप सभी को बता दें कि अब हमारे कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होने जा रहा है। सातवें अध्याय में हम चल रहे हैं, आगे इसमें क्या होता है वो हम आपको अगले कार्यक्रम में जरूर बताएंगे।
1: तो साथियों, यह कार्यक्रम आपको कैसा लगा हमें जरूर बताएं। आपकी हमारी फिर होगी अगले कार्यक्रम में अगले भाग के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।
2: सास बहू की साजिश
3: या ससुर जी का दुलार,
2: ननद जी से हो नोकझोंक
3: या देवर का प्यार, इन सभी बातों को समेट कर लाया
2: आपका अपना कार्यक्रम बातें छोटे पर्दे की।

नमस्कार साथियों, रेडियो बुंदेलखंड 90.4 सुनने वाले सभी श्रोता साथियों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं कार्यक्रम खेत खलियान में। और मित्रों, खेत खलियान कार्यक्रम में आज विशेष कार्यक्रम आज हम लेकर आए हैं, क्योंकि जब हम बात करते हैं जल जंगल जमीन की तो बहुत सारी चीजें हमारे दिमाग में चलती हैं। तो किस तरीके से एक संकल्प यात्रा ददरुआ सरकार से चलकर यहाँ पर ओरछा आकर इन सारी प्राकृतिक जो संसाधन है और साथ साथ में गौ संवर्धन को लेकर बचाने के लिए कितनी एक मुहिम चलाई जा रही है, उसका एक अथक प्रयास डॉक्टर अजय मिश्रा जी के द्वारा किया जा रहा है। तो आज के विशेष कार्यक्रम में आज हम उनको सुनते हैं।

0: नमस्कार साथियों, रेडियो बुंदेलखंड सुनने वाले सभी श्रोता साथियों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और यह बताते हुए हमें बेहद खुशी हो रही है कि जब हम अपने पर्यावरण को एक बार देखते हैं और जब उस पर हम बातचीत करते हैं तो बड़ा दुख होता है कि किस तरीके से जलवायु परिवर्तन हो रहा है, किन कारणों से ये जलवायु परिवर्तन हो रहा है, उस पर विचार करने की बहुत आवश्यकता है। और बड़े सौभाग्य की बात है कि आज हमारे यहाँ पर डॉक्टर अजय मिश्रा जी उपस्थित हुए हैं। इन्होंने ददरुआ सरकार से ओरछा धाम तक एक यात्रा निकाली है, उस यात्रा के बारे में हम थोड़ा जानेंगे, साथ साथ में पर्यावरण, गौ संवर्धन, इन सारे मुद्दों पर आज हम विशेष तौर पर इस कार्यक्रम के माध्यम से हम चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले सर, आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं आज के इस विशेष कार्यक्रम में।
1: बहुत बहुत धन्यवाद और सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार प्रणाम। सभी मेरे भारत के देशवासियों को मैं प्रणाम करता हूं आपके माध्यम से।
0: सर, जानना चाहेंगे कि जो आपने एक संकल्प लिया है, खासतौर पर बड़े सौभाग्य होता है कि इस तरीके की संकल्प यात्रा देश में निकालना, और खासतौर पर आपने एक संकल्प लिया है कि हमें गौ संवर्धन को बचाना है, हमें ऑर्गेनिक फार्मिंग को आगे बढ़ाना है, और खासतौर पर कृषि को लेकर आप बहुत चर्चा में रहते हैं, तो जानना चाहेंगे कि सबसे पहले उस पर प्रकाश

0: डालना चाहेंगे कि ये जो यात्रा आपने सोचा था उसका मुख्य उद्देश्य सर क्या था?
1: ये जो यात्रा है समाधिया जी
0: जी,
1: ये दरअसल विगत 10-15 वर्षों से यात्रा चल रही है
0: जी।
1: इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य है कि इस सृष्टि में
0: जी
1: ईश्वर ने हम सभी को भेजा है
0: जी,
1: तो निश्चित इस सृष्टि में इस पृथ्वी पर आने में हमारे परिवार माता पिता का योगदान होता है जैसा कि विधि का विधान है
0: जी।
1: लेकिन जब हम जन्म लेकर जैसे जैसे बड़े होते हैं
0: जी,
1: तो हमें बड़ा करने में
0: जी
1: प्रकृति का, परिवार का
0: जी,
1: समाज का
0: जी,
1: देश का
0: जी
1: बहुत योगदान होता है
0: जी।
1: इन सभी के लिए हमें काम करना चाहिए
0: जी।
1: निश्चित हमें माता पिता के लिए काम करना चाहिए, अपने परिवार के लिए काम करना चाहिए
0: जी।
1: आज हम देख रहे हैं
0: जी
1: कोरोना काल में
0: जी,
1: जब ऑक्सीजन की कमी हुई
0: जी,
1: तो लोगों ने लाखों रुपया खर्च किया
0: बिल्कुल
1: एक सिलेंडर के लिए, जो धरती माँ
0: जी
1: वर्षों से
0: जी,
1: लाखों वर्षों से
0: जी,
1: हमारी पीढ़ियों को ऑक्सीजन फ्री में दे रही है
0: बिल्कुल सर।
1: और कभी कुछ ही उसने बिल नहीं भेजा
0: बिल्कुल सर,
1: कभी कुछ मांगती नहीं है
0: बिल्कुल सर।
1: तो उसके लिए काम करना
0: जी
1: ये सबका कर्तव्य है
0: जी,
1: सबका धर्म है
0: जी।
1: तो हमारा उद्देश्य है कि लोग पेड़ पौधे लगाएं
0: जी,
1: आने वाली पीढ़ी को
0: जी
1: जिस तरह हमारे बुजुर्गों ने
0: जी
1: हमें हरा भरा वातावरण दिया था
0: बिल्कुल सर,
1: अच्छी खेती दी थी, उपजाऊ जमीन, आज हम लोग निरंतर अत्यधिक रासायनिक खाद के उपयोग से धरती माँ को बीमार कर रहे हैं। आज हमारी धरती माँ संकट में है, यदि धरती माँ संकट में होगी तो भविष्य में हमारा जीवन संकट में आ जाएगा, तो आने वाले पीढ़ी का जीवन संकट में ना आए इसके लिए ये जन जागरूकता कार्यक्रम हमारा चल रहा है
0: जी। ये सर कब से स्टार्ट हुआ है और इसमें किन किन चीजों को आपने विशेष तौर पर ध्यान दिया है सर?
1: इसमें मैं ये मानता हूँ
0: जी
1: कि हमारे जो बुजुर्ग हैं
0: जी,
1: उनकी जो कहावतें हैं
0: जी,
1: लोगों के लिए वो कहावतें होंगी
0: जी,
1: मेरे लिए वो जीवन का मूल मंत्र है। जैसे हमारे यहाँ एक कहावत है
0: जी,
1: कि उत्तम खेती
0: जी,
1: मध्यम बांध,
0: बिल्कुल सर।
1: एक और कहावत है
0: जी,
1: कि पहला सुख निरोगी काया,
0: बिल्कुल सही है।
1: यदि व्यक्ति का शरीर स्वस्थ नहीं है
0: जी,
1: तो वो व्यक्ति किसी काम का नहीं है
0: बिल्कुल सर।
1: एक स्वस्थ शरीर में
0: जी
1: स्वस्थ विचार आते हैं
0: जी,
1: जब विचार हमारे स्वस्थ होते हैं
0: जी,
1: तो हमारे कार्य स्वस्थ होते हैं
0: जी,
1: और जब कार्य स्वस्थ होते हैं तो हमारा जीवन भी समृद्ध होता है
0: बिल्कुल सर।
1: तो स्वास्थ्य के लिए, चूंकि मेरा सौभाग्य है
0: जी,
1: कि मुझे मेरे देश के महान लोग जैसे कि प्राकृतिक खेती में आदरणीय सुभाष पालेकर जी, आदरणीय डॉक्टर हमारे त्रिपाठी जी, आदरणीय हमारे कुंडू साहब
0: जी,
1: इन सब के साथ मुझे रहने का अवसर मिला है, तो मैंने उनसे जाना है
0: जी।
1: और बड़े ही सौभाग्य की बात है
0: जी,
1: कि धरती माता ने
0: जी
1: हमारे देश में
0: जी
1: एक ऐसे आयुर्वेदाचार्य को प्रकट किया है
0: जी,
1: जिनका नाम है डॉक्टर प्रकाश टाटा, जो विश्व के एक महान आयुर्वेदाचार्य हैं। भारत की जड़ी बूटियों का झंडा लेकर 122 देशों में वो काम कर रहे हैं, तो मुझे उनका भी सानिध्य मिला। आदरणीय आचार्य मनीष जी, जो हिम्स हॉस्पिटल है, उनके ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल जीना सी को जो उनका कार्यक्रम है
0: जी, जी, जी।
1: ये ऐसे लोग हैं जिनका उद्देश्य है कि हमारा देश जागे
0: जी, बिल्कुल।
1: बीमार हो के आप अपने जीवन की गाड़ी कमाई खर्च ना करके
0: जी
1: आप स्वस्थ कैसे रह सकते हैं, हमें उस पे काम करना चाहिए
0: बिल्कुल।
1: तो हमने पहला शुरुआत की खेत से, कि स्वास्थ्य के लिए
0: जी
1: अगर कोई दुनिया में, इन सबसे मेरा एक ही सवाल था
0: जी, जी,
1: कि आप तो मुझे ये बताओ कि हम स्वस्थ कैसे रह
0: कैसे रहे बिल्कुल सर,
1: समाज स्वस्थ कैसे रह सकता है
0: जी।
1: तो सबका एक ही जवाब था कि स्वस्थ रहने के लिए शुद्ध भोजन के अलावा दुनिया में कोई दवाई नहीं है
0: बिल्कुल।
1: अगर हम भोजन शुद्ध करते हैं
0: जी
1: तो वो भोजन दवा का काम करता है
0: बिल्कुल सर।
1: तो भोजन दवा बन सकता है, दवा कभी भोजन नहीं बन सकती है। तो आपके माध्यम से मैं मेरे देशवासियों को ये आग्रह करता हूँ कि आप अपने भोजन पे ध्यान दीजिए, अपने जीवन की जो आपकी दिनचर्या है उस पे ध्यान दीजिए। जिस तरह हमारे बुजुर्ग सुबह 5 बजे उठ जाते थे
0: जी,
1: शाम को सूर्य ढलने से पहले भोजन कर लेते थे
0: जी,
1: क्योंकि जब रात्रि में बहुत लेट हम भोजन करते हैं तो जो प्रकृति ने हमें जो भोजन पचाने की मशीन दी है
0: जी,
1: जिसे हम जठर अग्नि कहते हैं
0: जी,
1: वो मंद हो जाती है

0: भोजन पचता नहीं है, वो भोजन सड़ता है।
1: सड़ता है,
0: जब भोजन सड़ता है तो कई विकार पैदा होते हैं। तो स्वस्थ रहने के लिए हमें शुद्ध भोजन और हमारी जो दिनचर्या है इस पे विशेष ध्यान देना चाहिए। यदि बीमार हैं तो आयुर्वेद पे विश्वास करो।
1: बिल्कुल,
0: आयुर्वेद हमारी प्राचीन पद्धति है और आज के समय में उसमें बहुत सारे रिसर्च हुए हैं। हमारे डॉक्टर प्रकाश टाटा जी और आचार्य मनीष जी निरंतर रिसर्च कर रहे हैं। तो आज हिम्स हॉस्पिटल में जो लोग 100-100 कीमो ले चुके हैं कैंसर में, वो लोग भी वहाँ आ रहे हैं और ठीक हो रहे हैं। किडनी फेलुअर लोग आ रहे हैं, वहाँ लीवर फेलुअर लोग आ रहे हैं और ठीक हो रहे हैं। तो ये जो हमारा स्वस्थ समृद्ध खुशहाल भारत मिशन है, इसमें आदरणीय डॉक्टर प्रकाश टाटा जी, आचार्य मनीष जी और हम तीनों लोग मिलकर ये स्वस्थ समृद्ध खुशहाल भारत मिशन का झंडा लेकर भारत में गांव-गांव जाने का हमारा प्रयास है और समाज को जगाने का हमारा प्रयास है।
1: सर, एक चीज हमारे मन में चूंकि बहुत दिनों से भी खटक रही थी, लेकिन उसका जवाब हमें कहीं सही ढंग से नहीं मिल पा रहा था, हमें कहाँ कमी देखने को मिल रही है। खास तौर पर हम अगर बुंदेलखंड क्षेत्र की बात करें, इस क्षेत्र में लोग खेती पर आश्रित रहते हैं। समस्या यहाँ पर यह आती है कि जब हम किसानों के पास जाते हैं कि आप ऑर्गेनिक खेती के ऊपर अपना ध्यान केंद्रित करिएगा, समस्या उनका मानना यह है कि अगर हम ऑर्गेनिक खेती करने जाएंगे तो उसके लिए हमें 4 या 5 साल वेट करना पड़ेगा। उसमें सर आपका क्या मानना है कि किस तरीके से लोगों को जागरूक किया जाए?
0: मेरा ऐसा मानना है कि जीवन में सफलता और असफलता निर्भर करती है कि आपका सलाहकार कौन है।
1: बिल्कुल,
0: महाभारत की कथा हम सबने सुनी है। कौरवों के पास इतनी बड़ी सेना होने के बाद जूद ही उनकी पराजय हुई।
1: बिल्कुल,
0: क्योंकि उनके जो सलाहकार थे वो शकुनी थे। पांडवों के पास छोटी सेना थी फिर भी वो विजय हुए, क्योंकि उनके जो सलाहकार थे वो भगवान श्री कृष्ण थे। तो जब भी जीवन में कोई काम आप करते हैं तो मैं किसान भाइयों से ऐसा आग्रह करूंगा कि आप एक अच्छे सलाहकार के साथ जुड़िए। तो हमारा स्वच्छ समृद्ध खुशहाल भारत मिशन किसानों के लिए सलाहकार के रूप में काम करता है। हमारे साथ आज हमारे कार्यक्रम में हमारे बुंदेलखंड के ही मैं बात करता हूँ, बुंदेलखंड के उरई के पास एक गांव है कुकर गांव, वहाँ के हमारे एक प्रगतिशील किसान है शिव शंकर चतुर्वेदी जी। तो 2019 में हमारी उनके साथ मुलाकात हुई, तो मैंने उनको समझाया कि आप एक अपने खेत पे एक बागवानी का एक मॉडल तैयार करिए, तो ऊपर आपको फल मिलेंगे, नीचे आप इंटरक्रॉपिंग में आप खेती करिए और जो आपकी मेहने हैं उन पे आप ऐसे पौधे लगाइए कि जो आपको लॉन्ग टाइम में एक अच्छा पैसा आपको रिटर्न मिल सके। किसान को प्रेजेंट टाइम, मिडिल टाइम और लॉन्ग टाइम, यानी आज कल और परसों, जैसी हमारे यहाँ कहावत है भाई, आज हमें जरूरत है हमारा घर चलाने की, कल हमें हमारे बच्चे के या किसी के कोई शादी विवाह के लिए कार्य पैसे की आवश्यकता है
1: जी।
0: हमें 20 साल बाद हमारे बच्चों की कुछ और कोई कार्यक्रम करेंगे, तो उस तरह की प्लानिंग करके वहाँ हमने एक मॉडल बनाया है। तो मेरा विशेष आपसे आग्रह रहेगा कि इस मॉडल को आप भी प्रमोट करिए। उस मॉडल को हमने नाम दिया है खेती का ATM, यानी किसान को ऑल टाइम पैसा कैसे मिले। तो वहां हमने व्यावसायिक खेती में अमरूद, नींबू और एप्पल वेयर लगाया हुआ है
1: जी।
0: तो क्या होता है कि अभी हमारा एप्पल वेयर चल रहा है,
1: बिल्कुल
0: फरवरी में चालू हो जाता है
1: जी।
0: फिर हमारा अप्रैल मई से हमारा नींबू चालू हो जाएगा,
1: बहुत बढ़िया,
0: और अक्टूबर में हमारा अमरूद चालू हो जाएगा। तो 12 महीने हमारे शिव शंकर चतुर्वेदी जी को पैसा मिलता है। नीचे हम लोगों ने हल्दी लगाई हुई है, अभी हम लोग हल्दी में प्लान कर रहे हैं। कल भी हमारी बात हुई थी कि इससे हल्दी को ले उखाड़ के और इसका हम चिप्स बनाएंगे, चिप्स बना के हम सेल करेंगे, क्योंकि आजकल मिलावटखोरी बहुत चल रही है।
1: बिल्कुल,
0: तो हम ये चाहते हैं कि लोग प्योर ऑर्गेनिक और बिल्कुल एकदम क्वालिटी प्रोडक्ट लें।
1: बिल्कुल,
0: चिप्स होने से फायदा ये होगा कि वह जो भी खरीदेंगे आराम से अपने घर की मिक्सी में उसका पाउडर बना सकते हैं।
1: बिल्कुल सर,
0: तो उसमें चिप्स में कोई मिलावट नहीं हो सकती
1: जी।
0: अपने घर में आप पाउडर बनाएंगे
1: बिल्कुल।

0: एकदम ओरिजिनल बनेगा, 100% ऑर्गेनिक है, तो उस मॉडल को जरूर मैं निवेदन करना चाहूंगा किसान भाइयों से कि उरई के पास कुकरगांव है, शिव शंकर चतुर्वेदी जी के मॉडल पे आप लोग जरूर जाइए, वहाँ सैकड़ों किसान आते हैं, उस मॉडल को देख रहे हैं और उसको अपना रहे हैं। वहाँ जब सुन के और जब हम देखेंगे तो हमें विश्वास होगा कि नहीं, ये भी संभव है और ऐसा हो सकता है कि एक हेक्टेयर से भी किसान 5 से 7 लाख रुपया कमा सकता है। तो मेरा किसान भाइयों से अनुरोध है कि स्वस्थ समृद्ध खुशहाल भारत मिशन में आप जुड़िए। हम कोई सदस्यता शुल्क नहीं लेते हैं, निःशुल्क जोड़ते हैं और निःशुल्क ट्रेनिंग देते हैं, किसी प्रकार का कोई परामर्श शुल्क नहीं लेते हैं। तो हमारे साथ जुड़े, आपको प्राकृतिक खेती, जैविक खेती, बागवानी, मिश्रित खेती और स्वावलंबन के बारे में हम पूरा आपको प्रशिक्षण देंगे।
1: बहुत बढ़िया, क्योंकि सर एक चीज और उसमें हम जोड़ना चाहेंगे, हम लोगों ने भी सर 2009 में इस तरीके की मुहिम एक छेड़ी हुई थी कि शुभ कल, आने वाला कल किस तरीके से शुभ हो। हम लोगों ने वर्ल्ड बैंक के सहयोग से एक हमारी परियोजना थी सर, उसमें हमने 100 गांव में इस तरीके की ऑर्गेनिक फार्मिंग को लेकर, जैसे कि किचन गार्डन हुआ सर, अमृत मिट्टी बनाना, केचुआ खाद, रेन वाटर हार्वेस्टिंग और हम जो इंटरक्रॉपिंग की बात करते हैं उसको लेकर हम लोगों ने एक, जिस तरीके से कौन बनेगा करोड़पति गेम खिलाया गया था उसी तरीके से हम लोगों ने खिलाया था। समस्या ये आई थी कि शुरुआत में थोड़ी हमें कठिनाई जरूर हुई थी, लेकिन आगे चलकर लोगों ने जब इस तरीके की परियोजना में देखा सुना तो वो जुड़ना स्टार्ट हुआ। समस्या अब यहाँ आई है जब परियोजना हमारी बंद हो गई है। परियोजना बंद होने के बाद 1-2 साल उन्होंने प्रयास किया कि इस क्या नाम है ऑर्गेनिक फार्मिंग को हम आगे बढ़ाए। अब समस्या वहां पर ये आ रही है उनको कि मार्केटिंग की समस्या कि हम कहाँ पर, चूंकि जब ऑर्गेनिक को लेकर हम बाजार में जाते हैं और लोगों से कहते हैं कि ये ऑर्गेनिक फार्मिंग का उगा हुआ ये चीज है, इसको आप खरीदिएगा, थोड़ा रेट आपका बढ़ के मिलेगा। समस्या ये आती है कि लोग उसको सुनते नहीं है। इसमें सर आपकी क्या राय है, किस तरीके से लोग इसमें आगे बढ़ेंगे और जागरूक होंगे?
0: निश्चित सवादिया जी, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। इसमें हमारा जो स्वस्थ समृद्ध खुशहाल भारत मिशन है जी, इसका काम यही है जी। जैसे हमारा किसान है जी, तो किसान गांव में है जी, उनके पास उत्पाद तो है जी, लेकिन जैविक या अपना नेचुरल प्रोडक्ट है जी, बहुत हमारे ऐसे लोग हैं जो ये प्रोडक्ट चाहते हैं,
1: बिल्कुल सर,
0: उन्हें मालूम नहीं है ये क्या है, दोनों के बीच में गैप
1: है। बिल्कुल,
0: गांव में जो व्यक्ति बैठा है वो इसलिए नर्वस है कि मैं पूरा प्राकृतिक कर रहा हूँ, मेरा उत्पादन भी कम हो रहा है लेकिन मुझे दाम अच्छा नहीं मिल रहा है।
1: बिल्कुल,
0: शहर में जो लोग बैठे हैं वो इसलिए परेशान है कि पैसा पूरा खर्च हो रहा है, प्रोडक्ट अच्छा नहीं मिल रहा है। तो हम क्या कर रहे हैं, इन दोनों के बीच में एक सेतु का काम कर रहे हैं। शहर में भी हम लोग सदस्य बना रहे हैं
1: जी,
0: और गांव में भी हम लोग किसानों को सदस्य बना रहे हैं। शहर में हम लोगों ने एक मिशन शुरू किया है खुशहाल जिंदगी। खुशहाल जिंदगी हम कैसे जिए, शुरुआत वहीं से होती है, भोजन से, शुरुआत भोजन से ही होगी
1: जी, जी, जी,
0: जी, जीवन में समाधिया जी, खुशहाली बिना हेल्थ के संभव नहीं
1: है।
0: अगर आप हेल्थ से अच्छे हैं तो आप सब चीजों का आनंद ले सकते हैं, हेल्थ अच्छी नहीं है तो कुछ भी अच्छा नहीं है।
1: बिल्कुल सर,
0: तो ऐसे किसान भाइयों से मैं आग्रह करना चाहूंगा कि आप स्वस्थ समृद्ध खुशहाल भारत मिशन के साथ जुड़े। आपकी जो मार्केटिंग की समस्या है उसका भी हम लोग मिलकर हल निकालेंगे। नंबर दो
1: जी,
0: आज के समय में हमारे बच्चे भी पढ़े लिखे हैं।
1: बिल्कुल सर,
0: और सबसे अच्छी बात यह है कि मैं ऐसा मानता हूँ कि अब वक्त गाँव का है।
1: बिल्कुल सर,
0: गाँव का इसलिए है कि शायद जो पश्चिमी सभ्यता है
1: जी,
0: उसका भोग भोग के अब लोग थक चुके हैं।
1: बिल्कुल सर,
0: अब लोग गांव में जाना चाहते हैं
1: जी।
0: अभी हमारे यहाँ भारत में ग्रामीण टूरिज्म बहुत तेजी से बढ़ रहा है।
1: बिल्कुल,
0: अब लोग शहर में की अपेक्षा
1: गांव में
0: रुकना पसंद कर रहे हैं। आपके यहाँ नजदीक में लाड़पुरा गांव है, वहाँ बहुत सारे यात्री आते हैं।
1: बिल्कुल,
0: वो जो वहाँ पे होम स्टे है, 2-4 लोगों का मेरा परिचय है, मैं पूछता रहता हूँ कैसा चल रहा है, बोले सर बहुत अच्छा चल रहा है, यात्री आ रहे हैं। तो अब लोग गाँव की तरफ लौट रहे हैं और लोग देसी प्रोडक्ट की तरफ लौट रहे हैं। हमारे देश में बहुत सारे ऐसे होटल बन गए हैं जहाँ देसी भोजन मिलता है, वहाँ भीड़ लगी हुई है। शहरों में भी अब लोग ये सब पूरी पराठा और फास्ट फूड छोड़कर अब लोग दाल टिक्कर को लोग पसंद करने लगे हैं। तो मेरा ऐसा आग्रह है मेरा ग्रामीण भाई बहनों से, नौजवानों से, किसानों से,

0: कि निराश मत होइए।
1: बिल्कुल सर,
0: समय आपका आ रहा है
1: बिल्कुल,
0: इस और आपको काम करने की जरूरत है।
1: जी,
0: जो हमारे पढ़े लिखे बच्चे हैं, आप फेसबुक है, यूट्यूब है, हमारे जो सोशल मीडिया है, उस पे आप अपने प्रोडक्ट को प्रमोशन करिए। और बहुत सारी ऑनलाइन कंपनियां हैं जो आपके प्रोडक्ट की डिलीवरी करेंगी। आप अच्छा प्रोडक्ट बनाइए, प्रोडक्ट कैसे बनेगा, लाइसेंस क्या चाहिए, ये इस तरह की जो सहयोग चाहिए तो वो हम उनको करेंगे। ये आपके माध्यम से हम निवेदन कर रहे हैं।
1: बिल्कुल सर, और बस लास्ट में हमारा एक सवाल है, क्योंकि जब हम क्लाइमेट चेंज को देखते हैं, बहुत सारे दिन में मन में सवाल चलते हैं कि आज पहले कितना जंगल हुआ करता था, खासतौर पर अगर ओरछा की ओर देखा जाए। आज हम जान रहे हैं कि नई देश आगे बढ़ रहा है, बहुत सारे डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट आ रहे हैं, बहुत सारी रोड बन रहे हैं, बहुत सारी सिटियां बन रही हैं, डेवलप हो रहे हैं। कहीं ना कहीं आपको क्या लगता है कि जो जंगलों की कटाई खासतौर पर देखने को और सुनने को मिल जाती है, तो मन में काफी मतलब दुख होता है कि इस तरीके का जंगल हुआ करता था, अब नहीं है। आपका क्या मानना है सर
0: इसमें? मेरा बहुत स्पष्ट मानना है। एक मैं छोटी सी एक कहानी इसमें जोड़ता हूँ। एक दूध देने वाला व्यक्ति था, गांव का सीधा साधा किसान, बाजार दूध देने जाता था और वहां से उस बेकरी से वो 1 किलो बेकरी लेके घर पे आता था। एक दिन उस दुकानदार ने कहा कि मुझे 1 किलो घी चाहिए। तो वो दूसरे दिन घी लेके आ गया। दुकानदार ने जब उसको तोला तो घी 800 ग्राम निकला। दुकानदार ने उसके ऊपर केस कर दिया। केस कर दिया तो वो अदालत में पेश हुआ किसान। तो जज साहब ने कहा कि तुमने चीटिंग की है और तुम्हारे ऊपर ये मुकदमा दायर हो गया है, तुम्हें अपनी सफाई में कुछ कहना है? तो किसान ने कहा, मुझे ये तो बताइए कि मेरा गुनाह क्या है। तो जज साहब बोले कि तुमने इन सेठ जी को 1 किलो की जगह 800 ग्राम घी दिया है। तो उसने कहा, हजूर मैं तो किसान हूँ, मेरे पास तो तराजू भी नहीं है। मैं गलत नहीं हूँ, गलत ये सेठ है। मैं इनके यहां से 1 किलो वो लेके गया था, अभी बेकरी 1 किलो बेकरी लेके गया था, उसी के बदले मैंने घी तोला।
1: बहुत बढ़िया।
0: तो मैं गलत नहीं हूँ, गलत ये है। आज क्या हो रहा है, हम लोग एक ही ओर दौड़ लगा रहे हैं, पैसे की ओर।
1: बिल्कुल सर,
0: जब पैसा ही सब कुछ हो जाएगा तब हम ना नदी का ध्यान रखेंगे, ना पौधों का ध्यान रखेंगे, ना परिवार का ध्यान रखेंगे, ना समाज का ध्यान रखेंगे।
1: बिल्कुल सर,
0: मेरा स्पष्ट मानना है कि ठीक है पैसा आवश्यक है, लेकिन जीवन में केवल पैसे से ही अगर आप समृद्ध हो गए तो आप समृद्ध नहीं है।
1: बिल्कुल सर,
0: आपको परिवार से भी समृद्ध होना है
1: जी,
0: आपको समाज से भी समृद्ध होना है
1: जी,
0: आपको शरीर से भी समृद्ध होना है
1: जी।
0: इन सबसे अगर समृद्ध होना है तो हमें बैलेंस समृद्धि के लिए काम करना पड़ेगा। ये जो नदी है, जो तालाब है, जो पहाड़ है, जो पक्षी हैं, जो जीव जंतु है, हमारे यहाँ सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे संतु निरामया, ये वो धरती है जहां सबको जीने का अधिकार है। और सहजीवन, हमें अधिकार नहीं है कि हम किसी को नष्ट करें या किसी को समाप्त करें। जिस दिन हम पेड़ पौधों को नष्ट कर देंगे, ऑक्सीजन कौन देगा?
1: बिल्कुल सर,
0: आपकी ये जो घमंड है पैसे का
1: जी,
0: भूल गए 5 साल पिछले 2020 में सारे घमंड चूर हो गए थे ना।
1: बिल्कुल सर,
0: प्रकृति का ये छोटा सा रूप जिसे पूरी दुनिया सह नहीं पाई,
1: बिल्कुल सर,
0: ये रूप कभी दोबारा ना बने, इसलिए मेरी प्रार्थना है सभी से कि अपने जीवन में आप अपने जन्मदिन पर, अपनी मैरिज एनिवर्सरी पर हजारों लाखों खर्च करते हो, करो, मुझे कोई एतराज नहीं है, भगवान ने आपको दिया है खूब खर्च करो, लेकिन जिस पृथ्वी ने, जिस धरती मां ने हमें जीवन दिया है और हमें सांसें दे रही है, उसके लिए हर साल कम से कम एक पौधा हर व्यक्ति जरूर लगाए, ये अपील मैं आपके माध्यम से करना चाहता हूँ। अगर हम एक एक पौधा लगाना शुरू करेंगे तो देश में हर साल करोड़ों पौधे लगने लगेंगे और धीरे धीरे क्लाइमेट की जो समस्या है इस पर नियंत्रण होगा,
1: बिल्कुल
0: जरूर होगा।
1: बिल्कुल सर,
0: और

0: गौ माता के लिए मैं जरूर कहूंगा
1: जी
0: कि आज जो गौ माता दर दर भटक रही हैं, मेरा आप सबसे आग्रह है
1: जी,
0: कोई चीज जब हमारे जीवन में नहीं होती है ना
1: जी,
0: तब हमें उसका एहसास होता है। एक चीन की घटना है
1: जी,
0: मुझे ठीक से सन याद नहीं आ रहा है
1: जी,
0: तो वहां किसी ने प्रधानमंत्री को सलाह दे दी होगी
1: जी,
0: कि जो फसल में जो गौरैया चिड़िया होती है
1: जी,
0: ये बहुत नुकसान करती है, बोले इस गौरैया चिड़िया को पूरा समाप्त करवा देना चाहिए, और पूरा चीन गौरैया को मारने में लग गया। अंत में परिणाम ये हुआ गौरैया तो मर गई लेकिन फसल में इतने कीड़े आ गए कि वहां लाखों लोग भूख से मरे, लाखों लोग भूख से मरे। तो जिन्हें हम दुश्मन समझते हैं हमारा
1: जी,
0: हमारे खेत में केंचुआ
1: जी, जी,
0: हमारा सबसे बड़ा मित्र है,
1: बिल्कुल
0: जो हमारे खेत में लाखों छेद करता है
1: जी,
0: मिट्टी को उपजाऊ बनाता है।
1: बिल्कुल,
0: जब बरसात होती है उन्हीं छेदों से धीरे धीरे पानी अवशोषित होता है और वही पानी हमको पीने को मिलता है। हमारे जो चूहे है, कछुआ है, सांप है, एक भी चीज प्रकृति ने व्यर्थ नहीं बनाई है। मेरे देशवासियों, मैं आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं कि आपकी एक भी योजना चलने वाली नहीं है, आप कितनी भी प्लान कर लो
1: जी सर,
0: आज जितने बड़े बड़े किले हमको खाली दिख रहे हैं क्या उन्होंने प्लान नहीं किया होगा कि इसमें हमारा परिवार रहेगा, हमारी पीढ़ियां रहेंगी, क्या वहां रह रही हैं आज? नहीं रह रही ना, सारे किले खाली पड़े हैं। तो आप प्रकृति को नुकसान पहुंचाकर, राष्ट्र को नुकसान पहुंचाकर जो धन इकट्ठा कर रहे हो, इससे आपकी कोई प्लानिंग चलने वाली नहीं है, ये कहीं ना कहीं आपको और आपके परिवार को हानि पहुंचाएगी। पैसा कमाइए ईमानदारी से। आज जो मिलावट खोर लोग हैं मैं उनसे भी आग्रह करना चाहूंगा, अरे हम एक दूसरे को जहर देंगे एक दिन हम सब नष्ट हो जाएंगे, हमें खुद सुधरना है। हम सुधरेंगे जब सुधरेगा, दुनिया को मत सुधारो, एक पौधा साल में एक बार हमें लगाना है, ये हमारी प्रतिज्ञा होना चाहिए। गाय माता को हम अपने घर पे नहीं पाल सकते हैं तो कम से कम इतना तो कर सकते हैं, हिंदू होने के नाते हम अपने घर में अपने प्रतिष्ठान में कम से कम एक धूप बत्ती सुबह और एक धूप बत्ती शाम को लगाते हैं। यही धूप बत्ती यदि हम गौ माता के गोबर से बनी हुई खरीदना चालू कर दें तो भी आप गौ भक्त कहलाएंगे। जब आप धूप बत्ती खरीदेंगे, धूप बत्ती की मांग बढ़ेगी, तो जो हमारे गौ भक्त गौ माता को पाल रहे हैं वो और ज्यादा गौ माताओं को पालेंगे। तो मेरा जहां भी इस आपके जो चैनल को लोग सुनते हैं, मेरी सबसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि कम से कम आप लोग अपने घर में गौ माता से बने हुए उत्पादों का उपयोग शुरू कर दीजिए। गौ माता भक्त आप कहलाएंगे और गौ माता के आशीर्वाद से आपका परिवार हमेशा सुखी और समृद्ध रहेगा, ये निवेदन मैं जरूर करना चाहूंगा।
1: बहुत बढ़िया सर, बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि समय का भी एक प्रोटोकॉल भी कह सकते हैं उसको, समय का भी चीज रहती है कि एक कार्यक्रम को एक समय रहता है। तो हम आगे ना बढ़ते हुए सर आपका हम बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद अदा करना चाहते हैं, और खास तौर पर उन साथियों से फिर से दोबारा सर के माध्यम से, चूंकि सर ने अपील की है और हम भी अपील रेडियो बुंदेलखंड के माध्यम से अपील करना चाहते हैं, जो सर ने संकल्प के लिए बात बताई है वो संकल्प आप जरूर लीजिएगा। हमें गौ माता को बचाना है, हमें देश को बचाना है, हमें अपने जल जमीन और जंगल को भी बचाना है, और इनकी प्रतिज्ञा हमें करनी होगी। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर
0: बहुत बहुत धन्यवाद समाधिया जी आपका, और सभी श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद।
2: बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आपने इस विशेष कार्यक्रम को सुना, हमें आशा है कि हमारे श्रोता साथी अब समझ गए होंगे कि किस तरीके से हमें एक प्रयास करने चाहिए, एक मुहिम हमें चलानी चाहिए, और खास तौर पर इन सारी चीजों को अगर हमें बचाना है, प्राकृतिक चीजों का जो हम दोहन कर रहे हैं उनको हमें बचाना होगा, साथ साथ में हम जो ऑर्गेनिक फार्मिंग पर बातचीत कर रहे हैं तो उसको अपने खेतों में अपनाना होगा, साथ में गौ संवर्धन को लेकर गौ माता को बचाने के लिए जो अथक प्रयास किया जा रहा है उस पर हमें एक बार फिर से विचार करने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। साथियों हमारा वक्त हो चुका है आज के इस विशेष कार्यक्रम खेत कल्याण कार्यक्रम से जाने का। हमें आशा है कि हमारे श्रोता साथी इसे सुनकर अपने जीवन में कुछ बदलाव जरूर करेंगे। तो साथियों हमारा वक्त हो चुका है आज के इस कार्यक्रम खेत कल्याण कार्यक्रम से जाने का। अब आपकी हमारी फिर होगी अगले कार्यक्रम में मुलाकात।

यदि आपको कुछ प्रश्न आपके मन में चल रहे हैं तो पूछ सकते हैं हमारे इस नंबर पर। नंबर है हमारा 92-19-20-77-49। तो आपके रेडियो साथी मनीष लेते हैं जाने की अनुमति। आपकी हमारी फिर होगी अगले कार्यक्रम में मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।

0: नमस्कार दोस्तों, रेडियो बुंदेलखंड 90.4 पे आप इवीरा अपने रेडियो साथी माता दीन के संग में। और दोस्तों, हम लेके आ गए आप सब जानने के लाने जो कार्यक्रम विधा बुंदेली। और साथियों, विधा बुंदेली कार्यक्रम में आज सुने अपन विधा देवी गीतन को और देवी गीतन को आनंद ले हैं। सो दोस्तों, आप ऐसे ही बने रहो रेडियो बुंदेलखंड 90.4 पे अपने रेडियो साथी माता दीन भैया के संग में। सो आओ दोस्तों, देर न करत वह कार्यक्रम को तो आगे बढ़ाऊ थे और कार्यक्रम में सुनत हैं इन प्यार प्यारे से देवी गीतन को। सो आ सुनत हैं सबसे पहले जो गीत जी गा रहे हैं दिनेश सोनी जी।
1: दर्शन के लाने परसन से तरसन लगे।

दर्शन के लाने बरसन से, दर्शन के लाने बरसन से, दर्शन लगी नजरिया मैया खोल दो, मैया खोल दो ये द्वार की बरिया।

0: होला पलक झलक दई श्री जय मिट गई ललक हमारी, होला पलक झलक दई श्री जय मिट गई ललक हमारी। पान बतासा ध्वजा नारियल, पान बतासा ध्वजा नारियल से भर गई चौतरिया, भैया खोल दो मैया खोल दो जे द्वारे की किबरिया, मैया खोल दो द्वारे की किबरिया। दर्शन के लाने बरसन से, दर्शन के लाने बरसन से तरसन लगी नजरिया, मैया खोल दो मैया खोल दो जे द्वारे की किबरिया, मैया खोल दो द्वारे की किबरिया, मैया खोल दो द्वारे की किबरिया।
1: देखो दोस्तों जो कितना प्यारो गीत अपन सब जन ने सुनो है, गीत को आनंद लो है। ये गीत को गा रहे थे दिनेश सोनी जी। आओ दोस्तों अब कार्यक्रम में आगे सुनते हैं अगले साथियों की गायब है गीत को। सो आप ऐसे ही बने रहो रेडियो बुंदेलखंड 90.4 पे अपने रेडियो साथी माता दिन के संग में।

बिल्कुल दोस्तों, माँ के चरणों में अर्जी कुकू लगाएं। देखो कितना अच्छा जो गीत अपन सब जन ने सुनो, गीत को आनंद लो है। ये गीत को गा रही थी राजा बद्रेली जी। अब दोस्तों आओ सुनते हैं अगले साथी इनके गाय भाई गीत को।

बिल्कुल दोस्तों, कायर उठो केसर उठो फूलन को लंगरवा कायर उठो। देखो कितना बढ़िया जो गीत अपन सब जन ने सुनो, गीत को आनंद लो। ये गीत को गा रहे थे भैया कृष्णकांत कुशवाहा जी। अब दोस्तों आओ एक क्रम में फिर से सुनाते हैं अगले साथी इनके गाय भाई गीत को।

हो जा दयाल कृपाल महामाई आपकी वीर। देखो दोस्तों कितनों बढ़िया जो गीत अपन सब जनन ने सुनो, देवी गीत को आनंद लो है। ये गीत को गा रहे थे भैया गोविंदास कुशवाहा जी। सो आओ दोस्तों गोविंदास भैया जी के गीत के बाद फिर से सुनते हैं अगले साथी इनकी गायब है गीत को।

बिल्कुल दोस्तों, मैया भक्त खड़े पुकारे दूर में हो माँ। देखो दोस्तों, कितनों प्यारो जो भजन अपन सब जन ने सुनो, भजन को आनंद लो है। और दोस्तों ई भजन को जो गा रहे थे वे गा रहे थे किशोरी लाल कुशवाहा जी। अब दोस्तों ये गीत के बाद फिर से सुनते हैं अगले साथी इनके गायब है गीत को।

देखो दोस्तों, जो कितना बढ़िया गीत अपन सब जनन ने सुनो ही, गीत को आनंद लो है। ये गीत को गा रहे थे भैया मनीराम मंचला जी। और अब मनीराम भैया मंचला जी के ये गीत के बाद हम आप सब जन को बता देवे कि आज के ही कार्यक्रम से अपने दोस्त माता दीन भैया को जाबे को समय हो गया है। सो दोस्तों, हमें दो ही कार्यक्रम से जाबे की अनुमति, अपनी तपनी फिर हुई मुलाकात है कार्यक्रम में ए बेरा पे। जब तक के लाने नमस्कार।